शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक

गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः। नमस्कार दोस्तों, दिव्य दर्शन का एक और बहुत ही पवित्र और बहुत ही नया एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ केवीएस रमन साहब हैं। केवीएस साहब पहले भी हमारे दिव्य दर्शन में शरीक हो चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं। उन्होंने हमें बताया था आध्यात्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में। आज हम फिर रमन साहब का स्वागत करते हैं और कुछ और दिव्य दर्शन के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। रमन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो हमारे सुनने वालों के समक्ष आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में?
1: नमस्कार समीर भाई साहब, मैं आपको और आपके पूरे टीम मेंबर्स को और आपका जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उन सबको मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे दोबारा आपने एक शिरकत करने का मौका दिया है, और सुनने वालों को मेरी ओर से प्रणाम।
0: बहुत बहुत प्रणाम है सर, बहुत साधुवाद। जाहिर सी बात है, जो प्रोग्राम पहले आपके साथ हुआ था, हमारे सुनने वालों में से बहुत सारे लोगों ने इस बारे में रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, गुजारिश की, डिमांड की कि हम लोग कुछ और बातचीत रमन साहब से करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनको आपसे बातचीत करके कुछ समझ आया होगा, कुछ रिलेट कर पाए होंगे उसी वजह से। तो चलिए रमन साहब, आज हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं सनातन धर्म की। मैं पर्सनली खुद भी सनातन धर्म को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूं कि प्रिसाइसली एग्जैक्टली सच में ये है क्या चीज। तो रमन साहब मुझे ये बताइए, सनातन धर्म वास्तव में क्या है? क्या ये सिर्फ एक धर्म है या शायद एक जीवन शैली? मतलब क्या है धर्म, इसके बारे में हम क्या समझें?
1: वैसे तो ये इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ये सारी चीजें, जैसे पहले भी हम लोगों ने आध्यात्म के बारे में बात की और आज हम सनातन धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये सब वास्ट चीजें हैं और हम लोग अपने जो सीमित एक नॉलेज के हिसाब से हम उसको एक दूसरे से बांटने की कोशिश कर रहे हैं जी। इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। सनातन धर्म को पहले समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है
0: जी।
1: जनरली सर, धर्म को हम लोग प्राय उसको हम रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं। धर्म एक्चुअली मेरे विचार से धर्म एक गाइड है या एक मार्गदर्शक कह सकते हैं। इट्स अ गाइड। और सनातन की अगर बात करें तो सनातन का मतलब है जो शाश्वत है, जो मिटने वाली चीज नहीं है, और वो सत्य है, और क्योंकि सत्य कभी मिटता नहीं है
0: जी।
1: डीपली कहें तो धर्म का अर्थ राइटियसनेस है। इस लिहाज से हम धर्म को एक मार्ग से, सही मार्ग से जीने का एक तरीका या शैली कह सकते हैं, और इन्हीं के वजह से हम ये निश्चय रूप से कह सकते हैं कि सनातन धर्म को जीवन का एक ट्रू एटर्नल लॉ ऐसा मान सकते हैं।
0: करेक्ट।
1: और ये एक हमें एक सही दिशा देता है और सही ढंग से जीवन व्यतीत करने का एक हमको मार्ग दिखाता है।
0: ओके। सो इस चीज को समझना जाहिर से बात है रमन जी की जरूरी हो जाता है कि धर्म और धर्म क्या चीज हुई और फिर सनातन धर्म क्या चीज हुई। तो जैसा आपने बताया कि बिल्कुल सत्य है, धर्म तो राइचियसनेस हो गया और सनातन हो गया जो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है और जो सच है। तो जाहिर से बात है उसमें त्रुटि की या कोई डिफेक्ट की या फिर कोई गलती की गुंजाइश है ही नहीं। तो क्या ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये एक ही चीज है या इनमें कुछ डिफरेंस है?
1: मेरे विचार से कि हिंदू सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। धर्म जो है वो एक मनुष्य का अपना बनाया हुआ एक एक चीज है जो अपने रोजमर्रा इसमें हम काम चलाने के लिए हम उसको धर्म एक, एक, एक सही रास्ते पे चलने का एक हम अपने अपने आप से एक बनाई हुई एक चीज है। और हर आदमी अपने अपने परिस्थिति और अपने अपने बर्थ और जहां वो रहता है उसके हिसाब से और कुछ चीजें वो फॉलो करता वो धर्म है। मगर सनातन धर्म अगर बोले तो ये मात्र एक मनुष्य के लिए नहीं है, ये सारे सजीव और निर्जीव पर भी ये लागू होता है। सनातन धर्म सनातन धर्म जीने का एक एक ऐसा आयाम है, हमारे अस्तित्व या अस्तित्व का ही आधार है ऐसा हम मान सकते हैं।
0: okay.
1: चाहे वह कीड़ा हो, चाहे वो कोई छोटा से छोटा इंसेक्ट हो, पक्षी हो, जानवर हो, पौधा पेड़ पौधे हो, ये सभी अपने अस्तित्व का जो संचालन करने का जो नियम है, मूलभूत जो नियम है, उसको हम सनातन धर्म कह सकते हैं। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ सनातन धर्म।
0: परफेक्ट मतलब सीधी सी बात हमें यह समझ में आ रही कि जो एक ऐसा नियम कानून कह लीजिए, प्रोटोकॉल कह लीजिए, फॉर्मेट कह लीजिए, या एक व्यवस्था कह लीजिए, अगर बड़ी सी प्यारी सी लैंग्वेज में कहें तो इस प्रकृति की जो व्यवस्था है, इस प्रकृति की जो व्यवस्था है वो है सनातन। ऐसा मुझे लगता है रमन सर आप कह रहे हैं, करेक्ट?
1: जी सर।
0: ओके, अमेजिंग। फिर अगर सनातन शब्द को, जैसे एक वर्ड हुआ सनातन, उसको अगर हम थोड़ा सा और बेहतर समझने की कोशिश करें, यहां तो पहले हमने ये समझा कि सनातन एक व्यवस्था है जो पूरी प्रकृति को चलाती है या पूरी प्रकृति पर लागू है। अब हम सनातन को और समझें, इस वर्ड का, इस शब्द का मीनिंग क्या होगा?
1: सनातन धर्म एक्चुअली, ये जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, संस्कृत शब्द है
0: जी।
1: इस शब्द के कई मायने, कई अर्थ हैं, जैसे फंडामेंटल ज्ञान, आई मीन तात्विक ज्ञान, स्थायी विश्वास, और एक सम्माननीय व्यवस्था। इन सबको हम सनातन के एक भिन्न भिन्न, आई मीन डिफरेंट डिफरेंट मतलब निकलते हैं। लेकिन जनरली सामान्यतः धर्म को हम दो प्रकार के में बांटते हैं, जो एक है सनातन धर्म, एक वर्णाश्रम धर्म
0: जी।
1: इन दोनों में सनातन धर्म सभी के लिए सामान्य रूप से एक आध्यात्मिक पहचान, एक स्पिरिचुअल पहचान देता है, स्पिरिचुअल पहचान देता है। एक अगर वर्णाश्रम की बात करें तो वो जीवन के परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित कर्तव्य है। सभी जीवों के अलग अलग एक उसमें डेफिनेशन उसमें आ जाता है। मगर सनातन में जैसे मेन अगर की अगर बात करें तो सभी जीवों के साथ अगर हम प्रेम दिखाना, सेवा भाव, पियटी और अच्छे कर्मों का पालन करना, ये इन इन एक आप विस्तार रूप से अगर बोले तो इसको सनातन शब्द का ये
0: मतलब
1: अर्थ निकलता है। जी जी,
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया, और बहुत ही साधारण सा भाषा में। तो जाहिर से बात है, इस शब्द को अगर हम लोग धर्म के साथ जोड़ते हैं तो फिर ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर या व्यवस्था बन के खड़ी होती है। बहुत सुंदर रमन जी। सनातन धर्म, अब हम लोग ने सनातन को समझा, धर्म को समझा और उनको मिलाया, अब इसमें कर्म और धर्म को, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस व्यवस्था में? चलिए, धर्म को तो हमने फिर भी समझा था, अभी कर्म के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए ना कि इस व्यवस्था में कर्म की क्या महत्वपूर्ण है, कर्म की क्या इंपॉर्टेंस है?
1: वैसे कर्म धर्म दोनों ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं सनातन धर्म में। एक दोनों को ही एक फंडामेंटल लॉ कहा जा सकता है, जो मनुष्य के आध्यात्मिक प्रगति स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए और जीवन के परिणामों को गवन करता है, ये दोनों कर्म और धर्म, धर्म और कर्म दोनों करता है। कर्म का जो सिद्धांत है वो कर्म चाहे वो विचार से हो या शब्दों से हो या कार्य से हो वो कोई ना कोई परिणाम देता है, व्हाट एवर यू डू उसका वो एक रिएक्शन देता है या उसका एक रेसिप्रोकेशन उसका होता है। कर्म का जो भी काम करें हम, चाहे हम कभी कभी हम विचार से भी अगर कुछ करते हैं, जैसे किसी के साथ क्रोध होना भी एक किसी विचार ही एक टाइप का विचार है, दैट ऑल्सो उसका एक परिणाम यह है कि वी गेट इनटू, उसके बाद हम खुद बाद में सोचते हैं कि हमने नहीं करना चाहिए था या हमारे टेंशन बढ़ जाता है, ये सारी चीजें, हर चीज का एक, हर कर्म का एक परिणाम होता है ये। और इसीलिए सनातन धर्म में इसीलिए क्योंकि कर्म हम वी कीप ऑन डूइंग कर्म, ये अतीत और फ्यूचर को, हाँ भूत और भविष्य, इनफैक्ट ये अतीत और प्रेजेंट को का जो एक इसका जो रिजल्ट जो देता है वो हम, हमें वर्तमान में इसका दिखाई देता है, वर्तमान हमारा ये निर्धारित करता है। तो व्हाट वी कॉल इन हिंदी में जैसा एक सेइंग है, जो जैसे बोएगा वो वैसे काटेगा या पाएगा। तो इसीलिए ये क्योंकि कर्म किसी न किसी का परिणाम देता है, तो हर व्यक्ति को ये हमें सिखाता है कि सनातन धर्म सिखाता है कि वी हैव टू बी नो, अपने जो भी कर्म करें वो अच्छा कर्म करें, क्योंकि जो जितना अपने उस हिसाब से हमको कहने, हम तो ये कहा जाता है कि भाई आपके पुनर्जन्म में ऐसा होता है ऐसा होगा, लेकिन कभी कभी आपको तुरंत भी उसका एक परिणाम आपको मिल जाता है। तो इन सबके वजह से क्योंकि कर्म से परिणाम मिलता है, तो हमारे कर्म जो है हमेशा एक अच्छा एक कर्म होना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही बात है। और जैसा आपने बहुत प्यार से बताया उसी चीज को मैं एक बार बहुत छोटे से मैं सिंपल रिपीट करना चाहता हूँ मेरे अपने फायदे के लिए, कि मैं उसको याद रख सकूं, कि हम जैसे काम करते हैं तो कई बार तो उनके फल जो होते हैं वो हमें थोड़ा सा भविष्य में मिलते हैं, या कई बार तो बिल्कुल वर्तमान में ही मिल जाते हैं। तो सामने के सामने है साहब, जो काटा जो आपने बोया वही काटा, तो जब ये सामने दिखता है तो उसको मानने में फिर परेशानी ही क्या, आइए ना इसको मान लेते हैं। बहुत सुंदर रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं यहाँ पर, एक प्यारा सा भजन सुनते हैं और फिर मैं वापस आपके सामने हाजिर होता हूँ।

0: बहुत ही सुंदर। रमन जी, सनातन धर्म के में पुनर्जन्म की अवधारणा को भी कहा गया है कि मतलब हम रीबर्थ की बात करें, दोबारा जन्म लेते हैं सनातन धर्म में, तो उसको आप कैसे समझाएंगे? सनातन धर्म इस चीज को कैसे समझाता है?
1: सनातन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। सनातन धर्म या पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन या इसी विश्वास पर आधारित है अपना सनातन धर्म। और जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, इवन भागवत गीता में कभी निकल करके आता है कि आत्मा अजर है अमर है चासि, आत्मा अजर है और अमर है, और वह केवल एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता। तो इट इज फ्रॉम बिलीफ ऑफ सनातन धर्म। से भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के 20th श्लोक में है
0: जी,
1: कहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भवित्वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
0: सुंदर।
1: आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। इसका मैं आपको थोड़ा सा सारांश बता रहा हूं। और ना ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद वो कभी समाप्त होती है। आत्मा जन्म रहित शाश्वत अमर और अजर है। शरीर के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होती है। दिस इज दी कंसेप्ट और दिस इज दी बिलीफ ऑफ सनातन धर्म।
0: जी,
1: यही सनातन धर्म माना गया है कि पुनर्जन्म में उनका इसका सनातन धर्म का विश्वास है।
0: जी,
1: ऐसा ही समझाया गया।
0: बहुत सुंदर, अमेजिंग। सो जाहिर सी बात है, बहुत क्लियरली हमें आज ये बहुत साधारण शब्दों में ये चीज समझ में आ रही है कि पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसको सनातन में कैसे समझाया गया है। बिल्कुल ठीक। तो बस एक छोटा सा भजन यहां सुने और फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, वो पूछते हैं रमन जी से।

0: और अमन जी, आपने पुनर्जन्म के बारे में हमें बताया कि सनातन धर्म इसको कैसे समझाता है, अब सनातन धर्म मोक्ष के बारे में क्या कहता है, उसके पाने का रास्ता क्या बताता है, थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालिए।
1: सनातन धर्म में मोक्ष मानव जीवन का एक परम लक्ष्य है, मेन जो फाइनल अल्टीमेट, हाँ अल्टीमेट।

0: हम लोग उसको फॉलो करते हैं, तो हम भी इस चीज को मानते हैं कि हर प्राणी का जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म रिसाइकल होता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है, निरंतर ये चक्र चलता रहता है। इस दुख, इसको अगर दुख मानते हैं, इसको इफ वी कैन समझते हैं कि ये इस तरह बार बार जन्म लेना, कष्ट
1: मतलब
0: सहना,
1: ये पेनफुल होता है, फिर से मर गए, फिर
0: पेनफुल
1: प्रोसेस,
0: पेनफुल फॉर
1: जी।
0: तो इससे मुक्ति, इससे मुक्ति पाना ही जो है हमारा मेन लक्ष्य जो है वो सनातन धर्म में बताता है। जब व्यक्ति का आत्मा अपने वास्तविक रूप से पहचान लेती है और उसके बाद जब व्हेन इट रीचेस द अल्टीमेट, दैट इज व्हाट इज मोक्ष, एंड वी ऑल उसी के लिए हम स्ट्राइव करते हैं और कोशिश करते हैं। जैसे हम कई मार्ग भी इसके लिए चुनते हैं, जैसे भक्ति मार्ग है, नॉलेज के थ्रू होता है, कर्म के थ्रू होता है, और मेडिटेशन, ये कुछ कुछ कुछ कुछ एक सनातन धर्म में बताए गए हैं, कुछ मार्ग हैं, कुछ रास्ते हैं, तो इन उनकी को हम फॉलो करके हम फाइनली मोक्ष की ओर जाने की हम कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट वी कीप स्ट्राइविंग, और जीवन मुक्त लिबरेट होने की कोशिश करते हैं ये सब चीजें करके। ये है इसका मार्ग।
1: जी आपने बिल्कुल ठीक कह दिया, बहुत ही आराम से हमें तीन रास्ते तो सामने दिख ही रहे हैं, कर्म का रास्ता है, योग का रास्ता है, मेडिटेशन का रास्ता है, धर्म। तो जाहिर से बात है इनमें से किसी को भी अपनाकर हम मोक्ष की तरफ चल सकते हैं। अब वो हमारी विलक्षणता पर, हमारी शिद्दत पर, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पर, हमारी चाहत पर निर्भर करेगा कि हम कितनी तेजी से मोक्ष की तरफ जाएं। बहुत सुंदर। अब अगर आज के समय की बात करें, देखिए सनातन तो किसी समय से था, किसी समय तक रहेगा, चलता ही जा रहा है, लेकिन अगर हम आज की बात करें जब हम और आप हैं, तो इस धर्म को, सनातन धर्म को कोई भी एक साधारण व्यक्ति कैसे समझे, और अगर उसे समझ, वैसे तो आज के प्रोग्राम में आप ही की बात सुनकर बहुत सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी और वो उसको अपनाना चाहे, तो क्या करें हम?
0: क्या करें, इट्स बेसिकली बहुत ही एक ट्रिकी सवाल है
1: जी।
0: क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू साउंड नो नेगेटिव, इट्स क्वाइट, कुछ कोशिश ही करके ही इसको चेंज किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है आज के दौर पे, ये मुझे लगता है। आई विश आई एम रॉन्ग। हम इसको सनातन धर्म को समझा अपनाया कैसे जा सकता है, इसके लिए हमें वो मूल ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, करना पड़ेगा, जैसे उपनिषद है, रामायण है, और ऐसे चीजों का हमको अध्ययन करना पड़ेगा। लोगों के पास इसके लिए कितना टाइम है आज, और उसको अच्छी तरह समझाने वाला कौन है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन अगर मनुष्य अगर कोई चीज करने की ढाल लेता है तो वो करता है, करना पड़ कर देता है
1: जी।
0: सबसे बड़ी बात यह है कि हम कम से कम अपना कर्तव्य जो है रोजमर्रा जिंदगी का, जो हमारा जो कर्तव्य है, उसी को हम ईमानदारी से पालन करें। वो दैट में भी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बीइंग सनातनी। बाकी हम लोग तो योग और मेडिटेशन तो आजकल जगह जगह सब लोग इंटरेस्टेड भी हैं और करते भी हैं, हाँ तो हो भी रहा है, इसका भी एक एक ये भी एक माध्यम है, और आत्म रियलाइजेशन इन सब चीजों से आता भी है, एक सेल्फ रियलाइजेशन इन सब चीजों से आता है, योग और मेडिटेशन के द्वारा। छोटी छोटी चीजें जैसे दूसरों का हर्ट नहीं करना, अहिंसा, दया, क्षमा, ईमानदारी, these are all small small things which can lead us to towards jo hai sanatan hone ke ek aur humko shayad le ja sakta hai, ye mera ye it's my small humble soch।
1: bilkul sahi, bilkul sahi hai sir। bahut zyada gurd, jaise aapne kaha upanishad granth wagera ka hum adhyayan kare, pehli baat to jaise aapne bilkul sahi kaha, interest ki baat bhi ho jati hai, fir वो बहुत गूढ़ ग्रंथ हैं, उनको समझाने वाला भी कोई उचित

0: गुरु हो जो हमें ढंग से समझा सके। उसके बाद आज के टाइम में इंटरेस्ट भाई वक्त भी नहीं है, तब भी कई परेशानियों से जूझते हुए फ्रस्ट्रेट होकर अचानक से घूम जाएं और हमें लगे कि नहीं चलिए अब सनातन को अपनाया जाए क्योंकि शांति प्राप्त करनी है, तब ये सब चीज़ें जो बहुत सरल भाषा में आपने बताई है वो हमें अपनानी चाहिए, वही होगा। और अगला जो मेरे दिमाग में कौंध रहा था सवाल, वो ये था कि आज की जो नई जनरेशन है उसको भला कैसे सनातन धर्म से जोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है यही मेथड्स जो आपने बोले हैं। जी
1: नहीं, यही है जो, क्योंकि ये कुछ चीजें जो है बहुत सरल हैं, हमें क्योंकि झूठ नहीं बोलना ये तो बचपन से सिखाया जाता है, सत्य बोलना बचपन से सिखाया जाता है, दूसरे किसी प्राणी को तंग नहीं करना ये भी सिखाया जाता है, घरों में सिखाया जाता है, स्कूलों में सिखाया जाता है, ये दीस आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हम विच हैज बिकम पार्ट ऑफ अवर लाइफ, और इनको सही मायने में उसको और अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, उसके बारे में और जानकारी लेना और थोड़ा इसका वाइडन, इसको थोड़ा सा हरिजन को थोड़ा सा वाइडन करना, दीस आर ऑल द स्मॉल थिंग्स टुवर्ड्स स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स नो इसके ओर जाने का, एक सनातन के ओर जाने का एक स्मॉल चीज है।
0: सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मुझे इस चीज पे ध्यान आता है, कई बार बचपन से हम सुनते आए कि गायत्री मंत्र इसीलिए बनाया गया था कि साहब बहुत बड़ी बड़ी बड़े मंत्रों का उच्चारण आप ना कर सकें, तो चलिए एक सिंपल सा गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, आपको वही लाभ मिल जाएगा जो बहुत सारे मंत्रों को पढ़ने से मिलेगा। तो उसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि साहब और कुछ नहीं सही तो गायत्री मंत्र ही पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव तो आ ही जाएगा, पवित्र तो आप इससे भी होंगे और पवित्र आप उससे भी होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो ये छोटे छोटे मेथड्स, प्रोसीजर्स, व्यवस्थाएं अपनाने से भी हम सनातन धर्म को पा सकते हैं। जाहिर से बात है, हम ये सारी बातचीत इसलिए कर रहे हैं, सनातन धर्म को पाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हम शांत होना चाहते हैं, साफ सुथरे पवित्र और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपनी जिंदगी को जिएं, शांति से जिएं, अच्छी तरीके से जिएं, मतलब खुश रहें, परेशानी ना हो। अब आपने जैसे सनातन धर्म को समझा, आपने सनातन धर्म को अपनाया, उसकी जो भी आप प्रैक्टिसेस जो आपने हमें बताई वो आपने की, उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, कुछ आपको फील हुआ कि मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, थोड़ा सा वो शेयर कीजिए ना हमारे साथ।
1: हाँ बिल्कुल, इसके हर चीज का जैसे पहले भी होता है कि हर कर्म का एक रिएक्शन होता है, एक उसका एक परिणाम होता है, तो ये जैसे स्मॉल छोटी छोटी चीजें जो हम अपने डेली रूटीन में भी जो करते हैं उसको आप, जैसे मैंने पहले एक क्रोध का बताया था कि जब हम क्रोध भी करते हैं तो उसका एक कभी कभी हमको खुद को बाद में खराब लगता है कि मैंने ऐसा ही रिएक्शन क्यों दिया, ऐसा क्यों किया। और उसी तरह जो हम कभी अच्छी चीजें करते हैं तो उससे भी हमको सुकून मिलता है, हम कुछ नहीं कि छोटे से किसी रास्ते में जाते हुए किसी प्राणी को जस्ट हेल्प ही कर दिया, उसको मतलब किसी से बचा दिया, कोई बच्चे पत्थर मार रहे हैं तो उस, तो ये एक दूसरे प्राणी की ओर जो हमारे एक वो दर्शाता है, एक लव दर्शाता है, और वो भी करके आते हैं तो हम बाद में लगता है कि आज हमने ये किया, तो ये सब चीजें। उसी तरह जैसे हमको शुरू से एक चीज बताया गया है, मेरी माँ कहती थी कि अगर किसी को उपकार ना करें कम से कम उसको अपकार ना, किसी को डोंट डू एनी हार्म टू एनीबॉडी, आप अगर उपकार नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके वजह से किसी को एक हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और हम उस ऑफिस में जब रहते थे हम कोशिश यही करते थे कि हमारी वजह से किसी का मन ना दुखे, हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, ये हम बहुत इस चीज को हम उसके ऊपर ध्यान रखते थे। ये और इससे जो है स्लोली आपका जो एक पॉजिटिव ऑरा आपके समक्ष वो रहने लगता है, और अगला भी अगर आप जैसे आप व्यवहार करते हैं वैसा ही दूसरा भी आपके साथ व्यवहार करने लगता है, उसके ऊपर भी उसका एक असर पड़ता है। ये एक दूसरे के साथ इस तरह असर पड़ता है, जो हमें इस ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करने में ऐसा असर हमको हमने भी हमें भी ज्ञात हुआ और दूसरे भी इस चीज को हमारी वजह से उनके ऊपर भी इसका एक इन्फ्लुएंस हमने महसूस किया कई बार।
0: ओके ऑफ कोर्स, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसा हम महसूस करते हैं, कोशिश करते हैं, और उसके परिणाम भी हमें हाथों हाथ मिलने भी लगते हैं और बहुत सारी चीजें महसूस होती हैं। बड़ी प्यारी बात कही। तो लीजिए थोड़ा सा एक पॉज लेते हैं, एक प्यारे से भजन के लिए रुकते हैं, फिर वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर। रमन जी, किसी व्यक्ति को सनातन धर्म को और ज्यादा गहराई में समझना हो तो कौन कौन से ग्रंथ या कौन से लिटरेचर आप सजेस्ट करोगे कि हम पढ़ें, अध्ययन करें, कुछ करें, किस तरह की किताबें या ग्रंथ?
1: बस ग्रंथ इसमें तो जो मेन चीज आपको बताने वाली जो चीजें हैं वो है वही मूल ग्रंथ जो है, हमारे जो मूल ग्रंथ है, वेद है, भागवत गीता है, उपनिषद है, इवन रामायण और महाभारत से भी हमको कई इसके और इसके बारे में हमको ज्ञात हो सकता है, होता है। लेकिन कई कई किताबें ऐसे हैं जो अगर आप खोजें तो गोरखपुर की गीता प्रसवानों का यहाँ से कई चीजों का प्रकाशित उनका है, तो वो भी जो है आजकल सर्फिंग करने में आपको, क्योंकि शुरुआत एक बेबी स्टेप से ही हमको करना पड़ता है। इमीडिएटली हम इमीडिएटली हम उपनिषद या तो हमें क्या भागवत या किसी और चीजों की कोशिश करेंगे तो हम आधे में टाइगर्स हो जाएंगे, आधे तक जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। हमें वो चीज जब चीज समझ में नहीं आएगा तो हम मन इधर उधर भटकने लगता है। तो स्मॉल छोटे पैमाने से शुरू करें, ये सब चीजें हमको सर्फिंग करने से मिल जाएगा। गीता प्लस गोरखपुर वालों के बहुत सारे वो हैं, और विवेकानंद जी का जो लेख है वो पढ़ सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें ही हैं, हम अदरवाइज बुक अगर बोलें तो हम मूल ग्रंथ जो है उसी से हमको गूढ़ इसका एक ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ साहब। गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसा उपक्रम है जो किसी जमाने से चला आ रहा है। भारत की संस्कृति को उसने अभी भी पकड़ के रखा है। मैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म या किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने भारतीय संस्कृति की बात की है। अब उसमें सभी लोग आते हैं और के उसके सारे जितने पुराने गूढ़ लिटरेचर हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनको अभी तक उन्होंने संजाया है, संजोया है, बचाया है। मुझे इस बात की सचमुच बहुत खुशी है। मैं कई मेरे पास उनकी बहुत सारी किताबें, पुस्तकें, बुक्स मौजूद हैं, खास करके पुराण, करीब करीब सारे पुराण मेरे उन्हीं के यहाँ के प्रिंटेड मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि आप गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर का भी बहुत बड़ा सहारा ले सकते हैं सनातन धर्म को समझने के लिए। बाकी जैसा विवेकानंद जी की का लेखनी की बात कही रमन साहब ने, तो वो भी है, उपनिषद वगैरह भी है, महाभारत रामायण भी बताया रमन साहब ने, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद रमन साहब। एक बहुत रिलेटिवली बहुत ज़्यादा सफाई साफ तौर पर हमें समझ में आया है कि सनातन धर्म दरअसल क्या चीज़ है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, किस तरीके से वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है और कैसे हम उसे अपना सकते हैं। बहुत बड़ा आयाम आज खुला है हमारे सामने। जाहिर सी बात है हमें थोड़ा और सीखने की आवश्यकता तो है, फिर भी इसकी शुरुआत करने के लिए, प्रारंभ में हमारा हाथ पकड़कर चलाने के लिए रमन साहब आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आप आए, पधारे, हमारे इस प्रोग्राम में अपनी बातें रखी, बहुत अच्छा लगा, आपका आभार है सर।
1: धन्यवाद समीर जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इन विषयों के बारे में कुछ आपस में बांटू, आपस में कहूँ, मुझे इस लायक समझा। मैं आपको और एस एन रेडियो के जितने भी हमारे और साथी हैं, आपके और साथी हैं, उन सब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो सुनने वाले जो हमारे जो मित्र हैं उनको भी मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो हम लोग सब व्हाट्सएप में है, नंबर है, आप बेझिझक हमें बताइए कि हमसे त्रुटि कहाँ हुई, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद समीर जी।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री

हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। एक आम, तीन दोस्त और एक लेजेंड की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक छोटे से आम से शुरू होती है, बट एंड बिल्कुल आम लोगों पे नहीं होती। ये कहानी खत्म होती है हिस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक नाम पर। रुक जाइए, ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। इसमें है बचपन की शैतानी, फॉरबिडन जंगल जैसे पेड़, दूरदर्शन का एक संडे और एक मिशन इम्पॉसिबल। बीच में एक छोटा सा लड़का जिसकी एनर्जीज इतनी ज्यादा थी कि अगर उसे चैनलाइज नहीं किया जाता तो शायद कॉलोनी ही हिल जाती। 80s का संडे, एक सेक्रेट रिचुअल। दोस्तों, आज के बच्चे समझ ही नहीं सकते कि संडे आफ्टरनून का मतलब क्या होता है। एक ही चैनल दूरदर्शन और एक ही इवेंट संडे की मैटनी फिल्म। पूरा परिवार सोफे पर, पड़ोसी भी आ जाते थे कभी कभी, और अगर मूवी अच्छी हो तो साइलेंस ऐसा होता जैसे एग्जाम चल रहा हो। उस दिन चल रही थी गाइड और बैकग्राउंड में बज रहा था आज फिर जीने की तमन्ना है। बाहर का महा साइलेंस, कॉलोनी का ग्राउंड बिल्कुल खाली, ना क्रिकेट ना साइकिलिंग, बस हवा चल रही थी और पेड़ हिल रहे थे। पर एक बेंच के पास तीन शैडोज बैठी हैं, सुनील, अविनाश और एक छोटा सा लड़का, छोटा साइज पर फुल पावर। नाम सचिन। सचिन मतलब फुल ऑन एनर्जी पैकेट। अगर आप उसे 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो तो या तो वो कुछ तोड़ देगा या फिर कुछ नया कर देगा। अब कॉलोनी में कुछ बड़े बड़े आम के पेड़ थे, उन पे आम लगते थे, रस भरे, टेम्प्टिंग। पर रूल ये था कि उसे टच भी नहीं करना। और दोस्तों, जब किसी बच्चे को बोलो ये मत करो तो उसका मतलब होता है बस यही करना है। सचिन उन पेड़ों को रोज देखता था जैसे कोई एक्सप्लोरर एवरेस्ट को देखता हो। सुनील धीरे से कहता है, सब लोग टीवी देख रहे हैं। अविनाश कहता है, ये परफेक्ट चांस है। सचिन की आंखों में एक चमक आती है, मिशन आम। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, आज फिर जीने की तमन्ना है। और सचिन, देखा, यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहा है। तीनों धीरे धीरे पेड़ के पास जाते हैं जैसे आर्मी ऑपरेशन हो। सचिन सबसे आगे, मैं लीड करूंगा। सुनील, तू सबसे छोटा है। सचिन बोलता है, इसीलिए तो सबसे फास्ट हूं। और चढ़ाई शुरू, एक ब्रांच, दो ब्रांच, सचिन ऑलमोस्ट टॉप पे, आम बिल्कुल सामने, और उसका एक्सप्रेशन, आज हिस्ट्री लिखनी है भाई। और तभी सुनील भी सेम ब्रांच पर चढ़ जाता है। ब्रांच सोचती है, भाई मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूं। क्रैक, और फिर ग्रेविटी का फुल डेमोन्स्ट्रेशन, थार, धूम, धपाक, पूरी कॉलोनी बाहर, टीवी बंद, गाइड पॉज, ये आवाज कहां से आई? और वहां सचिन और उसकी टीम आम के नीचे उफ पड़े हुए, आम के नीचे। पेरेंट्स का एक्सप्रेशन, बेटा आज तो तुम गए। घर पे इमरजेंसी मीटिंग बैठती है, मम्मी बोलती है, ये लड़का रुकता ही नहीं है। पापा कहते हैं, इसकी एनर्जीज बहुत है।
और भाई कहता है डायरेक्शन जीरो है, सचिन क्वाइटली, पर आम मिल जाता। और तब एक डिसीजन होता है, इसको किसी स्पोर्ट्स में डालो, इसकी एनर्जीज को यूज करो। नेक्स्ट मॉर्निंग सचिन को ले जाया जाता है एक क्रिकेट कोचिंग कैंप में। सचिन बोलता है, ये क्या है, मैं आम के लिए गया था, ये बात कहां से आ गई? कोच ऑब्जर्व करते हैं, रमाकांत आचरेकर जी, उनकी नजर अलग थी। उन्होंने देखा एनर्जी, फोकस, जुनून, और उन्होंने डिसाइड किया ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। सचिन बैटिंग करता है, पहला शॉट थोड़ा ऑकवर्ड, दूसरा शॉट बेटर, और तीसरा शॉट परफेक्ट टाइमिंग। और धीरे धीरे वो एनर्जी जो पेड़ पे चढ़ रही थी अब बॉल के पीछे दौड़ रही थी। दोस्तों जरा सोचिए, अगर वो आम का पेड़ नहीं होता, अगर वो गिरता नहीं, और अगर पेरेंट्स परेशान नहीं होते, तो शायद उन एनर्जीज को डायरेक्शन ही नहीं मिलता। कभी कभी हमारी शैतानी, हमारी गलतियां हमारी डेस्टिनी का शॉर्टकट होती हैं। और फिर क्या हुआ वो सब जानते हैं। एक छोटा लड़का जिसे आम चाहिए था एक दिन दुनिया का फेवरेट बन गया। लोग उसका नाम लेते ही स्माइल करते हैं, रिस्पेक्ट फील करते हैं। दोस्तों जिंदगी कभी कभी बहुत सिंपल सिग्नल्स देती है, एक आम, एक गिरना, एक दांत, और उसके पीछे छुपा होता है एक बड़ा सा फ्यूचर। आपकी लाइफ में कोई आम मोमेंट था, कोई शैतानी जो ब्लेसिंग बन गई, या कोई गिरना जो डायरेक्शन बन गया? जरा सोचिए, शायद आपका भी वो मैंगो मोमेंट है जो आपको कहीं ले जाने वाला है। मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली स्टोरी तक याद रखिए, कभी कभी एक छोटा सा आम एक पूरी कहानी लिख देता है जो बिल्कुल आम नहीं होती, बहुत खास होती है, जैसे कि आप। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: टाइपिंग वाले आर्टिस्ट। टाइपिंग डॉट डॉट डॉट, एक मिनट। टाइपिंग डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट, दो मिनट। और मैसेज आता है, इतना बिल्डअप तो किसी फिल्म के ट्रेलर में भी नहीं होता। लिखे जो

एक फैसला, एक प्यार और एक कहानी जो दुनिया बदल गई। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जहां जिंदगी, कानून, प्यार और किस्मत सब एक ही लाइन पे मिल जाते हैं। और बिलीव करिए, इसका एंड आपको सरप्राइज ही नहीं, हैरान कर देगा। एक आदमी जो कभी पकड़ा नहीं गया। सोचिए, रात का वक्त है, शंघाई की सड़कें, बारिश की हल्की सी बूंदें, लैंटर्न्स हवा में धीरे धीरे हिल रहे हैं और उन्हीं रोशनियों के बीच एक आदमी चल रहा है। उसकी चाल सीधी है पर उसका रास्ता कभी सीधा नहीं रहा। नाम फैंग डाओलोंग, पर असली बात यह है कि उसका कोई एक नाम नहीं था। दिन में कार्गो शिप पे काम करता था एक आदमी, साइड में स्मगलर और असली सच एक सीक्रेट एजेंट। एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी खुद भी नहीं समझ पाता था, क्योंकि वो हर रोज किसी और की जिंदगी जी रहा होता था। फैंग के लिए हीरो बनना जरूरी नहीं था, जिंदा रहना जरूरी था। उस पर हमले हुए, धोखे हुए और कई बार उसकी मौत का प्लान बनाया गया, पर वो बच गया। कैसे? क्योंकि वो लड़ता नहीं था, वो समझता था और निकल जाता था। इसलिए लोग कहते थे वो आदमी नहीं, एक साया है। 29 ईयर्स की उम्र में फैंग सब कुछ छोड़कर शंघाई आ जाता है। नया शहर, नया नाम और नई जिंदगी, और वो है पोर्ट ऑफिसर। आईनी देखिए, जो आदमी कल तक इलीगल चीजें ले जाता था, वो आज उन्हें रोक रहा है पोर्ट ऑफिसर बनके। पर दोस्तों, पास्ट कभी पीछा नहीं छोड़ता, ये हम सब जानते हैं। वो बस थोड़ा धीरे चलने लगता है। इसी शहर में एक और कहानी लिखी जा रही है। एक औरत, नाम है लिली, उसकी आंखों में शाम का साया है और आवाज में थोड़ी सी थकान। वो स्ट्रॉन्ग है पर टूट चुकी है। सिंगल मदर, दो बेटियां और जिंदगी का हर बोझ अकेली उठाती है। लिली गैम्बलर थी और वो जीतने की आदत डाल चुकी थी। लोग कहते थे इसके हाथ में जादू है, पर जिंदगी का एक रूल होता है, हाउस ऑलवेज विंस, और एक दिन जिंदगी जीत जाती है। कर्ज, लोगों का प्रेशर और घर में दो छोटी बेटियां, लिली के पास अब ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ मजबूरी है। उसे ऑफर मिलता है, एक काम कर लो, सब ठीक हो जाएगा, ओपियम स्मगलिंग। एक रात, एक शिप और एक रिस्की सफर, लिली सोचती है और फिर हाँ कह देती है। पोर्ट पर रश है, लोग भाग रहे हैं। लिली बैग लेकर आगे बढ़ती है, बैग चेक होगा, वो रुक जाती है। ऑफिसर कौन है जानते हैं? जी हाँ, फैंग डाओलोंग। बैग खुलता है, अंदर ओपियम। अब यहां कहानी खत्म हो सकती थी, अरेस्ट, जेल और दी एंड, पर कहानी यहां से शुरू होती है दोस्तों। फैंग पूछता है, ये क्यों कर रही हो? लिली कहती है, दो बेटियां हैं मेरी। उसकी आंखों में ना ड्रामा है ना एक्टिंग है, सिर्फ सच्ची आंखें हैं। फैंग चुप हो जाता है, क्योंकि उसने भी मजबूरी देखी है, और फिर वो साइड हो जाता है। चली जाओ, बस इतना ही कहता है, ना लेक्चर ना वार्निंग, सिर्फ एक चांस। महीने बीत जाते हैं। एक रात, एक क्लब, म्यूजिक, स्मोक और बीच में लिली। फैंग उसे देख लेता है और दोनों मुस्कुरा देते हैं। फिर मिलना, फिर बातें, फिर अपनी कहानियां शेयर करना, और धीरे धीरे दो लोग जो बस सरवाइव कर रहे थे, जीना सीख लेते हैं। 1949, शहर बदल रहा है, पावर शिफ्ट हो रही हैं, और फैंग जैसे लोग डेंजर में हैं। उन्हें भागना है और इस बार वो अकेला नहीं है। फेक नाम, फेक जिंदगी, रात के अंधेरे में वो भागते हैं हांगकांग की तरफ।
अब ना स्पाई मिशंस, ना थ्रिल, सिर्फ रियलिटी। फ्लोर साफ करना, डिशेस धोना और चुप रहना। कभी कभी पास्ट याद आता है, पर वो बस एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर एक दिन एक बच्चा पैदा होता है, उसी गरीबी में पर उम्मीद के साथ, उनका बेटा। आप सोच रहे होंगे ये तो परफेक्ट फिल्म है, पर दोस्तों ये फिल्म नहीं है, ये सच्चाई है। और वो बच्चा जो इतनी मुश्किलों में पैदा हुआ, वो बड़ा होके बना जैकी चैन। सोचिए अगर उस रात फैंग ने लिली को अरेस्ट कर लिया होता तो क्या होता? ना ये कहानी होती, ना ये प्यार होता और ना ये सुपरस्टार होता। जिंदगी में कभी कभी हीरो बनना जरूरी नहीं होता, इंसान बनना जरूरी होता है। कभी कभी एक छोटा सा डिसीजन दुनिया को एक लेजेंड दे देता है। दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। अगली कहानी तक याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है और हर इंसान के पीछे एक सैक्रिफाइस जरूर होता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: फ्री वाईफाई लवर्स, कुछ लोग जगह नहीं देखते, बस फ्री वाईफाई देखते हैं। यहाँ व्यू कैसा है, होटल रूम कैसा है, फैसिलिटीज कैसी है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। चेक इन करते ही उनका पहला सवाल होता है, फ्री वाईफाई का पासवर्ड क्या है।
2: What?

जब कचरा कहानी बन गया। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी सी अलग इसीलिए है क्योंकि थोड़ी अजीब है और सच कहूं थोड़ी सी शर्मिंदा करने वाली भी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन चीजों की जो हम रोज फेंक देते हैं और उन लोगों की जो उनमें भी कहानियां ढूंढ लेते हैं। सोचिए, सुबह के 4 बजे का टाइम, ना ट्रैफिक ना हॉर्न, बस हल्की सी ठंडी हवा और स्ट्रीट लाइट्स का पीला सा उजाला। और इसी वक्त एक आदमी चल रहा होता है, हाथ में ग्लव्स लिए, पीछे एक कचरे की गाड़ी, नाम मुस्तफा। अब मुस्तफा कोई आम इंसान ही है, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल आम नहीं है। आप और मैं डस्टबिन के पास से गुजरते हैं और ऑटोमेटिकली थोड़ा सा फेस साइड कर लेते हैं, पर मुस्तफा वो रुकता है, झांकता है और ध्यान से देखता है। उसे क्या दिखता है? किताबें। जी हाँ, किताबें। एक दिन एक पुरानी सी नॉवल, हाफ टोन कवर, पेजेस मुरझाए हुए, जैसे किसी ने थक कर उसे छोड़ दिया हो। मुस्तफा उसे उठाता है और एक सेकंड के लिए रुकता है। कल तक किसी के हाथ में थी, आज कचरे में है। वो उसे घर ले जाता है, रात को पढ़ता है और खुद से सोचता है, कहानी तो अब भी जिंदा है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, हर दिन एक नई किताब, कभी स्कूल बुक, कभी पोएट्री, कभी हिस्ट्री। और मुस्तफा हर किताब को ट्रीट करता है जैसे किसी ने उसे पर्सनली दी हो। एक दिन उसका दोस्त बोलता है, मुस्तफा भाई, तुम कचरा उठाते हो या पढ़ाई करते हो? मुस्तफा हंस के कहता है, दोनों, दिन में काम, रात में उसके सपने। सब हंसते हैं, पर धीरे धीरे वो भी नोटिस करते हैं कि मुस्तफा सिर्फ बुक्स नहीं उठा रहा, रिस्पेक्ट उठा रहा है। नेक्स्ट डे एक कोवर्कर एक बुक साइड में रख देता है, ले तेरे लिए। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर धीरे धीरे ये एक आदमी का शौक नहीं, एक टीम का मिशन बन जाता है। कभी कभी उनके बीच फनी बातें होती हैं, ये हॉरर बुक है, तू ले जा, तू ऑलरेडी स्कैरी है, ये रोमांस नॉवल है, इसको मुस्तफा को दो, उसकी लाइफ में थोड़ा रोमांस आए। और सब हंसते हंसते बुक्स कलेक्ट करते जाते हैं। अब प्रॉब्लम शुरू होती है, बुक्स बढ़ने लगती हैं। मुस्तफा के घर का हाल, बेड के नीचे बुक्स, अलमारी में बुक्स, किचन शेल्फ पे बुक्स, उसकी वाइफ, ये घर है या सेकेंड हैंड लाइब्रेरी? मुस्तफा कहता है, ये फ्यूचर का म्यूजियम है। टीम समझ जाती है, अब स्पेस चाहिए, तो क्रिएट करते हैं और उन्हें मिलती है एक

पुरानी डस्टी अबंडेंट फैक्ट्री की जगह जो पहले गार्बेज ट्रक्स के लिए यूज होती थी। उन्होंने फैक्ट्री साफ की, पेंट की, शेल्फ्स बनाए और बुक्स अरेंज की। धीरे धीरे कचरे की जगह कहानियों का घर बन गया। 2018 में ये लाइब्रेरी ओपन होती है, पर ये सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है, ये एक मैसेज है कि कुछ भी बेकार नहीं होता। एक छोटी लड़की आती है, अंकल ये बुक्स फ्री हैं? मुस्तफा मुस्कुराता है, नॉलेज फ्री होती है बेटा। उस लड़की की आंखों में चमक आ जाती है और फिर उस मोमेंट मुस्तफा समझ जाता है कि ये सब कुछ वर्थ इट था। फिर वो लोग रुकते नहीं, हर जगह बुक्स पहुंचनी चाहिए और स्टार्ट होता है एक मोबाइल लाइब्रेरी का मिशन। गाड़ी में बुक्स, गांव गांव तक नॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इवन प्रिजन्स तक ये कहानियां, ये किस्से और ये किताबें पहुंचती हैं, क्योंकि कहानी हर जगह जरूरी होती है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है जानते हैं? ये नहीं कि बुक्स बची, ये नहीं कि लाइब्रेरी बनी, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है जिन लोगों को सोसाइटी इग्नोर करती है वो लोग नॉलेज के रक्षक बन गए। हम क्या करते हैं? पुरानी बुक्स फेंक दो, पुराने कपड़े फेंक दो, पुराने रिश्ते छोड़ दो। पर मुस्तफा वो कहता है, देखो तो सही इसमें क्या बचा है। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो चीजों की कीमत देखते हैं और दूसरे जो चीजों की कहानियां देखते हैं। और जो कहानी देख लेता है वो कभी किसी चीज को कचरा नहीं कहता। आपने लास्ट टाइम क्या फेंका था? कोई किताब, कोई सपना या कोई रिश्ता? और अगर आज मुस्तफा होता तो शायद वो कहता, इसे मत फेंको, इसमें भी कहानी बाकी है। मैं हूं आपकी दोस्त और अगली कहानी तक याद रखिए, कभी कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज कचरे से ही मिलती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: लोग एडवाइस फ्री में देते हैं, पर गलतियां हम खुद करके सीखते हैं। मतलब गाइडेंस अनलिमिटेड है, पर समझ थोड़ी लिमिटेड। फ्री एडवाइस और पेड मिस्टेक्स।

दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था, जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन हैं। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे।

जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे, क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बालाश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है, आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है, ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे, हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थीं, अभी नहीं है। ऐसा खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। कंक्यार की कोख से फूटा बाल सूर्य, जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं? सूर्य एक सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीची की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: हमारे देश में भयंकर वाली टेक्नोलॉजीज चलती हैं। अमेरिका के दो साइंटिस्ट एक बात सुनकर हमारे देश की बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि घर में अगर चप्पल उल्टी रखती जाए तो लड़ाई हो जाती है।
0: दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

मदर टेरेसा की वो सात बातें जो हर पीआर प्रैक्टिशनर्स के लिए मददगार साबित होती हैं। मदर टेरेसा एक ऐसी महिला हैं जिन्हें दुनिया भर में उनकी करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थता के लिए जाना जाता है। उनके मृत्युपरांत आज भी लोगों और समाज के प्रति समर्पण के लिए उन्हें दिल की गहराइयों से याद किया जाता है। आज के ब्रांड्स ऑडियंस के बीच एक लंबे समय तक चलने वाली छवि बनाने का लक्ष्य रखते हैं। मदर टेरेसा के निम्नलिखित उदाहरणों से पीआर प्रैक्टिशनर्स कई सीख ले सकते हैं जो उन्हें अपने क्लाइंट्स के लिए एक लंबे समय तक चलने वाली छवि बनाने में मदद करेंगे। यहां सात बातें बताई गई हैं जिनका प्रत्येक पीआर प्रैक्टिशनर को पालन करना चाहिए। एक, ऑडियंस को अपनी प्राथमिकता बनाएं। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, आपके पास आने वाला हर व्यक्ति मुस्कुराकर ही वापस जाना चाहिए। ब्रांड्स का वजूद अपने कस्टमर्स की वजह से होता है। आखिरकार पब्लिक ही है जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदती है। अपने संपूर्ण जीवन के दौरान मदर टेरेसा अनेक लोगों की भलाई के लिए काम करती रहीं और खुद को दान, गरीबी और सादगी के साथ जीने के लिए समर्पित कर दिया। इसी तरह ब्रांड्स को भी जनता के प्रति केंद्रित होना चाहिए और उनके हित में मानवता का आदान प्रदान होना चाहिए। मदर टेरेसा की अपने से पहले अन्य लोगों के हित में सोचने की उदारता को हर एक ब्रांड को भी निश्चित तौर पर अपनाना चाहिए। दो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जैसा कहा वैसा करना। ब्रांड्स की अपनी एक पहचान होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति उन पर भरोसा कर सके। उस ब्रांड से बदतर कुछ भी नहीं है, जो कहता कुछ है और करता कुछ है। मदर टेरेसा ने अपने पूरे जीवन में एक ही बात सिखाई कि हमें अपना जीवन दूसरों की भलाई करने में ही व्यतीत करना चाहिए। वह स्वयं गरीबी में रहती थी लेकिन फिर भी दूसरों की सहायता करने के लिए भोजन और आपूर्ति की व्यवस्था करती ही रहती थी। पीआर प्रैक्टिशनर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जैसा कहें वैसा करें। तीन, कड़ी मेहनत करें भले ही कोई नहीं देख रहा हो। मदर टेरेसा को गति प्राप्त करने में बहुत समय लगा। डिजिटल युग के विकास के साथ सफलता की धारणा बदल जाती है। आजकल ऐसा माना जाता है कि सफलता रातों रात प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ये पूर्णतः गलत धारणा है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। कई बार आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है या आप हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका ध्यान अपने लक्ष्यों से हटना नहीं चाहिए। कई बार हमें कड़ी मेहनत का फल उतना अच्छा नहीं मिलता जितनी हमने मेहनत की थी, लेकिन इसके प्रति अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखें, क्योंकि देर से ही सही फल अवश्य मिलेगा। चार, दूसरों के नक्शे कदम पर चलने के बजाय अपना रुझान बनाएं। दुनिया भर में पहचान हासिल करने के बाद भी मदर टेरेसा ने इसकी चिंता किए बिना कि लोग क्या सोचते हैं, हमेशा ही एक साधारण जीवन जीना जारी रखा। उन्होंने खुली बाहों से लोगों को स्वीकार किया, उन्हें आजीवन प्यार किया और उनकी देखभाल की। प्रति सांस्कृतिक होने की क्षमता रखने वाले ब्रांड्स भी अपनी ऑडियंस के जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। ये एक जोखिम है लेकिन साथ ही साथ प्रभावी भी है। अपने कस्टमर्स को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न रुझान अपनाएं। ये आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएंगे और आपको भीड़ से बिल्कुल अलग पहचान दिलाएंगे। पांच, अपने आप पर विश्वास करें। मदर टेरेसा ने गरीबों की मदद करने और उन्हें ईश्वर के करीब लाने के लिए आजीवन बखूबी कार्य किए। संपूर्ण जीवन काल के दौरान उनका आत्म बलिदान उन्हें अन्य सभी लोगों से अलग स्थान देता है। इसी तरह पीआर प्रैक्टिशनर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए
कि ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जीवंत रखने की आवश्यकता है जो वो समाज को दे रहे हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। ये न केवल उन्हें काम में उद्देश्य स्थापित करने की भावना देगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना वास्तविक है। ब्रांड्स अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं यदि उन्हें अपने लक्ष्यों पर पूरा भरोसा है और वो इन लक्ष्यों के लिए कार्य करने को तैयार हैं। 6. आप जैसे हैं वैसे ही रहें। एक बात जो मदर टेरेसा को उल्लेखनीय व्यक्ति बनाती है वो ये है कि वे कभी भी अपने काम से नहीं भटकी। प्रसिद्ध होने के बाद उन्हें एक आरामदायक जीवन जीने का अवसर मिला, लेकिन वे कभी भी अपनी राह से नहीं भटकी। गरीबों और लाचारों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहीं। ब्रांड्स को भी अपनी डिमांड्स और पॉपुलैरिटी को देखते हुए भटक नहीं जाना चाहिए। उन्हें अपनी प्रसिद्धि का आदि नहीं होना चाहिए और अपने वजूद को कभी नहीं भूलना चाहिए। राह में कई ध्यान भटकाने वाले कारणों से अलग, ब्रांड्स को अपनी लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सटीक विकल्प बनाना चाहिए। 7. साधन संपन्न बने। इस विषय को लेकर मदर टेरेसा का मार्ग प्रशस्त था कि उनके पास जो कुछ भी है उसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए किस तरह किया जाए। स्ट्रेटजीज बनाने से पहले पीआर प्रैक्टिशनर्स की अंतर्दृष्टि भी स्पष्ट होनी चाहिए और उन्हें इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि समाज में उनके ब्रांड का क्या प्रभाव है। मदर टेरेसा ने हमें सिखाया कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। समाज को वापस देने के लिए विभिन्न परोपकारी कारणों के रूप में हर ब्रांड को इसे स्वीकार करना चाहिए। अपने सभी संसाधनों के उपयोग के साथ उन लोगों की मदद करने और समर्थन करने के विभिन्न तरीके खोजें जो इस दुनिया को जीने के लिए

एक बेहतर जगह बनाने की वजह बने। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? दोस्तों, हम जिंदगी में चलते चलाते सभी के बारे में राय बनाते रहते हैं। कभी कभी ये राय बड़ी खोखली भी हो सकती है। हम गलत सोच सकते हैं किसी के बारे में। आइए, इसी से संबंधित आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, आपके बात समझ में आ जाएगी। चलिए, मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे थे, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए बस यूं ही खड़े हो जाते हैं। पसीना पोंछते हैं, रुमाल निकालते हैं, रुमाल से अपने को हवा करने की कोशिश करते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक आदमी से आंखें मिलती हैं। आपकी ऐसी स्थिति देखकर वो आदमी हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। अब आपने फौरन उस आदमी के लिए एक राय बनाई। बड़ा ही सहृदय व्यक्ति है, न जान न पहचान, फिर भी पानी के लिए पूछ रहा है। अब उस व्यक्ति के लिए आपकी ये पहली राय है। क्यों? अब वो आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर लेता है। आप पानी लेने तेज कदमों से उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस आदमी के बारे में आपकी क्या राय है भाई? आप उसे गालियां देने लग जाते हो। क्यों? बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है, ढीला है, आलसी है, पता नहीं क्या क्या बोल डालते हो उसको आप। अब ये आपकी दूसरी राय है, देखिए। लेकिन थोड़ी सी देर बाद दरवाजा खुलता है और वो आदमी बाहर आता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी, उसे थोड़ी देर हो गई, उसके लिए बहुत बहुत खेद है, लेकिन आपकी हालात देखकर उसने आपको पानी के बजाय नींबू पानी देना जरा ज्यादा अच्छा समझा, इसलिए थोड़ा सा लंबा वक्त लग गया। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब आपकी क्या राय है। कितना अच्छा आदमी है ये, कितना सोचा उसने मेरे बारे में। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि शरबत में चीनी तो है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय बनाना चाहते हैं आप। अरे यार, बड़ा बेवकूफ आदमी है, नालायक है, बेहद कंजूस भी है। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उस समय उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी ले आया, जिससे आप जितनी चाहें उतनी डाल लें। अब उस व्यक्ति के बारे में क्या विचार है आपका? है ना मजेदार? अब आप मनन कीजिए, एक सामान्य स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली हो जाती है और लगातार बदलती जा रही है, तो क्या हम किसी के बारे में भी राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से राय ना बनाएं। पता नहीं कौन किस परिस्थिति या स्थिति में ऐसा काम कर रहा है, अब ये तो वही बेहतर जानता होगा ना। हो सकता है अपनी अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और दूसरा भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को बस इतना सा समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। क्यों दोस्तों, बात में दम है ना? सोचिएगा। दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: पंडित जी ने कुंडली मिलाई, 36 के 36 गुण मिल गए। लड़के वालों ने फिर भी मना कर दिया शादी से। लड़की वालों ने पूछा, भला ये क्या बात हुई, 36 के 36 गुण मिल गए हैं, फिर क्या परेशानी है? लड़के वालों ने कहा, हमारा लड़का बिल्कुल एक नंबर का निकम्मा है। अब आप चाहते हो बहू भी वैसे ही ले आए?

सीख तो हम कहीं से भी सकते हैं। कहते हैं कि जिंदगी से बड़ी पाठशाला और समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं, लेकिन अगर हम अपनी कल्पनाओं को और विस्तार दें तो पाएंगे कि प्रकृति ने हमारे लिए इतने सारे शिक्षक उपलब्ध कराए हैं कि हम सारी जिंदगी सभी से कुछ ना कुछ सीखते रह सकते हैं, बशर्ते कि हम में ज्ञान की प्यास हो और हमारी चेतनाएं जागरूक हों, जो हमें सुनने, देखने, स्पर्श करने, महसूस करने और सोचने में मदद करती हैं। अगर हम सब चीजों को नए नजरिए से देखना शुरू करें तो पाएंगे कि हर रोज हमारे जीवन में कुछ तो ऐसा नया जरूर आता है जो हमें कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रह्मांड की, नितांत अवर्णनीय, हमारे समस्त ज्ञान और कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा रहस्य।

लेकिन जब बात कुछ सीखने की आती है तो यह हमें इस बात की समझ देता है कि हम क्या हैं और वास्तव में कहां हैं। यह कोई इकाई नहीं बल्कि अरबों खरबों इकाइयों का विस्तार है। हम इसकी एक इकाई से भी बहुत ज्यादा कम हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मांड के बाद बारी आती है समय की। यह हमारे जीवन में बहुल प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। हर क्षण खास और शिक्षाओं से भरा हुआ होता है। इसका पूर्वानुमान सही पूर्वानुमान हमेशा असंभव प्रायः ही है। यह हमें अनपेक्षित के प्रति तैयार रहने की शिक्षा देता है। यह हमें जिंदगी के सभी पक्षों में अच्छे और बुरे की समझ विकसित करने में मदद करता है। जीवन हमें मिला हुआ एक और शिक्षक है। यह अनुभवों और आश्चर्यों से भरपूर होता है। हर अनुभव एक नए पाठ के समतुल्य है। हम अपनी गलतियों और सफलताओं से सीखते हैं। जीवन हमें जिंदगी के महत्व, इसकी उपयोगिता, इसे कैसे उपयोग करें, इसे कैसे अमूल्यता दें और कैसे इसे अधिकतम पाएं जैसी बातों के बारे में सिखाता है। नदी प्रवाह का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, पारदर्शिता का प्रतीक है। अपने प्रवाह को शाश्वत बनाए रखने के लिए चिर कटिबद्ध नदी कभी किसी से नहीं पूछती कि कहां जाऊं, कैसे जाऊं। यह हमें आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ बढ़ते जाना सिखाती है। नदी की बात चले और पानी की याद ना आए, ऐसा संभव है क्या? जीवन की एक अनिवार्यता के रूप में पानी हमें सामंजस्य की कला और विज्ञान दोनों सिखलाता है। यह क्षण भर में स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता है, लेकिन कभी भी उन्हें स्वयं पर हावी नहीं होने देता। अब पेड़ों की बारी। कभी सोचा है आपने कि पेड़ हमें हमारे जीवन में कितना कुछ देता है? यह बहुत सारी मूर्त और अमूर्त चीजें हमें देता है, जिनमें लकड़ियां, फलों, फूलों, सौंदर्य, ऑक्सीजन, छांव, सुकून और न जाने कितना कुछ शामिल है। पेड़ हमें किसी से कुछ भी अपेक्षा किए बिना जीने की कला सिखाते हैं। इसी तरह किताबें हैं। किताबें महज समय काटने की चीजें नहीं होती। ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। हम किताबों से अपने अपने जीवन के, हमारे परिवेश के, समाज के, संसार के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। वे हमें सिखाती हैं कि एक अच्छा, अनूठा और सफल व्यक्ति कैसे बने। मां, यदि पेड़ इंसान होते तो यकीनन मां जैसे ही होते। मां हमें स्वरहित प्रेम, दयालुता, कोमलता, ख्याल रखना, संसार को समझाना, समझौता किए बिना सामंजस्य स्थापित करना, वह सब कुछ सिखाती है जो हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों और नियामतों को सही ढंग से स्वीकार करना सिखाती है। लोग, हम एक ऐसे समाज में रहने के लिए बने हैं जो लोगों द्वारा या लोगों से बनता है। हमारे पूरे जीवन में लोग अलग अलग रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। वो हमारे मित्र हैं, संबंधी हैं, सहकर्मी हैं, साथी हैं, पड़ोसी हैं, अजनबी हैं, लेकिन हम उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वे हमें जीवन के विभिन्न स्वरूपों का मतलब और उन्हें समझने की कला सिखाते हैं। इतिहास। हीगल ने कहीं कहा था कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। कुछ वर्ष पश्चात स्पेनी दार्शनिक जॉर्ज सांतियाना ने इसमें जोड़ा कि जो अतीत को याद नहीं रख सकते वे ही उसे दोहराते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें इससे सीखना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को बचा सकें और एक आकार दे सकें।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: अचानक वाईफाई बंद हो गया है। चेक किया तो पता चला पड़ोसी ने बिल नहीं भरा था 2 महीने से वाईफाई का, इंटरनेट का। कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबवा की आवाज।
1: इस जाबाज सेना के पराक्रमी कप्तान को करगिल युद्ध के समय असाधारण शौर्य दिखाने के कारण
2: मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
3: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
4: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
5: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
4: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
5: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
4: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
6: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
7: क्या बात है,
6: सुनकर ही जोश आ गया।
7: हाँ
6: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
7: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
3: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है।

0: जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी

0: जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
1: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
2: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
1: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
3: कैप्टन विक्रम, 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
4: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
5: क्या बात कही है?
3: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
4: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
2: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
2: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
2: जी सर।
3: हमला करो दुर्गा माता की जय। भारत माता की जय।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
4: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नारायण तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
4: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जाओ।
4: मैं जा रहा हूँ।
1: साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीरगति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम जाबुआ की आवाज।
1: सपना हुआ सच।
2: जी हाँ। राम राम भाई।
3: राम राम भाई। राम राम। अरे हरिया, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे?
2: अरे भाई, मुझे अपने बच्चे का आपके स्कूल में दाखिला जो करवाना है।
3: देखो भाई, मैं यहाँ गेट कीपर हूँ, सब जानता हूँ। यहाँ तो बड़े बड़े अफसर, सेठ, साहूकारों के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत फीस लगती है।
2: हैं? पर मैंने तो कुछ और ही सुना है।
3: क्या सुना है भाई, जरा मुझे भी तो बताओ।
2: अरे भाई, मेरे पार्षद जी कह रहे थे कि काका, अब तुम अपने बच्चे को भी इस पास के बड़े स्कूल में भर्ती करवा देना है, फीस वगैरह सारा खर्चा सरकार देगी।
3: अच्छा?
2: बस तुम अपना गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र साथ ले जाना है। अगर उम्र का प्रमाण पत्र ना हो तब भी किसी बच्चे को दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता।
3: अरे वाह भाई, तुमने तो हमें नई बात बताई है। यदि ये सही है तो मैं भी अपनी 6 साल की बिटिया को इसी स्कूल में भर्ती करवा दूंगा। अब ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल मैडम के पास चलते हैं। चलो चलो
2: चलो।
3: मैडम जी नमस्ते।
4: नमस्ते। नमस्ते शंभू।
2: नमस्ते मैडम जी।
4: नमस्ते। आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए।
2: जी धन्यवाद।
4: कहो शंभू, कैसे आना हुआ?
3: मैडम जी, ये हरिया है, अपने बच्चे का इस स्कूल में नाम लिखाना चाहते हैं। मैंने समझाया भी, पर ये कह रहे हैं कि अब गरीबों के बच्चों को भी इन स्कूलों में दाखिला मिल सकता है।
4: अरे शंभू, तुम्हें नहीं मालूम, हरिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है, जिसमें गरीब छात्रों के लिए भी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों का आरक्षण रखा है।
3: अच्छा, तो मैडम जी, क्या मैं भी अपने बिटिया को दाखिला दिला सकता हूँ?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं। और हाँ, आजकल हमारे यहाँ दाखिला चल भी रहा है, आप दोनों आज ही फॉर्म भरकर दे दीजिए, क्योंकि जो पहले आएगा उसका दाखिला पहले किया जाएगा। बस तुम अपना BPL कार्ड या फिर SC ST का प्रमाण पत्र साथ जरूर लेकर आना।
2: देखा, मैंने कहा था ना।
3: आज मेरा सपना सच हो गया। मैडम जी धन्यवाद, और हरिया तुम्हारा भी धन्यवाद,
2: और शिक्षा के अधिकार कानून का भी धन्यवाद।
4: बिल्कुल ठीक, शिक्षा का अधिकार हमारा,
5: हर सपना सच हुआ हमारा।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

0: आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
1: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस 1875 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशाअत पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैदे बामशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबोरोज गुजारे उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
2: कट गया कैद में माहे रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माहे रमजान भी हसरत, घरचे सामान सहर का था ना इफ्तारी का।
1: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
3: जी आदाब बजा लाता हूँ
4: जनाब, मोहानी की खिदमत में।
3: अरे आप, आदाब अर्ज, आइए आइए, तशरीफ रखिए।
4: जी जी शुक्रिया शुक्रिया।
3: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
4: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
3: जी बस
1: जी। हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
3: जनाब बस जरा सी देर और, बस यू समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
4: जी जी आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में हूं।
3: ये थोड़ा सा अजीब है, लिख
4: भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं।
1: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
4: मोहानी साहब
3: जी,
4: ये पर्दे की ओट से निकाल कर आप क्या खा लेते हैं? कुछ खादिम को भी आता हो।
3: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
4: क्या मतलब?
1: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
3: ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
4: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
3: आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
4: या खुदा,
3: नौश फरमाइए मियां,
4: लाइए
3: खाइए।
5: हम मशकूर हैं उन तमाम शूरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
1: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शूरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
3: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए।
6: इरशाद ग्रामी
3: है, मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी।
7: वाह क्या बात है, है मश्क सुखन जारी
3: चक्की की मशक्कत भी।
7: वाह,
3: एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी।
7: एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत।
3: क्या बात,
7: क्या
1: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
7: जना क्या खूब गजल कहते हैं आप।
4: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
7: मोहानी साहब, इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, ये लिफाफा हमारी तरफ से।
4: जी नहीं नहीं नहीं, नहीं। मोहानी साहब, ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
3: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए।
4: नहीं, दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
7: क्या?
4: जी,
3: एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया, टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
4: अरे मोहानी साहब,
3: शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब, चंद अशार सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाएं।
7: आप भी मोहानी साहब। लेकिन मोहानी साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो दें।
3: नहीं नहीं, माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी, मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे।
4: मोहानी साहब, खामखा खर्च कैसा?
3: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
7: मोहानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
1: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
6: अरे लीजिए ना हजरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
3: बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया।
6: आपने तो कुछ खाया ही नहीं।
3: कुछ नहीं खाया? यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया। वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही?
6: जी बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
3: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
6: जी, और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
3: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
6: जी शब्बा खैर।
3: शब्बा खैर। बला की ठंड है, लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है, और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए। अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
1: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
3: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का। बरसाना ओ नंदगांव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगाम हयात जाविदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
1: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवार बाग में दफन हैं। लेकिन सच पूछिए तो उनकी जगह हर सच्चे मुहिब्बे वतन के दिल में है।
3: हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी। सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है आज।
1: भगत सिंह।
8: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
9: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
8: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
10: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
11: कौन है?
12: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
11: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
12: तीर्थ करने चला गया था अमृतसर।
11: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
12: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख,
11: ये इस शीशी में क्या है?
12: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
11: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
12: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़े।
11: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
12: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
8: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
10: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया।
13: जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता। की जय।
10: पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
12: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
14: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
12: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
14: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
10: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
15: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजी प्रेम कुमार सोनी और आप है मेरे साथ रेडियो 90.8 एफएम झावा की आवाज पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बालिका एवं महिलाओं के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम, नारी सम्मान अभिमन्यु अभियान। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि विकसित व सुरक्षित समाज का निर्माण महिला एवं पुरुषों की समान सहभागिता से ही किया जा सकता है। अतः महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है कि समाज में बालकों एवं पुरुषों को न केवल महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक किया जाए बल्कि उन्हें संवेदनशील बनाकर पूर्वाग्रह मुक्त सकारात्मक व्यवहार विकसित किया जाए। आज बच्चों एवं महिलाओं पर घटित अपराधों को देखते हुए अपराधों की रोकथाम एवं महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर विशेषकर पुरुषों को जागरूक करने हेतु पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, अभिमन्यु अभियान। ये अभिमन्यु अभियान क्या है और ये क्यों चलाया जा रहा है, इस अभियान के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे बीच हमारे आज के खास कार्यक्रम की मेहमान हैं महिला सुरक्षा शाखा की डीएसपी वर्षाजी सोलंकी। हम रेडियो टिंटेभील 90.8 एफएम झावा की आवाज की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैडम। और जिस तरह से ये अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है और जिले में भी व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, तो ये अभियान क्या है हमारे श्रोताओं को आप विशेष रूप से बताने का कष्ट करें, जानें कि किस तरह से पुरुषों को विशेष रूप से जागरूक करने का ये अभियान है, तो ये क्या है।
16: जी नमस्कार, रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। यह अभियान अभिमन्यु जो है वो पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका यह द्वितीय चरण है जो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से हम समाज में व्याप्त जो कुरीतियां होती है उसे एक चक्र के रूप में देखते हुए और उस चक्र को तोड़ने के लिए यह अभियान चला रहे हैं। जैसे नशा, अशिक्षा, दहेज प्रथा, लिंग भेद, अश्लीलता, असंवेदनशीलता आदि का जो दुष्चक्र है जो हमारे दिमाग में और हमारे समाज में बहुत गहराई तक व्याप्त है, उसे हमें तोड़ना है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के पुरुषों एवं बालकों को जागरूक करना है ताकि वे अभिमन्यु बनकर इस दुष्चक्र को तोड़ सकें।
13: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे उद्देश्य के साथ ये अभियान चल रहा है और हमें सभी को जागरूक करते हुए समाज में व्याप्त नशा, दहेज प्रथा, लिंग भेद, अशिक्षा आदि के दुष्चक्रों को तोड़ना ही होगा। साथ ही हमारा एक सवाल ये था कि पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो इस अभियान के तहत ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से सभी को जागरूक किया जा रहा है?
16: जी, इस अभियान के तहत हम मुख्य रूप से नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं जो भीली भाषा अपने झाबुआ जिले को देखते हुए भीली भाषा में किए जा रहे हैं। प्रश्नावली पूछी जा रही है, समझाइश दी जा रही है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, पोस्टर और बैनर के साथ में लोगों को लोकल भाषा में समझाइश दी जा रही है। साथ ही स्कूल के छात्र छात्राओं को महिला सम्मान और समानता की शिक्षा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे चित्रकला, प्रश्नावली, मैराथन रेस आदि भी करवाए जा रहे हैं।
13: जी, इसी अभियान के तहत विभिन्न माध्यमों से सभी को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। महिला अपराधों पर अंकुश लगाने तथा समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण निर्मित हो, इस हेतु यह महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह अभियान का दूसरा चरण है और इससे पूर्व इसका एक चरण पूरा हो चुका है, तो क्या लगता है अभियान के प्रथम चरण में जागरूकता का कितना व्यापक असर दिखाई दे रहा है?
16: जी, ये अभियान का दूसरा चरण है। पहला चरण हमारा 12 जून से लेकर 19 जून तक चलाया गया था, जिसमें हमने मुख्य रूप से गांव-गांव तक एवं फलियों तक जाकर जागरूकता का कार्य किया है, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अब हम जब दूसरे चरण में जाके लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ मैडम, पहले भी पुलिस आई थी और हमें ऐसी चीजें बताई थी जिसे हमको समझ में आता है, लेकिन अब और ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। क्योंकि मानव की प्रवृत्ति होती है कि एक बार सुनने से उसे कम समझ में और कम याद रहता है, वो दूसरी बार सुनता है और देखता है तो उसे ज्यादा समझ में आता है। और यह अभियान तब तक चलाया जाएगा जब तक कि समाज में व्याप्त कुरीतियां समाज से दूर नहीं हो जाती है और नारी का सम्मान स्थापित नहीं हो जाता है।
13: जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। यकीनन ही जब तक समाज में व्याप्त कुरीतियां दूर नहीं हो जाती, तब तक हमें लगातार इसी तरह के अभियान चलाकर सभी को जागरूक करने की आवश्यकता है। नारी का सम्मान स्थापित होना चाहिए और यही बात हमारे धर्म शास्त्रों में भी देखने को मिलती है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफलाः क्रियाः। अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहां देवता भी निवास करते हैं, और जहां नारियों का सम्मान नहीं होता, उन पर अत्याचार होता है, वहां किए गए समस्त अच्छे कार्य भी निष्फल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। जी, तो ये कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा एक सवाल यह था कि पुलिस लगातार महिला सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है और पुलिस विभाग द्वारा इस हेतु लगातार विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में आज महिलाएं एवं बालिकाएं अपनी सुरक्षा को लेकर कितनी जागरूक हैं और पुलिस से किस प्रकार सहायता प्राप्त करती हैं?
16: हमारे जिले झाबुआ में आपको ज्ञात होगा कि शिक्षा का स्तर कुछ हद तक नहीं, ये कहा जा सकता है कि बहुत हद तक कम ही है। तो जब हमें शिक्षा नहीं है तो हम अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं, उनके बारे में हमें समझ नहीं होती है, तो उन्हें बताने के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अगम जैन सर और हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रेमलाल कुरवे जी, उनके निर्देश अनुसार मैंने कई प्रकार के महिला सुरक्षा संबंधित अभियान चलाए हैं। मुझे लगता है कि जागरूकता ही एक ऐसा माध्यम है जिससे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने का महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। और जो महिलाएं या बालिकाएं हमसे किसी न किसी रूप में किसी अभियान में जुड़ी हैं, उनमें हमने ये देखा है कि वो पुलिस की सहायता कैसे ले सकती है या अपने अधिकारों को किस हद तक प्राप्त कर सकती है, उनमें धीरे धीरे समझ आ रही है, परंतु संभावनाएं अब भी है।
13: जी बहुत सुंदर। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के साथ ही हमें जागरूक होना ही होगा, और जागरूकता ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा महिलाओं संबंधी अपराधों में कमी आएगी और उन पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगेगी। पुलिस लगातार इस कार्य में लगी हुई है, और झाबुआ जिले में भी पुलिस कप्तान अगमजी जैन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे जी के निर्देश अनुसार महिला सुरक्षा संबंधी अभियान सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों सहित गांव गांव और फलिए फलिए जाकर सभी को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, तो यकीनन ही यह प्रयास सफल होगा और महिला संबंधी अपराधों पर नियंत्रण होगा, इस पर अंकुश लगेगा और महिलाओं का सम्मान कायम होगा। तो कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए हम ये कहेंगे कि हमारे रेडियो टंटे भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज के जो श्रोता हैं, जो विशेष रूप से हमारे इस खास कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके लिए और विशेष रूप से पुरुषों के लिए जो ये अभियान चल रहा है, वे महिलाओं का सम्मान करें, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
16: जी, मैं DSP वर्षा सोलंकी आपके रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के सभी श्रोताओं को, विशेष रूप से पुरुषों एवं बालकों को से यही कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा नारी का सम्मान करें, उन्हें समाज में समानता प्रदान करें और अभिमन्यु की भांति दुष्चक्र को अवश्य तोड़ें। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप शिक्षित हो, आगे बढ़े, और यदि आपको कोई भी परेशान करता है तो हमारे पास आए, झाबुआ पुलिस आपके लिए सदैव खड़ी है। धन्यवाद।
13: जी यकीनन बहुत ही सुंदर सुंदर और उपयोगी बातें आज आपने हमारे श्रोताओं को बताई कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है, जागरूक होना बहुत जरूरी है। हम शिक्षित और जागरूक रहेंगे तो हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने सम्मान को कायम कर सकते हैं, सम्मान से रह सकते हैं। तो मैडम, आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पूर्व अंत में सभी के लिए ये जानना चाहूंगा कि आपात स्थिति में जब पुलिस की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी में बालिकाएं या महिलाएं आ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में पुलिस सहायता का कोई विशेष नंबर भी हमारी माता एवं बहनों को आप अवश्य बताइए, जिनके माध्यम से वे पुलिस से संपर्क कर उनसे सहायता प्राप्त कर सकें।
16: जी, इसके लिए सबसे सरल और सहज नंबर है 100। डायल 100 करके आप तुरंत पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, महिलाओं से संबंधित जो हेल्पलाइन चलाई जा रही है, उसका नंबर है 10981098। ये नंबर है, और इसके साथ ही हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है 7049140525। इसके साथ साथ में आपको कभी भी कहीं भी कोई भी परेशानी आती है तो आप सबसे पहले 100 नंबर लगा के पुलिस को तुरंत अपने पास बुला सकते हैं। जी धन्यवाद।
13: तो दोस्तों, ये थी महिला सुरक्षा शाखा की DSP वर्षा जी सोलंकी, जिन्होंने आज हमारे सभी सम्मान्य श्रोताओं को पुलिस सहायता के विशेष नंबरों के साथ महिला सुरक्षा की कई उपयोगी बातें बताई कि किस प्रकार से वे पुलिस से सहायता प्राप्त कर सकती हैं, किस प्रकार जागरूक और सुरक्षित रह सकते हैं। तो मैडम, हमें अच्छा लगा कि आज आप हमारे बीच उपस्थित रहे और हमारे श्रोताओं को कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपने प्रदान की। हम रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। तो श्रोताओं, आज के हमारे खास कार्यक्रम नारी सम्मान अभिमन्यु अभियान के माध्यम से आपने महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान पर कई विशेष बातों को जाना। हमें आशा है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम ऐसे ही कई विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते रहेंगे आपके अपने पसंदीदा रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज पर। तो मैं आपका दोस्त आरजी

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम खेती बाड़ी में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांडिया भील 90.8 FM जावा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM की ऐप के माध्यम से काफी विद्यार्थियों ने और किसानों ने इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड किया है और खेती संबंधी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर झाबुआ के मौसम के ऊपर। झाबुआ का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस, कल की वर्षा 9.4 मिलीमीटर, 1 जून से अब तक की कुल वर्षा 152.6 मिलीमीटर नापी गई है। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપું રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं उड़द की खेती के ऊपर, साथ ही जानेंगे तिल्ली की खेती और मशरूम की खेती। किसान साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नजर मंडी भावों के ऊपर।
2: कहीं उठा पटक तो कुछ मंडियों में स्थिर रहे उड़द के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में 295 रुपए उछले उड़द के सौदे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उड़द से। इस साल देश में होने वाले दालों के निर्यात में बम्पर इजाफा देखने को मिला है। साल 2022 में अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 1,89,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले 1,52,000 टन अधिक है। वहीं कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला।
3: कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को मंडियों में उड़द के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़े, जबकि कुछ में नरमी देखने को मिली। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में उड़द के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जसदन मंडी में 14 जुलाई को उड़द का भाव रहा 5,500 रुपए, 15 जुलाई को इसके भाव में 1,250 रुपए का उछाल आया और भाव 6,750 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 14 जुलाई को यहां उड़द का भाव था 7,165 रुपए, 15 जुलाई को इसके सौदे 295 रुपए चढ़कर 7,460 रुपए पर हुए, जबकि मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में उड़द के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 14 जुलाई को उड़द का भाव रहा 4,501 रुपए, 15 जुलाई को इसके सौदों में 1,101 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 3,400 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते दो दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 15 जुलाई को उड़द 7,800 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो शुक्रवार को हरदोई मंडी में उड़द का भाव रहा 7,550 रुपए, महोबा मंडी में भाव रहा 5,480 रुपए, गोंडा मंडी में उड़द 7,400 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बदायूं मंडी में इस दौरान

0: हमारे छाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम पर। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। किसान साथियों, उड़द से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को अभी आपने जाना। अभी हम जानेंगे तिल्ली से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर तिल्ली के मंडी भावों पर।
2: कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में तिल बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 14 जुलाई को काले तिल का भाव रहा 13,400 रूपए। 15 जुलाई को इसके भाव में 75 रूपए की तेजी आई और भाव 13,475 रूपए पर जा पहुँचा। जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 14 जुलाई को तिल का भाव था 13,250 रूपए। 15 जुलाई को इसके सौदे 1,000 रूपए लुढ़क कर 12,250 रूपए पर हुए। वहीं जसदन मंडी में 14 जुलाई को सफेद तिल का भाव रहा 11,625 रूपए। 15 जुलाई को इसके सौदों में 125 रूपए की मजबूती आई और भाव हो गया 11,750 रूपए। धोराजी मंडी में गुरुवार को सफेद तिल का भाव रहा 12,005 रूपए। शुक्रवार को इसके भाव में 125 रूपए की गिरावट आई और भाव 11,880 रूपए पर आ गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में बीते दो दिनों के दौरान तिल के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 15 जुलाई को तिल 8,860 रूपए पर बिकी। इस साल देश में तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ तिल की उपज बीते साल के मुकाबले 40,000 टन ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 8,57,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान तिल की पैदावार 8,17,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25,00,000 टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी।
1: किसान साथियों, अभी हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से मंडियों में तिल्ली भाव को जाना। अलग अलग मंडियों में क्या भाव हो रहा है, क्या भाव है अभी, इन सारी जानकारियों को अभी हमने सुना। आइए लेते हैं एक्सपर्ट की राय, आने वाले समय में क्या हमें तिल्ली को लेकर हो सकता है फायदा या यह हमारे लिए घाटे का सौदा बन सकता है। आइए सुनते हैं।
3: बिल्कुल, अगर हम तिल की बात करते हैं तो मंडियों के अंदर जो आवक है वो सामान्य से हमें ज्यादा आती हुई दिखाई दे रही है। इसका उत्पादन भी जो है वर्ष दर वर्ष अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें ज्यादा ही दिखाई दिया है। लेकिन अगर हम निर्यात को देखते हैं और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम इसकी डिमांड देखते हैं तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें कम ही दिखाई दी है, इसलिए इसके भावों में हमें नरमी दिखाई दी है।
4: यानी जो उपज है पैदावार के मुकाबले जो बाजार मांग है वो इतनी अधिक नहीं है, और जैसा कि आपने बताया कि निर्यात भी इतना ज्यादा इसका दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम उपज के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या करना चाहिए किसानों को ऐसे में?
3: बिल्कुल, अगर हम स्थिति की हम बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में किसानों को इसमें बिकवाली ही करनी चाहिए। इसमें आंशिक बिकवाली जो है 2-5% तक की रह सकती है।
4: बिल्कुल, तो बिकवाली ही बेहतर रहेगा, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं। तो जिन किसानों ने तिल की फसल ली, जिनके पास तिल का स्टॉक है, उनके लिए बेहतर यही है कि इसे मंडियों में ले जाएं और आप बेच दें जो भाव मिल रहे हैं उसी पर। बढ़ते आगे और बात करते हैं हरी मिर्च के, नजर डालते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे हरी मिर्च के भाव। शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ मंडी से, जहां पर हरी मिर्च का भाव रहा 1,500 रूपए। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भाव रहा 4,750 रूपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 2,500 रूपए और राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रूपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जानेंगे सोयाबीन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।

0: सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांडिया भील 90.8 FM जाबा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आ रहा है। किसान साथियों, आइए जानते हैं सोयाबीन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: वेजिटेबल सोयाबीन एक तरह की फलीदार सब्जी है। इसकी फली में दो या तीन बीज पाए जाते हैं। बीजों का आकार अनाज वाली सोयाबीन से थोड़ा बड़ा और कुछ अलग रंग का होता है। गोले वाली हरी बीन्स का उपयोग स्वादिष्ट पकी हुई सब्जियों के रूप में किया जाता है, जबकि सूखे बीजों का इस्तेमाल मूल्य वर्धित उत्पादों को बनाने में। वेजिटेबल सोयाबीन में शर्करा की मात्रा 75% से भी ज्यादा पाई जाती है। इसमें आसानी से पच जाने वाली प्रोटीन होती है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जरूरी फैटी एसिड, फॉस्फोरस, लोहा, कैल्शियम, जस्ता और थियामिन भी होता है। इसके अलावा ये राइबोफ्लेविन, विटामिन ई, आहार फाइबर और चीनी का बेहतरीन स्रोत है। पोषण से भरपूर होने की वजह से ही इसकी अपनी पहचान है। किसानों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए झारखंड और दूसरे राज्यों में इसकी खेती शुरू की गई। चंद्रकांत देशमुख कृषि व्यवसायी हैं। इनका गांव वारपुड़ महाराष्ट्र के परभणी तालुका में पड़ता है। यहीं पर उन्होंने 10 एकड़ जमीन पर स्वर्ण वसुंधरा बोई। अच्छी देखभाल और सही समय पर फसल काटने के बाद उन्हें प्रति एकड़ 15 क्विंटल हरी फली प्राप्त हुई। अनुभव बताते हैं कि एक एकड़ स्वर्ण वसुंधरा बोने पर कुल लागत 30,000 रुपए आती है। इसमें भूमि का पट्टा मूल्य, खेत की तैयारी, खाद और उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक और कटाई वगैरह पर आने वाले तमाम खर्च शामिल हैं। जब बीज बड़े होकर फली की चौड़ाई के 80-90% हिस्से को घेर लें, तो समझ लीजिए सब्जी के लिए सोयाबीन तैयार है और इसकी कटाई की जा सकती है। पहली कटाई बोने के 70-75 दिनों के बाद होती है। 15 क्विंटल प्रति एकड़ की फसल होने पर देशमुख की कुल आमदनी 3 लाख रुपए हुई। ऐसा तब है जब बाजार में फली का दाम 200 रुपए किलो हो। इस तरह एक एकड़ में शुद्ध लाभ 2,70,000 रुपए बैठता है। अगर आपको और ज्यादा कीमत चाहिए तो फिर हरी फली को प्रस्फुटित यानी ब्लेंच करना होगा। देशमुख ने -18 डिग्री सेल्सियस पर हरी फली का भंडारण किया। इस तापमान पर फली को 18 महीने तक संग्रहित किया जा सकता है। देशमुख 2 और 3 बीजों वाली प्रस्फुटित और फ्रोजन हरी फलियों को बाजार में 300 रुपए किलो के भाव बेचने में कामयाब रहे। सोयाबीन के बीजों को सुखाकर भी बेचा जा सकता है। इसका बाजार भाव 100-150 रुपए किलो होता है। अगर आप चाहें तो सूखे परिपक्व बीज से टोफू यानी सोया पनीर भी बना सकते हैं। स्वर्ण वसुंधरा के 1 क्विंटल अनाज से 225 किलो सोया पनीर बनता है, जिसमें 13,000 रुपए की लागत और 54,000 से भी ज्यादा का शुद्ध लाभ कमाया जा सकता है। इसके अलावा भुने हुए अनाज से अच्छी क्वालिटी का सत्तू बनता है। 8 घंटे तक पानी में भिगोने के बाद अनाज का सेवन पौष्टिक भोजन के रूप में भी किया जाता है। स्वर्ण वसुंधरा के अनाज से सोया दही 6

0: ना आइसक्रीम और गुलाब जामुन तैयार किए जा रहे हैं।
1: किसान साथियों, अभी आपने सोयाबीन के उत्तम बीज की किस्मों को जाना, अपने स्वर्ण वसुंधरा सोयाबीन को जाना, कैसे हम उससे दही बनाया जा सकता है, उससे खाद्यान्न की चीजें बनाई जा सकती है, उसमें प्रोटीन की मात्रा काफी अच्छी होती है जो हमारे लिए हम आसानी से जिसे पचा सकते हैं, उसे सोया पनीर बनाया जा सकता है और भी अन्य चीजें बनाई जा सकती है। किसान साथियों, जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आइए डालते हैं एक नजर जुलाई के इस कृषि कैलेंडर के ऊपर।
2: ये मौसम टमाटर की हल्की सिंचाई के लिए अनुकूल है। खेत में नमी बनाए रखने के लिए 5 से 6 हल्की सिंचाई जरूरी है। फसल को घास पात से साफ करने के लिए 2 से 3 निराई गुड़ाई का कार्य करें। टमाटर के रोग ग्रस्त पौधों को उखाड़कर जमीन में दबा दें। फल छेदक और झुलसा रोग की निगरानी करें और बचाव हेतु उचित कीटनाशक का छिड़काव करें।
3: सोयाबीन का बोने के लिए उचित समय 25 जून से लेकर 7 जुलाई तक है और अभी भी किसान यदि लगाना चाहें तो, हालांकि उपज में कमी आएगी, देरी से बोने पर उपज में कमी आती है, ये 15 जुलाई तक लगा सकते हैं। यदि समय और प्रबंधन उचित हो तो उपज दे सकती है।
4: जी बिल्कुल, तो 7 जुलाई आपने कहा कि हमारे किसानों को कर लेनी चाहिए, लेकिन अभी किसी कारणवश अगर नहीं की गई है तो वो 15 जुलाई तक इसकी बुआई का काम कर सकते हैं। हालांकि उपज में जरूर कमी आ सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उचित प्रबंधन किया जाए। जी बिल्कुल, तो वो कौन कौन से उचित प्रबंधन है इनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डाल लेते हैं।

0: सोयाबीन यानी स्वादिष्ट, पौष्टिक और गुणों से भरपूर हर किसी को अच्छी लगती है। सोयाबीन भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है। इसमें लगभग 40% प्रोटीन, 20% तेल के साथ अनेक औषधीय गुण हैं। सोयाबीन का इस्तेमाल आज कई रूपों में होता है। यही कारण है कि आज हमारे किसान बड़ी तादाद में सोयाबीन की खेती कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: हल्दी में बहुत सारी किस्में जो हैं वो प्रचलित हैं, जैसे कि रोमा, सुरोमा, मेघा, राजेंद्र सोनिया। इसके अतिरिक्त स्थानीय किस्में भी हैं, क्योंकि हल्दी और अदरक जैसी फसलों में बीज की मात्रा काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो जो स्थानीय किस्में भी अगर अच्छी गुणवत्ता की हैं तो किसान भाई उनका भी प्रयोग कर सकते हैं।
3: जी बिल्कुल, तो ये तमाम हल्दी की किस्में हैं जिनका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं अगर वो अपनी फसल का अच्छा उत्पादन हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अगर हमारे किसान बुआई कर रहे हैं तो उससे पहले बीजोपचार किस प्रकार किया जाए?
2: हल्दी और अदरक दोनों में गठी सड़न का जो रोग है वो काफी प्रमुख है। हालांकि हल्दी में इसकी समस्या नहीं भी आती है, लेकिन अदरक में यह एक गंभीर समस्या है। तो बीज भंडारण के समय में भी इसी तरह का बीज उपचार किया जाता है, और बीज की खेत में रुपाई से पहले भी बीज गठियों को अच्छी तरह उपचारित करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इस उपचार के लिए डायथिन M45 0.25% तथा बेबिस्टीन 0.10% का घोल बनाकर और उसको जो है वो गठियों को उसमें 1 घंटे तक अच्छी तरह डुबो कर रखें तथा बाद में छाया में सुखाएं और उसके बाद ही इसका जो बिजाई है खेत में वो करें।
4: किसान भाइयों, ये जानते हैं अदरक की खेती हमें कब करनी चाहिए, कब हमें इसे लगाना चाहिए ताकि हमें उपयुक्त समय पर हम इसकी देखरेख कर सकते हैं और सही समय पर हम इस उपज को बाजार में बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा ले सके। तो आइए जानते हैं कब हमें इन्हें लगाना चाहिए, जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: वैसे तो पूरे भारतवर्ष में अदरक की बिजाई का जो समय है वो अप्रैल और मई महीने का रहता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा है उनमें जो है वो फरवरी माह में भी अदरक की जो बुआई है वो की जा सकती है, लेकिन ये सुनिश्चित होना चाहिए कि आने वाला जो गर्मी का मौसम होगा अप्रैल मई जून का महीना, इसमें सिंचाई की व्यवस्था हो,
3: सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। जैसे जनवरी के महीने में काफी ठंड पड़ती है,
2: जनवरी तो
3: उसमें कर सकते हैं क्या?
2: जनवरी में तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब टेम्परेचर या तापमान जो है वो काफी नीचे रहेगा तो उसकी जो अंकुरण है गठियों का वो नहीं होगा। इसलिए फरवरी माह के बाद, मध्य फरवरी के बाद जो है कुछ क्षेत्रों में दक्षिण भारत में खास करके इसकी बिजाई की जाती है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था का सुनिश्चित होना।
3: बिल्कुल, जैसे ये ओडिशा से बात कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं फरवरी,
2: जनवरी तो नहीं लेकिन फरवरी के
3: मध्य फरवरी से अगर आप करना चाहते हैं बुआई तो आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा रवि जी कि सिंचाई की उचित व्यवस्था हो आपके इलाके में, तभी आप इसका चुनाव करें बुआई के लिए फरवरी मध्य के दौरान।
5: सोयाबीन की देरी की अवस्था में जो जल्दी पकने वाली जातियां हैं उनका चुनाव करना चाहिए, जैसे JS 95-60, JS 20-34, JS 93-05, जो जल्दी पकती है, मतलब 85 से 90 दिन में पकती है, उन जातियों का चुनाव करें। साथ ही बीज दर 25% बढ़ा लें, जो बीज दर उचित समय में बोते हैं उससे 25% अधिक बीज बोएं और बीज उपचार करके बोएं। बीज उपचार के लिए थायरम और कार्बेंडाजिम, 2 ग्राम थायरम लें और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम लें, इस तरह 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसका उपचार करें, या फिर थायरम प्लस कार्बोक्सिन नाम की दवाई है उसका भी 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। उसके बाद में आप यदि यहाँ पर पीला मोजेक आने की संभावना है वहाँ पर इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक दवाई से भी उपचारित करें, जैसे थायोमेथॉक्सिम है, या इसको 10 मिलीलीटर प्रति किलो बीज, या फिर इमिडाक्लोप्रिड दवाई है उसको 1.25 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। तत्पश्चात उसमें राइजोबियम एवं पीएसबी से उपचारित कर उसकी बोनी करना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन किसान
3: जी को बिल्कुल प्राप्त। तो ये कुछ जल्द पकने वाली किस्में हैं जिनका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं अगर वो सोयाबीन की बुआई करना चाहते हैं। साथ ही साथ जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि बीजोपचार करना बहुत जरूरी है, वरना आगे चलकर आपकी फसल जो है उससे काफी नुकसान पहुंच सकता है, गुणवत्ता पर काफी असर पड़ सकता है, जिससे उसकी क्वालिटी जो अगर कम हो जाएगी तो उसका मूल्य भी आपको कम ही मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप पहले ही तैयारियां करके रखें ताकि आपको बाद में कोई नुकसान ना झेलना पड़े।
5: सोयाबीन की बढ़वार के लिए सबसे प्रथम बात आती है पानी की। यदि बराबर वर्षा होती रहती है तो सोयाबीन की बढ़वार अधिक होती है। और बढ़वार नहीं होने का दूसरा कारण होता है कि पोषक तत्वों की कमी। यदि हम जो अनुशंसित मात्रा है सोयाबीन के लिए 25 किलो नत्रजन, 60 किलो स्फुर, 40 किलो पोटास एवं 20 किलो सल्फर गंधक की आवश्यकता होती है अच्छे उत्पादन के लिए, ये अनुशंसित मात्रा है और ये पोषक तत्व सोयाबीन के बोने के समय ही दिया जाना चाहिए। खड़ी फसल में कोई भी खाद का उपयोग न करें तो सोयाबीन की बढ़वार अधिक होती है।
3: जी बिल्कुल, सिंचाई का उचित ध्यान रखें, साथ ही साथ पोषक तत्व प्रबंधन जो है वो फसल की बढ़वार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसका ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, गठी सड़न रोग कैसे नियंत्रित किया जाए?
2: गठी सड़न, जैसा कि मैंने कहा कि अदरक की फसल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है
3: जी,
2: और इसका उपचार करने के लिए सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि बुआई से पहले जो है वो गठियों का उपचार करना, और इसी तरह से जैसे फसल को निकाला जाता है और बीज के लिए जो फसल रखनी है भंडारण से पहले भी उसी तरह का गठियों का उपचार किया जाना है
3: जी।
2: और अगर इस तरह की समस्या खड़ी फसल में खेत में आती है तो इसका या तो इसी घोल का ड्रेंचिंग करके, यानी के पौधों की जड़ों में इसकी इस घोल की सिंचाई करें, या इसका छिड़काव जो है वो पौधों के ऊपर करें
3: जी।
2: विशेषकर पानी की निकासी का ध्यान रखें, क्योंकि वर्षा ऋतु में अगर पानी खेतों में रुकता है तो किसी भी तरह का कोई उपचार जो है वो काम नहीं आएगा, लेकिन पानी की निकासी पहले करना बहुत जरूरी है
3: जी। पानी की निकासी करना भी बेहद जरूरी है, और साथ ही साथ जो आपने अभी उपचार बताए हैं वो करने भी बहुत जरूरी है, तभी जाकर ये जो रोग है, जो समस्या है, इसका समाधान आपको मिल पाएगा, इससे निजात आपको मिल पाएगा, और आपकी जो फसल है वो एक स्वस्थ रूप में आपको मिल पाएगी, जिससे आपको सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा।
4: किसान साथियों, अगर हमारी खेती में खरपतवार अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, हमें कौन सी दवाई इसमें डालनी चाहिए, आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी को।
5: सोयाबीन की फसल जो खड़ी फसल है और 15 से 20 दिन की हो गई है, उसमें खरपतवार नाशक दवाइयों से हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम आप इमेजेतापीर नाम की दवाई है, जिसको 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव करेंगे तो सभी प्रकार के खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा, जहाँ पर जिन खेतों में केवल सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं वहाँ पर किजोलोफापिथाइल नाम की दवाई है, फिनॉक्सीप्रोपिथाइल है, किजोलोफापीटेफुरिल है, ये दवाइयाँ 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे तो वहाँ पर सभी सक्रिय पत्ती वाली खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। यदि जिन खेतों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की अधिकता है वहाँ पर क्लोरीमुरान इथाइल नाम की दवाई है, इसकी मात्रा केवल 36 ग्राम प्रति हेक्टेयर है, इसका उपयोग यदि करेंगे आप तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाएंगे और सोयाबीन की फसल को खरपतवार से हानि नहीं होगी
3: जी। बिल्कुल, खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार किया जाए ये तो आपने बता दिया डॉक्टर बिल, और अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हम देख रहे हैं कि काफी जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश भी हमें देखने को मिल रही है, तो जो ज्यादा भारी बारिश वाले क्षेत्र हैं वहां पर अगर हमारे किसानों ने सोयाबीन की फसल लगाई है तो क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है उन्हें?
5: सोयाबीन की फसल में अधिक बारिश से ज्यादा नुकसान होता है बजाय सूखे के तुलना में
3: जी,
5: तो जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है सोयाबीन की फसल में। जहाँ पर भी जल जमाव होता है, जिन खेतों में जल जमाव होता है वहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था अवश्य करें। और यदि भविष्य में इस बार यदि आपने फ्लैट बेड पे समतल जमीन पर सोयाबीन बोई है तो अगले वर्ष से सोयाबीन को बोने की पद्धति ब्रॉड बेड फरो या रिच फरो पद्धति से यदि सोयाबीन को लगाएंगे तो जब अधिक बारिश होती है तो फरो से पूरा अधिक मात्रा वाला पानी बाहर निकल जाता है, खेत से बाहर हो जाता है, जिससे सोयाबीन को हानि नहीं होती है। और कम पानी की स्थिति में, कम बारिश होती है तो उस स्थिति में ये कूड़ में पानी जमा हो जाता है और सोयाबीन की फसल को बराबर मात्रा में पानी मिलता रहता है। इसलिए सोयाबीन की फसल को दोनों ही स्थितियों में ये पद्धतियां लाभप्रद है।
3: जी बिल्कुल, चाहे ज्यादा बारिश हो या फिर कम बारिश हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया।
4: किसान साथियों, आइए जानते हैं अगर हमारा सोयाबीन क्यों नहीं बढ़ रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इसका क्या कारण हो सकता है।
5: सोयाबीन की फसल को, वैसे सोयाबीन की फसल को पानी कम लगता है, ये फसल 450 से लेकर 750 मिलीमीटर बारिश में अच्छी होती है, परंतु इसको लगातार, मतलब बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं वो अच्छा होना चाहिए। यदि समय समय पर बारिश होती रहती तो सोयाबीन की बढ़वार अधिक होती है, सूखे की स्थिति में इसकी बढ़वार रुक जाती है। इसलिए यदि जिन किसान भाइयों के पास में सिंचाई की व्यवस्था है तो सूखे की स्थिति में सिंचाई कर सकते हैं, जिससे कि सोयाबीन की बढ़वार अधिक से अधिक मिल सके उनको।
3: जी, सिंचाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है अगर हम सोयाबीन की खेती की बात करते हैं तो। जैसे अभी बरसात का मौसम है, ऐसे में तो पानी उचित मात्रा में मौजूद होता है जिसके चलते नमी जो है वो मिट्टी में बरकरार रहती है। लेकिन जैसे अभी हम बात करें कि जहां पर बारिश बहुत ही कम है, तो ऐसे स्थिति में क्या करें किसान?
5: ऐसी स्थिति में किसानों को यदि सिंचाई नहीं कर सकते हैं तो उस स्थिति में उसमें इंटरकल्टर कल्टीवेशन ऑपरेशंस या भूमि की गुड़ाई करना चाहिए, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी तो जो जमीन में नमी है उसकी हानि नहीं होगी और नमी संरक्षित रहेगी, जो नमी पौधे को मिलेगी और सोयाबीन की बढ़वार रुकेगी नहीं। या फिर बहुत लंबा अंतराल हो गया सूखे का, तो ऐसी स्थिति में सोयाबीन में एंटी ट्रांसपेरेंट्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, इसका 1% घोल बना के छिड़काव कर देंगे तो सोयाबीन को कम पानी में सहनशीलता आ जाएगी और पौधे में हानि, मतलब सोयाबीन की फसल में हानि नहीं होगी। तो इस तरह से हम कम पानी वाले क्षेत्रों
3: में भी ये उपाय कर सकते हैं हमारे किसान, जिससे उनकी सोयाबीन की जो फसल है उसकी बढ़वार अच्छी बनी रहे। बिल्कुल
4: किसान साथियों, आइए जानते हैं अगर हमारे सोयाबीन की पत्ती है वो कटी फट्टी से आ रही है या फिर पूरी पत्ती नहीं आ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है, आइए जानते हैं।
5: इस समय सोयाबीन की फसल करीब करीब 15 से लेकर 25 दिन की फसल हो चुकी है खेतों में, तो सर्वप्रथम जो सोयाबीन में कीट लगता है वो ब्लू बीटल नाम का कीट लगता है, जो पहली जब

0: एनिक।
1: ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका। आइए जानते हैं बरसात के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हमारी फसल की हमें देखरेख करनी चाहिए। आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: लगभग सभी फसलों में, अगर हम धान को छोड़ें, तो वर्षा ऋतु में जो बहुत ज़्यादा बारिश या किसी अन्य कारण से जो भी बारिश का पानी खेत में रुकता है, उसकी सही निकासी बहुत ज़रूरी है। अदरक और हल्दी की फसल में तो विशेषकर जो क्यारियां हैं वो जमीन से ऊंची उठी हुई बनाई जाती हैं, तथा क्यारियों के दोनों तरफ नालियों का जो है वो प्रबंध किया जाता है, ताकि अत्यधिक जो पानी है या जल भराव है वो उसकी सही निकासी हो सके। और ये बहुत ही जरूरी है पूरी फसल की, अगर हम प्रबंधन को देखें कि जल की जो निकासी है उसका उचित प्रबंध हो।
3: जी, जल निकासी का प्रबंधन पूर्ण रूप से होना जरूरी है, ताकि हमारी जो फसलें हैं, चाहे हम बात कर लें हल्दी की, अदरक की, या फिर अन्य फसलों की हम बात कर लें, उनकी गुणवत्ता भी काफी अच्छी बनी रहती है और बढ़वार जो है, पैदावार जो है, वो भी काफी अच्छी बनी रहती है, क्योंकि अधिकता पानी की नुकसान भी पहुंचा सकती है हमारी फसलों को,
2: पहुंचाती है।
3: जी बिल्कुल। अब अगर हम उर्वरकों की बात कर लें डॉक्टर शर्मा, तो उर्वरकों को कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए, अगर हम बात करें हल्दी और अदरक दोनों फसलों की?
2: हल्दी और अदरक दोनों ही फसलों के लिए गोबर की गली सड़ी जो देसी खाद है वो लगभग 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से लेकर 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की मात्रा में डालनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मिट्टी की जांच के आधार पर नत्रजन, फास्फोरस और पोटासियम, इन खादों की जो मात्रा है वो भी डालनी चाहिए। और हल्दी के लिए नाइट्रोजन 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस भी 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास जो है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तथा अदरक की फसल के लिए नाइट्रोजन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तथा पोटास जो है वो भी 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सामान्यता इनकी सिफारिश की जाती है।
3: जी, तो ये इन्हें कब कब देना चाहिए, कितने समय के अंतराल में?
2: ये सारी जो खादे हैं इनको खेत तैयार करते समय ही डाला जाता है। सिर्फ नाइट्रोजन एक ऐसी खाद है जिसको 3 बराबर भागों में बांटकर पहली खेत की तैयारी के समय में, और बाकी के 2 भाग जो हैं वो बराबर भाग एक एक माह के अंतराल पर

0: निराई गुड़ाई के समय पर दिए जाते हैं।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम। आज हमने सोयाबीन को लेकर बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, इसकी उन्नत बीजों के बारे में, उन्नत किस्मों के बारे में, साथ ही समय समय पर हमें इसकी कैसे देखरेख करनी चाहिए, हमें कौन से उर्वरक डालने चाहिए, कौन सी दवाई इसमें डालनी चाहिए आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की। किसान साथियों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांट्याबिल 90.8 FM छाबवा की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન। આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં। એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
2: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। तो चाय की चुस्कियों के साथ, दिल से निकली हुई बातों के साथ शुरू करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड और दिल से स्वागत करते हैं आचार्य राजकुमार बिरला जी का। तो आचार्य राजकुमार बिरला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग्ड प्रोग्राम में। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप?
1: थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ज्योतिष के ऊपर में कुछ ऑथेंटिक डिस्कशन होगा और इससे हमारे श्रोता और हमारी पब्लिक जो भी सुन रहे हैं उनको लाभ होगा।
0: बिल्कुल सर, हम भी इसीलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, जैसे अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आप 20 इयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं और 1,00,000 से ज्यादा कुंडलियां देख चुके हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और मैं आपको जानती हूं तो मैं ये वाउच कर सकती हूं कि जो भी नॉलेज आज हमारे साथ साझा होने वाली है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, 100% है और हम बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए शुरू करते हैं सर आपके सफर से। मैं आपको थोड़ा सा बचपन में ले जाना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी और हमारे श्रोतागण भी जानना चाहेंगे कि आपका ये सफर शुरू कैसे हुआ, किस तरह से आप ज्योतिष में आए, इस प्रैक्टिस में आए, क्या कोई एक मोमेंट था, एक लम्हा था जिसने आपको पुश किया, या ये आपकी चॉइस थी जैसे जैसे आप बढ़ते गए, जैसे जैसे उम्र होती गई, क्या जर्नी रही सर आपकी?
1: वैसे तो मैं कहूंगा कि ज्योतिष हमेशा उस इंसान को ढूंढती रहती है जो इसकी कदर करता है, और अपने आप ज्योतिषी उस इंसान के अंदर में ये नेचर में या उसकी माइंड में ये थॉट लाती है कि इसकी तरफ उसकी जिज्ञासा, उसका इंटरेस्ट ग्रो होता है। पर मेरे साथ ये उल्टा था
0: जी।
1: 90 से लेके 95 तक का जो मेरा एक 5 साल का एक पीरियड था, ये हमारी लाइफ का एक बहुत टफ पीरियड था। और उस पीरियड के अंदर में इंडिया के टॉप मोस्ट उस समय के जो एस्ट्रोलॉजर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, पर आप मान लीजिए कि 95 में एक एक एस्ट्रोलॉजर जिसकी फीस 15,000 से 20,000, 25,000 रुपए थी, उस सबको हमने कांटेक्ट किया था कि ये हमारी सोच थी उस समय कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास में कोई मैजिक स्टिक होती है और वो उसको घुमाते हैं और घुमाने से सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो बता देते हैं।
0: राइट।
1: इस सोच के साथ में 5 साल हम भटके।
0: 95
1: के अंदर में एक परिवर्तन हुआ लाइफ में कि मुझे थोड़ी सी नफरत होने लग गई थी इन लोगों से। और मैं इनको एक्सपोजर करने के लिए कि यार ये लोग करते क्या है, मैं इस थॉट के साथ में मैंने ज्योतिष को सीखना स्टार्ट किया।
0: वाओ।
1: मेरे पापा का एक इसमें बहुत स्ट्रांग कंट्रोल रहा है और वो हमेशा पंचांग देखते रहते थे, तो मुझे लगता था कि बेसिक तो मेरे को यही सिखाएंगे, तो मैंने वहां से शुरुआत करी। और 98 तक मैं बुक वॉर्म था, किताबी कीड़ा की तरीके से आप कह सकते हो कि मैं इस किताब से पढ़ा, उस किताब से पढ़ के मैं सीखता रहा, ये करता रहा। 98-99 में मुझे ऐसा लगा कि यार इस तरीके से तो ज्योतिष हो नहीं सकती है कि अगर मैं कुंडली आएगी और मैं किताब खोलूंगा और उसको पढ़ूंगा फिर मैं प्रिडिक्शन लिखूंगा, तो इससे तो क्लाइंट के ऊपर में या किसी भी तरीके से अगर किसी की मैं कुंडली प्रिडिक्ट कर रहा हूं तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है
0: जी।
1: 2000 के अंदर में एक गुरुजन से मिलना हुआ और उन्होंने जब मेरी कुंडली, मेरा हाथ देखा तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो उन्होंने कहा ये बिजनेस नहीं करेगा, इसको मेरे पास भेज दो, ये ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा नाम करेगा। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। उन्होंने मुझे आईकास्ट में एडमिशन करवाया और वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया। तो आईकास में जब पढ़ने जाते हैं तो पहले 6 महीने जो होते हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं। बोरिंग का मतलब क्या होता है, वहां पे गणित होती है, ज्योग्राफी होती है, साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान होता है, कर्म सिद्धांत होता है। अब एक यंग एज के जिसको हम जेन जी कहते हैं, उनको हम ये सब सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बोलेंगे, यार इस उम्र में आके वापस ये सब्जेक्ट पढ़ो तो उसको बोरिंग लगेगा, बोले यार मैं सीखने तो ज्योतिष आया था और पढ़ ये सब रहा हूं।
0: सही है।
1: तो उस पार्ट को जब मैंने पास आउट किया तब मेरे को लगा कि यार मैं जिस ज्योतिष को मैं सीख रहा था

0: या मैं जो ज्योतिष को समझता था
1: जी,
0: एक्चुअल में वो ज्योतिष है ही नहीं, वो तो एक रोड साइड की जो ज्योतिषी होती है वो है, एक्चुअल ज्योतिष कुछ और है। एक्चुअल ज्योतिष का मकसद है कि आप मानव के शरीर पे पड़ने वाले पंचभूता जो अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश तत्व है उसको उसके कर्म सिद्धांत से कनेक्ट करते हुए उसका पास प्रेजेंट और फ्यूचर को आप रीड कर सकते हो और उसके आने वाले फ्यूचर के बारे में उसको गाइड कर सकते हो कि भैया तेरी बॉडी में तेरे नेचर में पर्टिकुलर एलिमेंट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इसको तेरे को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है।
1: तो बहुत ही खूबसूरत
0: जी, आयुर्वेद भी यही बोलता है, आयुर्वेद भी ये बोलता है कि इंसान पंचभूता से कनेक्टेड है और एस्ट्रोलॉजी भी एक ही बात कहती है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर फाइव एलिमेंट्स।
1: बिल्कुल सर, इसको अगर आपने जब शुरुआत की अपने शुरुआती दौर में, तो जब आपने आईकास में पढ़ाई की तो किस तरह से कर्म सिद्धांत को समझाया गया, क्या हमारी भगवद गीता से उसे जोड़ के समझ सकते हैं आप किस तरह से, बिकॉज आप कर्मा यू नो प्योरिफिकेशन पे भी काम करते हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस बिजनेस लव रिलेशनशिप्स एंड कर्मा पे बहुत फोकस है आपके काम में, तो ये जो आपकी जो फील्ड्स हैं जो आपकी स्पेशलाइजेशन फील्ड्स हैं वो आपने कैसे चूज की और कर्म सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे, क्योंकि आई थिंक वो रूट कॉज है, उसी से सब कुछ शुरू होता है और उसी तक जाके सब कुछ खत्म होता है। तो कैसे जो हमारे श्रोता हैं जो अभी हमें सुन रहे हैं वो अगर कुछ भी नहीं करें तो ये अगर कर लें तो शायद जीवन थोड़ा सा और सुधर सकता है, तो अगर कर्म सिद्धांत को थोड़ा इलैबोरेट करें सर और आपकी स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें।
0: देखिये भगवत गीता ही एक बेस है जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए अगर उसको अपने कर्मों को एलोबरेट करना है, उसको अपने कर्मों को समझते हुए इस जीवन का मोटिव पाना है तो। भगवत गीता जिसने नहीं पढ़ी मैं कहूंगा कि उस इंसान ने सिर्फ जो एक थोपी हुई जिंदगी है, मतलब जैसे जन्म मिला माँ बाप ने बड़ा किया पढ़ाई करवा दी शादी करवा दी बच्चे हुए वापस उनके बच्चे हुए, बस ये एक जो साइकिल है ये एक थोपा हुआ साइकिल है, उसको बस एक मनुष्य की योनि के निर्णय जी करके वो चलता बनेगा। और जिसने भी भगवत गीता को पढ़ करके उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, उसने कर्म समझा कि हर कर्म का एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ऐसी हर कर्म का एक एक्शन होता है उसका एक रिएक्शन भी होता है, और हम कहते भी हैं कि कर्मा रिटर्न्स बैक, जिसने जो बोया है वो उसी का पेड़ काटेगा। ठीक है, तो लोग बाग आज छल कपट करके अपने आप को कुछ समय अवधि के लिए अपने आप को खुश कर लेते हैं कि बहुत मैंने पैसा कमा लिया, उसका पैसा मेरे पास आ गया, या मैंने किसी को ऊपर चढ़ते हुए को नीचे गिरा दिया और मैं ऊपर चढ़ गया, तो ये एक समबिंग पीरियड तक होता है। जैसे ही आपके संचित कर्म, संचित कर्म मतलब क्या, जो कर्म आपने पास्ट लाइफ में किए थे, जो कर्म आप इस लाइफ में कर रहे हो, वह सब आपके संचित कर्मों के अंदर में एड ऑन होते जाते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की जो किताब है उसके अंदर में सारे कर्म लिखे जाते हैं और उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारी ज्योतिषी भाषा के अंदर में जो जज का ओहदा मिला है शनि को
1: जी,
0: वो उसके रिजल्ट्स देते हैं कि तुमने अच्छा किया है तो तुम अच्छा भुगतोगे और तुमने बुरा किया है तो तुम जन्म में बुरा भी भुगतोगे। तो हम हर इंसान को, मैं एक बात बोलता हूँ, तुम दुनिया के हर कैमरे से बच सकते हो, एक कैमरा ऐसा है जो शनि भगवान का है, वो हमेशा तुम्हें देख रहे हैं और वही कर्मों के राजा हैं, वही कर्मों को कंट्रोल करते हैं, वही आपके कर्मों को हमेशा देखते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि इसने इच्छित रूप से या अनिच्छित रूप से जो कर्म किया है उसमें इसको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए।
1: राइट,
0: अब बात करिए अपने कर्मों की, तो मैं इस कर्म की डेफिनेशन को एक शॉर्ट में, क्योंकि कर्म तो बहुत लंबे जाएंगे क्योंकि ये बहुत डीपली बैठ रहे हैं
1: जी,
0: मतलब आप अगर कुछ चीज सोच भी रहे हैं तो ये भी आपका एक कर्म है, पर ये डीप मैटर हो जाता है। अभी सिर्फ बात करते हैं, तीन
1: थॉट भी कर्म है। ओ वाओ,
0: करेक्ट करेक्ट
1: जी जी।
0: अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी को उस इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं उसका बुरा करने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर आप किसी का पॉजिटिव सोचते हैं, भला सोचते हैं, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को किसी का भला करने के लिए सोच रहे हैं तो उसका भला भी होगा, आपका भी भला होगा। तो मेनली जो तीन तरह के जो कर्मों के सिद्धांत बताए हैं, जो वो है संचित कर्म जो हमने पास्ट लाइफ में किए, जिसका घड़ा जिसका एक मटका लेकर के हम इस जीवन में आए हैं, वो हमको भुगतने ही भुगतने, उसको दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर कोई भी उपाय नहीं ठीक कर सकते, वो आपको भुगतनी भुगतते। इसके बाद में सेकंड स्टेप में आते हैं क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म क्या? वह कर्म जो आप इस जीवन में करोगे
1: जी,
0: और यही वो कर्म होते हैं जिससे आप जो आपको संचित कर्म मिले हैं उसके रिजल्ट्स को बैलेंस कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को कम ज्यादा कर सकते हैं, पर हटा नहीं सकते। अच्छा। अगर आपका एक्सीडेंट लिखा है, एक टाइम पीरियड आ रहा है कि आपको मार्केश की महादशा है, बादकेश की महादशा है और मार्केश का प्रत्यंतर है, तो यह सब चीजें इंडिकेट करती है कि कोई ना कोई घात होने वाली है।
1: अच्छा।
0: अब अगर आप क्रियामान कर्म अच्छे कर रहे हैं, आप जैसे सपोज करें महामृत्युंजय के जाप कर रहे हैं, हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि एक्सीडेंट तो होगा पर छोटी मोटी खरोच, छोटी मोटी चोट लग करके आप बच जाओगे पर जीवित रहोगे। पर अगर आपको सब चीजें नेगेटिव चल रही है और आप तो कहते हो कुछ नहीं होता ये चीज, और जैसे सामने आपको बोल दिया रोड पे गड्ढा है, आप कहते हो मेरी तो मेरे पास तो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, गड्ढा वड्ढा क्या होगा? अरे भाई जैसे ही तुम फुल स्पीड में होंगे उस गड्ढे से तुम्हारी स्टेयरिंग बिगड़ेगी और तुम ऑफ द ट्रैक चले जाओगे।
1: एब्सोल्युटली।
0: तो यहाँ पे जो सेकंड जो मेन क्रियामान कर्म है, यही आपके वो कर्म है जो हम आपको गाइड करते हैं, जो एक एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करता है कि आप ऐसे अपनी दिनचर्या को परिवर्तन करो। आपके जीवन में अगर अग्नि तत्व बहुत ज्यादा है तो इस अग्नि तत्व को कम करने के लिए जल तत्व को कैसे आप बढ़ाओगे, इस तरीके से ही हम एनर्जी को बैलेंस करने की बात करते हैं। और इसी के आगे जब हम जाते हैं वो है हमारा प्रारब्ध। वो प्रारब्ध ये है कि हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं। अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं और अगर मैं अच्छी सोच लेकर चलता हूं, मैं दीन दुखियों का भला कर रहा हूं, उनका आशीर्वाद ले रहा हूं, तो नेचुरल वो सब दुआएं मेरे जो आगामी कर्म, जो मेरे संचित कर्म जो बनने वाले हैं पास्ट एक फ्यूचर में आने वाले हैं, वो मेरे को एक अच्छी गोल्डन लाइफ को इंडिकेट करते हैं।
1: राइट।
0: तो हम बहुत बार आपको सुनने में मिलता होगा कि देखो मैं तो इतना भगवान को मानता हूँ, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, पर मैं इतना दुखी हूँ, और वो सामने वाला इंसान कुछ भी नहीं करता है, वो तो भगवान को अगरबत्ती भी नहीं लगाता है और वो ऐश कर रहा है।
1: बिल्कुल, बहुत बार हम ये महसूस करते हैं जी,
0: है ना। तो इसको आप समझें, ये आपके कर्मों का या किसी ग्रह का आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई आपसी पर्सनल ग्लिच नहीं है जो आपको वो नुकसान दे रहा है। यहाँ आपके सब कर्मों का ही एक लेखा जोखा है कि पास जिंदगी में आपने बुरे कर्म किए थे तो भी आप बुरे कर्म भुगत रहे हो। अगर आप अपने कर्मों को चेंज करते हो क्रियामान कर्मों से, तो उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, उनको बैलेंस कर सकते हो और अपना फ्यूचर, अपना प्रारब्ध बढ़िया बना सकते हो, जो आपको लेटर ऑन मिलता है।
1: जी जी बिल्कुल। इन्हीं बातों से हम आगे और आपसे जानेंगे कि एनर्जीज किस तरह से काम करती हैं। जैसे आपने फाइव एलिमेंट्स की बात करी, तो इस गीत के बाद हम उस पे आएंगे और जानेंगे राजकुमार बिरला जी से। चलिए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, जो तुम तोड़ो पिया, फिल्म मीरा।

0: आप बहुत आई थिंक एलिमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे आपने शुरुआती हमारे इंटरव्यू से हमें बताया है, तो मैं एग्जाम्पल से जानना चाहूंगी, जैसे किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कोई एलिमेंट कम है या ज्यादा है तो आप उसे किस तरह की कुछ रेमेडीज देते हैं, और जो बाय एंड लार्ज लोग हैं जैसे जो हमें सुन रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं डेली लाइफ में जो लोग कर सकते हैं और अपने एलिमेंट्स को बैलेंस में रख सकते हैं, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहें।
1: जी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी का है तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके समझाता हूँ कि कैसे, पहले तो हम वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल कॉज क्या है।
0: जी
1: तो जब हमारे पास में किसी पर्सन की कुंडली आती है तो हम उसके पास्ट और प्रेजेंट को उससे मैच करने की कोशिश करते हैं कि हम समझने की कोशिश करते हैं वाकई में जो इसकी कुंडली दिखा रही है वही सच है, या इस इंसान ने अपने आप को बदल लिया, या ये इंसान किसी इन्फ्लुएंस के अंदर में आकर के, जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर आपकी जो मित्रता है वो सात्विक लोगों से है तो आप सात्विक नेचर की तरफ बढ़ोगे, अगर आपकी मित्रता तामसिक लोगों से है तो वो आपको तामसिकता की तरफ बढ़ा देगी। तो हम उसको रूट कॉज निकालने की कोशिश करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स वो बता रहा है बाकी में ये उसका चार्ट पे इंडिकेट करता है, या जस्ट ये एक टाइम समिंग पीरियड के लिए है, या इसको कोई पास्ट लाइफ के कोई ऐसे श्राप या ऐसे कोई पाप मिले हैं जो इसको भुगतने हैं। क्योंकि मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर उसके कर्मों से अपने आप को कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसको समझ रहा हूँ और मैं ही उसको समाधान बता रहा हूँ, तो मैं भी वहां पे कहीं ना कहीं एक कर्ता के रूप में उसकी लाइफ में आ रहा हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो यहाँ मुझे अपनी, जहाँ मुझे अपनी टेंशन होती है उतनी मुझे क्लाइंट की भी होती है कि अगर इसकी लाइफ सुधर गई तो इसका पुण्य मुझे मिलेगा, और अगर इसकी लाइफ में और प्रॉब्लम बढ़ी और इसने ही मुझे दुखी होकर के कुछ गलत बात बोली या कोई, जैसे अपन कहते हैं ना, बद्दुआएं
0: देना निकली। जी जी,
1: है ना। जैसे आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजर आपसे इतना चार्ज कर रहे हैं, कोई जना 5 लाख कर रहा है, कोई 10 लाख कर रहा है, मेरे पास में मैजिक स्टिक है, मैं आपकी मैजिक स्टिक से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, और जब वो चीज नहीं होती है तो आपकी निश्चित बात है आपकी बद्दुआ मिलेगी, क्योंकि उस इंसान ने वो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कैसे कमाए हैं या कैसे इंतजाम किया ये उसको पता है।
0: ये उसको पता है, बिल्कुल,
1: है ना। तो जब हम एक्चुअली में जब हम होरोस्कोप में चेक करते हैं कि यार वाकई में ही इसके खुद के कर्म खराब थे और ये सजा भुगत रहा है, तो सबसे पहले तो हम जो कर्म खराब थे उन फिल्टर्स को लगा करके उस एरिया को उस इंसान के कर्मों से पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं कि तू जो अपने आप क्रियामान कर्म करेगा इस पर्टिकुलर प्लेनेटरी एलिमेंट्स के साथ में करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी के कुंडली के अंदर में सूर्य बहुत ज्यादा खराब है, खराब बोले तो इन द सेंस वो पीड़ित है, वो राहु के साथ में है, वो शनि केतु के साथ में है, है ना, या बहुत ज्यादा उसका जो षटबल है वो वीक हो रहा है, उसकी एनर्जी बहुत डाउन हो रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर में साफ पता चलता है कि इसको कहीं ना कहीं पिता से सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर इसके पिता इसके लिए सपोर्टिव हो जाएं, या ये अपने पिता को डेली ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दे, ये अपने पिता को डेली रेस्पेक्ट देना शुरू कर दे और उनके हाथ इसके सर पे आ जाएगा, तो ये इंसान अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट कर ले, ये अपनी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करना शुरू कर देगा, इसका जो स्वाभिमान है वो स्वाभिमान ही रहेगा, वो ईगो में कन्वर्ट नहीं होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खराब सूर्य का मतलब है ईगो होना। जी,
1: ईगो होना, और ईगो होना मतलब वो इंसान सिर्फ अपनी ईगो मैं शब्द के आगे आके मर जाता है कि मैं ही क्यों करूं, यही मैं हर रिलेशनशिप में, चाहे वो मैरिटल लाइफ हो, चाहे वो बच्चों के साथ में हो, चाहे वो फ्रेंड सर्किल का हो, चाहे ऑफिसर्स के साथ में हो, वहां पे वो मैं की वजह से हर रिलेशनशिप खराब हो रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो हम ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं कि भैया अपनी जो सूर्य की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी क्या होगी, अग्नि तत्व है।
0: जी,
1: इस अग्नि तत्व को न्यूट्रलाइज करो, सूर्य को डेली ऑथेंटिक वे में जो एनर्जी से अपनी एनर्जी को उस पानी में डाल करके आप सूर्य को चढ़ाएं और उसको नमन करें, उनको ग्रेटिट्यूड करें, उसके साथ में आप आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य कवच का पाठ करें, जिससे आप सूर्य भगवान को सिर्फ न सिर्फ जल चढ़ा के ठंडा कर रहे हैं, उनको एपीस भी कर रहे हैं, उनको खुश भी कर रहे हैं कि भाई मैं आपको नमन करता हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, आप मेरे जीवन में शीतलता लाना, आप मुझे समझ और सद्बुद्धि देना।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे एलिमेंट्री को पकड़ते हुए हम करते हैं। कोई जना कहता है कि भाई मेरे लाइफ के अंदर में कोई भी चीज स्मूथ नहीं होती है, तो जब जैसे ही ये वर्ड आता है स्मूथ नहीं होती है, इट मींस कहीं ना कहीं उसके एक लॉन्ग टर्म कार्मिक पैटर्न बिगड़ा हुआ है, उसको जिंदगी में परिश्रम के अलावा उसको सफलता नहीं मिलेगी।
0: जी,
1: और मोस्टली अगर आप देखेंगे तो जैसे भी जितने भी ये लोग हैं जो ये कहते हैं मुझे जिंदगी में स्टेबल सफलता नहीं मिलती है, तो आप देखेंगे इनकी कुंडली के अंदर में सबसे ज्यादा शनि प्लेनेट का एक इन्फ्लुएंस होता है जो उनको बोलता है कि शैने शैने चलो मैं सफलता दूंगा, पर वो उतावलेपन के अंदर में कभी भी शैने शैने नहीं चलते हैं, धीरे धीरे नहीं चलते हैं, वो रातों रात अमीर बनने के लिए चाहते हैं। और जहां पे भी पेशेंस वर्ड का नाम आता है, जहां पे भी पेशेंस की बात होती है कि आप में कितना धैर्य है, वहां पे कनेक्शन हो जाता है शनि से।
0: बिल्कुल।
1: तो हम एक ही बात चेक करते हैं कि भैया तेरे अंदर में पेशेंस कितना है, क्या तू टिक करके बैठने वाला इंसान है या तू चलता फिरता इंसान।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यही एक सब तरीके हैं जिसमें हर प्लेनेट की एक एनर्जी है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं कि इसकी लाइफ के अंदर में अर्थ एलिमेंट ग्रो करना है कि वाटर एलिमेंट ग्रो करना है कि फायर एलिमेंट ग्रो करना है, एयर एलिमेंट ग्रो करना है कि इसको वाटरी एलिमेंट से कनेक्ट करना है।
0: बिल्कुल,
1: तो पंचभूता को बैलेंस करने की बात।
0: बिल्कुल सर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। सर आगे चलते हैं, क्योंकि हम कुंडली की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आप जो 12 हाउसेज हैं उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मतलब एक बहुत ब्रीफली हमें बता सकें कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं उन्हें कुछ बेसिक एक नॉलेज पहुंचे कि हाँ कुंडली ये होती है। इलैबोरेटली ऑफकोर्स हम नहीं डिस्कस कर सकते बिकॉज वो बहुत बड़ा एक सागर है जिसमें घुसना बहुत मुश्किल है, बट जस्ट एक बेसिक जो हमें, जो बिल्कुल आज पहली बार ज्योतिष के बारे में सुन रहे हैं उनके लिए अगर हम बताना चाहें कि कुंडली होती क्या है और वो क्या क्या कैरी करती है, तो अगर वो साझा कर सकें। और इसी से मेरा अगला सवाल है कि अगर कुंडली ही सब कुछ है तो फिर हम क्यों बोलते हैं कि आप कर्म करो, कर्म सिद्धांत कहाँ पे बैठता है, इन दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट आया है और जन जन्मांतर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्री विल बड़ी है या डेस्टिनी बड़ी है, तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है, वो अगर हमारे साथ साझा करें।
1: जी आपने जो 12 हाउसेस की बात करी है, अगर मैं ये 12 हाउसेस पे आप और मैं अगर एक महीने तक भी अगर डिस्कशन करेंगे तो यह खत्म नहीं होता, क्योंकि ये इतना डीप सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर मैं कहूंगा कि इन 12 हाउसेस को अगर आपको समझना है तो आपको सबसे पहले चार त्रिकोण को समझना होगा। चार त्रिकोण क्या, जैसे भाव नंबर 1, भाव नंबर 5 और भाव नंबर 9, ये हो गया आपका धर्म त्रिकोण। ठीक है, जब किसी इंसान की कुंडली में धर्म त्रिकोण के जो ये 3 हाउसेस बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो ऐसे इंसान अगर अपनी लाइफ को धर्म से संबंधित कामों में, अब धर्म क्या, मैं धर्म ये नहीं है सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, अगर आप एक बिजनेसमैन फैमिली में पैदा हुए हो तो आपका धर्म क्या हुआ, बिजनेस करना, धंधा करना। ठीक है, तो यहाँ पे उस धर्म की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ एक स्पिरिचुअलिज्म, सिर्फ एक भगवान, ये नहीं है मैं कह रहा हूँ कि आपका धर्म हाउस एक्टिव है तो आप सुबह से शाम तक सिर्फ अगरबत्ती लेके भगवान के सामने बैठे रहोगे, आपका काम हो जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ कर्म की बात हो रही है, आपका जो धर्म है वो क्या है, बिजनेस करना। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूँ सेकंड त्रिकोण की, उसको कहते हैं हम अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण मतलब हर चीज का अर्थ, सिर्फ पैसा नहीं, कि मुझे अगर कोई भी मेरे को बात कही गई है मुझे उसका अर्थ निकालना है, मुझे उसका मतलब निकालना है, मुझे उस अर्थ को अपनी लाइफ में यूटिलाइज करना है। तो ये जो अर्थ त्रिकोण वाला जो होता है, जिसको हम लोग फाइनेंस से कनेक्ट करके, आजकल जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर में इसको फाइनेंस से कनेक्ट कर दिया गया है, वो होता है हमारा 2, 6 और 10 का त्रिकोण।
0: ठीक है,
1: सेकंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इंसान पैसे के पीछे भागेगा, काम के पीछे भागेगा, धन कमाएगा। पर यहाँ ये सिर्फ ये नहीं है, अर्थ का मतलब है हर जिंदगी के उसका एक मूल तत्व, उसका एक अर्थ समझना जो आपको एज जिम्मेदारी, एक जवाबदारी के रूप में मिला है, उसको आपको एक्टिव करके अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लानी।
0: राइट,
1: इसके बाद में थर्ड जो त्रिकोण आता है वो है 3, 7 और 11, थर्ड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस। तो ये जो त्रिकोण है इसको कहते हैं काम त्रिकोण।
0: जी,
1: अब जब नाम आता है काम का तो लोगों के दिमाग में एक ही तरफ जाता है काम, काम वासना वाला।
0: जी,
1: ये काम वासना वाला काम नहीं है, ये काम है क्रिया का।
0: जी,
1: आपकी स्किल्स का, आपकी डेडिकेशन का, कि कैसे आप अपनी स्किल्स, अपनी इच्छा पूर्ति मैं कन्वर्ट करती हूँ, कैसे आप साझेदारी या जीवन साथी के साथ काम करते हुए अपनी लाइफ के मोटिव, अपनी इच्छा पूर्ति, अपनी जो आप फुलफिलनेस की बात कर रहे हो उसको, डिजायर को पूरा करते हैं। इसके बाद में हम आते हैं लास्ट फोर्थ जो हमारा त्रिकोण था वो है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण है 4, 8 और 12 का। अब मोक्ष का मतलब क्या, एक तरीके से आप ये समझते हो कि जिंदगी का त्याग, जिंदगी से मोक्ष मिल जाना या मेरी, पर मोक्ष कब मिलता है जब आपकी इच्छाएं फुलफिल हो जाती है और आपका जीवन से

0: में आए हो, इस जीवन के अंदर में जो आपकी रिसर्च है और इस जीवन का जो एक आपका एक हिडन मकसद था वो है आपका 8th हाउस।
1: बिल्कुल।
0: और सबसे लास्ट का जो है 12th हाउस, वो है 12th हाउस मीन्स स्काई, द अनसीन पावर, अनसीन पावर विच यू आर गेटिंग फ्रॉम गॉड और यूनिवर्स। तो जब आप इस 4th हाउस में सबसे ज्यादा एक्टिव हो, 4, 8 और 12 जब आपका सबसे ज्यादा एक्टिव हाउस है इस कुंडली का, तो जिंदगी का मोटिव है कुछ ऐसी रिसर्च, कुछ ऐसा आध्यात्मिक खोज, कुछ ऐसी चीज की खोज करना जो आज से पहले किसी ने नहीं करी है, आपको करके इस जीवन का मोटिव पूरा करना है। तो पब्लिक क्या है, पब्लिक भटक रही है उस भेड़ चाल में। जैसे मैं कहूं कि एक डॉक्टर का बेटा है, डॉक्टर है, तो वो कहेगा मेरा बेटा भी डॉक्टर बने ताकि वो मेरे हॉस्पिटल को संभाले।
1: बिल्कुल।
0: तो यहाँ वो अपने बेटे को उसके कर्मों से नहीं पकड़ रहा है, वो अपनी एक जिद को थोप रहा है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसी स्थिति में वो बच्चा डॉक्टर तो बन जाएगा पर वो अपने आप को अनसेटिस्फाइड फील करेगा। एक समय आने के बाद में उसको वो पाथ बोरिंग लगेगा कि यार मेरी जिंदगी का तो मोटिव ही नहीं है। फिर क्या होता है, जब सब कुछ काम हो जाता है तब जाके वो बोलता है यार अब मेरे को धर्म में जाना है, मुझे अपने आप को स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट करना है। फिर वो आध्यात्मिक योगा मेडिटेशन की तरफ भटकता है, अपनी मस्तिष्क की शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए, तो वहां जाकर के उसको फिर अपना मोटिव मिलता है। तो हम बाय बर्थ से अगर सपोज करो कि मैं अगर बच्चे को सीधा ये ना कहूं कि तुम्हें हमेशा 4th क्लास का ही लेसन देना है, तुम्हें हमेशा 4th क्लास का ही चैप्टर देना है, मैं इसको ये कहूं कि हर साल तुम्हें एक नया नया क्लास ज्वाइन करना है और नए नए चैप्टर को सीखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है, और जब तुम ग्रेजुएशन में आ जाओगे तब तुम्हें किस फील्ड में जाना है तुम डिसाइड करो।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ हम बाय बर्थ से ही बच्चों को एक ही बात कहते हैं, मैं डॉक्टर तुम भी डॉक्टर बनोगे, मैं इंजीनियर तुम भी इंजीनियर बनोगे, मैं लॉयर तुम भी लॉयर बनोगे।
1: बिल्कुल।
0: वापस ये पॉइंट आकर के कर्मों पर आके बैठ जाता है
1: जी,
0: कि आपकी डेस्टिनी ने, मतलब डेस्टिनी एज ए मदर आपको मिली और मदर डेली आपके सामने थाली लाके रख देती है खाने की कि बेटा खा ले। एक बार मदर हाथ से खिला देगी, दो बार खिला देगी, एक एज तक खिला देगी, पर एक एज के बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको खुद खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मदर ने तो डेस्टिनी परोस के दे दी कि भैया खाने की थाली बना दी है खा ले, पर उसके बाद तो आपको खानी है ना। तो वो हाथ जब तक उस खाने को लेकर आपके मुंह तक नहीं जाएगा, जब तक आप ये कर्म नहीं करोगे तब तक वो खाना आपके स्टमक में नहीं जाएगा और उसके न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगी।
1: बिल्कुल।
0: सेम बात हॉरोस्कोप कहती है कि अगर एक समय विशेष आपकी लाइफ में हम इंडिकेट कर रहे हैं, एक समय विशेष हम आपकी कुंडली में दिखा रहे हैं कि इस समय विशेष को आप अपनी लाइफ में प्रॉपर चैनल करते हुए, प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए अगर यूज करते हैं तो आप उस लाइफ को बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट सक्सेस दिला सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे को एक शनि की महादशा है
1: जी। ठीक है,
0: आज स्थिति क्या हो रखी है मार्केट के अंदर में कि शनि, राहु, केतु, मंगल के नाम से लोगों को हवा बना के डराया जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत डराया जाता है जी,
0: जी। और जितना डराया जाता है उतना ज्यादा क्लाइंट पैसा निकालता है।
1: करेक्ट।
0: तो एक नॉर्मल सिनेरियो हो गया कि डराओ और पैसा निकलो। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपका किसी पर्टिकुलर ग्रह से कोई पर्सनल ग्लिच या दुश्मनी है जो वो आपको ही परेशान करेगा? ऐसा नहीं होता है।
1: बिल्कुल।
0: ग्रह का आपसे कोई पर्टिकुलर ग्लिच या दुश्मनी नहीं है, वो तो आपके कर्मों के अनुसार आपको किस हाउस में, किस राशि में, किस डिग्री में, किस नक्षत्र में मिला है, ये आपके जो पास्ट लाइफ के जो कर्मास थे उन्होंने डिसाइड किया। आपका जब बर्थ हुआ था उस समय जो स्काई का मैप था, जो आकाशीय मानचित्र था, वही तो आपकी कुंडली है
1: जी।
0: और वही कुंडली आपको मिली है कि आपको भुगतना है। अब आपको ये पता है कि यार शनि मेरे को नीच का मिला है, तो नीच का शनि है, तो क्या आप अपनी कुंडली से किसी ज्योतिषी, तांत्रिक कोई उपाय किसे, क्या उस शनि को निकाल के बाहर फेंक सकते हो? नहीं फेंक सकते, वो वहीं रहेगा जब तक आप जिंदा हो।
1: करेक्ट।
0: आपको आपको उसके साथ में जीना आना चाहिए।

0: आपको उसके साथ में जीना सीखना पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: कि मुझे अगर शनि नीच का मिला है तो अब इस नीच के शनि के रिजल्ट्स मैं पॉजिटिव कैसे लाऊं, तो मुझे क्या करना है, सिंपल सी बात है, मुझे अपने कर्मों को उस ऊंचाइयों तक ले जाना है जहां मेरे पास में अकाउंट में बददुआओं से ज्यादा दुआएं इकट्ठी हो जाए।
1: करेक्ट,
0: जितनी बुजुर्ग लोगों की सेवा करेंगे, जितनी बुजुर्ग लोगों की दुआएं इकट्ठी करेंगे, आपकी जो पास्ट लाइफ की जो एक कनेक्टिविटी थी फ्रॉम सिंस एंड प्रॉब्लम्स, वो कम होते होते अब वो न्यूट्रल होकर के एक टाइम पे वो पॉजिटिव पाथ में चली जाएगी। तो जब हम बात करते हैं डेस्टिनी और फ्री विल की, तो फ्री विल तो को हर इंसान को मिलती है, पर वो फ्री विल को भी एक यूज करने का तरीका होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप इस इंडिया के एक टाइकून, मैं नाम नहीं लूंगा, एक टाइकून बिजनेस फैमिली को देख लीजिए। ठीक है, फादर ने एक बहुत डाउन टू स्टेप एक ग्रोथ करके एक टॉप इंडिया के टॉप मतलब इंडस्ट्री और बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को पहचान बना करके अपना सारा बिजनेस दो बच्चों को दिया।
1: करेक्ट,
0: ठीक है, सेम दिया, सेम चीज थी, सेम ब्रांड दिया, सबको इक्वली दिया।
1: करेक्ट,
0: एक इंसान ने उसको जवाबदारी और जिम्मेदारी से नियम अनुसार धीरे धीरे करके संभाला।
1: बिल्कुल,
0: और एक इंसान रातों रात अमीर होने के लिए अपनी जो अपन कहते हैं ना चद्दर से पांव ज्यादा फैलाने वाली बात, वो फैला करके अपने भाई से ज्यादा जल्दी अमीर बनने के लिए प्रोग्रेस करी।
1: करेक्ट,
0: तो जब हम देखते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर में क्या होता है कि जब आप कोई द्वेष भावना या किसी चीज से लेके चल रहे हो तो आपको रिटर्न बैक मिलता है। और एक ही फैमिली से जब हम कहते हैं कि आपका फ्री विल, तो आपको यही मिला था कि दोनों सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए थे।
1: बिल्कुल,
0: एक ही परिवार में पैदा हुए थे, दोनों सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए थे, पर एक का सिल्वर स्पून तो आज भी कायम है, दूसरे का सिल्वर स्पून जा चुका है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्मों को, अपने लाइफ पाथ को, अपने प्लेनेटरी वॉइस को, लैंग्वेज को नहीं समझा, और वो चाह रहा था कि मैं प्लेनेट को चलाऊंगा, जबकि प्लेनेट कह रहे थे हम तेरे को चलाएंगे।
1: बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने हमें समझाया कि कैसे सच में अगर भगवान सब कुछ आपको दे देगा तो आप ना उनका स्मरण करेंगे और फिर तो जीवन है ही क्या, फिर ये जीवन जीवन रहेगा ही नहीं, और आप क्यों ही कुछ करेंगे जीवन में। तो वो कर्म आपको कर्मठ बनाने के लिए, आपको उस पाथ पर लाने के लिए भगवान ने वो 1% अपने पास रखा है और 99% आपको दिया है, जिसमें आपकी बुद्धि है, आपके कर्म करने की शक्ति है, 1% अपने पास रखा है और 99% आपको दिया है, जिसमें आपकी बुद्धि है, आपके कर्म करने की शक्ति है और आत्मा है, मोटिव्स हैं। तो अगर उन सबको हम सही तरीके से एक साथ इस्तेमाल करें और सही डायरेक्शन में बढ़ें तो वो 1% भी आपका हो सकता है आपके कर्मों से। और बाकी डेस्टिनी तो है ही, वो अपना रोल प्ले करती
0: इसमें
1: है।
0: जी, इसमें आपको एक छोटा सा एक शास्त्रों का एक श्लोक आता है
1: जी,
0: अहम ब्रह्मास्मि।
1: बिल्कुल,
0: ठीक है, अब आप इसको समझ लीजिए कि भगवान ने तो बोला है मैंने हर इंसान को ब्रह्मा बनने की शक्ति प्रदान कर रखी है, उसको अपने सातों चक्रा और अपनी कुंडलिनी पे वर्क करना है। ठीक है, सब कुछ एनर्जी आपको दे रखी है, आपके पास में वो अवचेतना है जिससे आप उसको चेतना बना करके, आपसे एक लाख किलोमीटर दूर भी कोई इंसान बैठा हुआ है, उसको आप अपनी टेलीपैथी से अपनी एनर्जी आप एक्सचेंज करके उसको अपनी याद दिलवा सकते हो। ठीक है, ये सब ऊर्जा भगवान ने आपको भी दी है। पर मैं अगर ये कह दूं कि भगवान ने तो मुझे ब्रह्मा बना रखा है, मैं तो ब्रह्मा हूं और मैं तो इसको फ्री विल लेके चलता हूं, तो ऐसा नहीं होगा। वो ऊर्जा एक दिन खत्म हो जाएगी, अगर दी भी है और अगर मैं उसको कंटिन्यू एक्टिव नहीं रखूंगा, जैसे सेल को मैं अगर चार्ज नहीं करूंगा तो वो सेल भी डिस्चार्ज होकर के खत्म हो जाएगा, ऐसे ही मेरी अगर चेतना को मैं डेली एक्टिव नहीं करता हूं तो ये एनर्जी मेरी एक दिन आके खत्म हो जाएगी। तो भगवान ने आपको ताकत तो दी है, अब जब तक आप कर्म करके उस ताकत को एक्टिव नहीं करोगे, उसको इनलाइटन नहीं करोगे, तब तक ब्रह्मा तो बहुत दूर की बात है, आप इंसान भी नहीं बन पाओगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सटीक जानकारी आपके साथ हमें साझा हो रही है। हमारे श्रोतागण आज बहुत कुछ इस एपिसोड से लेके जाएंगे, मैं ये यकीन रखती हूँ, और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आगे चलने के लिए। पहले हम एक सॉन्ग सुन लेते हैं, गीत सुन लेते हैं खूबसूरत सा, और फिर हमारे आखिरी सेगमेंट पर चलेंगे जहाँ पे मैं आपसे कुछ बेसिक रेमेडीज की बात करना चाहूंगी और एनर्जी एक्सचेंज की बात करना चाहूंगी कि आप कैसे अपने आप को बैलेंस रखते हैं सर सबके बीच। पहले सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत, जिंदगी प्यार का गीत है।

0: उतारा करते हुए किसी के परिवार वाले ने करके दिया और जाके उसने वो तेल उसमें डाल दिया
1: जी।
0: दूसरा इंसान गया कि मैं अपने धर्म अनुसार आज शनिवार है तो मैं अपने घर से तेल लाया हूँ, भगवान आपके चरणों में चढ़ा रहा हूँ। अगला तीनों जनों की निष्ठा अलग अलग थी पर मिक्सअप होके कहाँ गया, उस एक तेल के अंदर में।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: भाई, अगर तुम पर्टिकुलर कोई निष्ठा से कोई अपने कोई इच्छा पूर्ति से या किसी कार्य विशेष के लिए कर रहे हो तो अपना इंडिविजुअल दीपक लगाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मीठे तेल के साथ में सरसों का तेल या कड़वा तेल मिक्स मत करो। एक जना मीठे तेल का एक जना मीठे तेल का दीपक लगा रहा है तुम उसमें सरसों का या कड़वा तेल लाके नीम का तेल मिक्स करके चढ़ा रहे हो शत्रु के नाश हेतु, तो ना उसका भला होगा ना तुम्हारा भला,
1: ना तुम्हारा भला होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो यहाँ पे जो उपाय वाली बात करता हूँ, मैं उपाय के लिए एक ही बात कहता हूँ, यूनिवर्सल थंब रूल कुछ नहीं है, ज्योतिष में थंब रूल नाम की कोई चीज नहीं है
1: जी।
0: एक इंसान के लिए 6, 8, 12 हाउस में बैठे हुए प्लेनेट खराब हो गए, वही दूसरे इंसान के लिए जब ये राशि परिवर्तन हो जाएंगे, मतलब एक राशि में दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, ये जब हो जाएगा तो वहां हो जाता है विपरीत राज्य। तो वह विपरीत राज्य क्या होता है कि फकीर के घर में पैदा हुआ इंसान भी सक्सेस पाएगा। हम मोस्टली हम ये देखते हैं कि जितने भी ये राजनेता लोग हैं या ऐसे लोग जो विदेश में जाकर के अच्छी सक्सेस प्राप्त करें, उनकी कुंडली के अंदर में विपरीत राज्यों अच्छा बना हुआ
1: जी।
0: तो एक को एक के लिए तो खराब हो रहा है, दूसरे के लिए अच्छा हो रहा है। तो यहाँ देयर इज नो थंब रूल, आप मुझे कोई भी एक रूल बता दो ज्योतिष का, मैं आपको उसका अदर साइड बता दूंगा कि मैम ये तो हेड है, ये इसका टेल है। एग्जाम्पल आपने कहा सूर्य, सूर्य उच्च का, सूर्य उच्च का मीन्स ए पर्सन हु हैव ए ह्यूज कॉन्फिडेंस लेवल, ए पर्सन हु हैव ए वेरी सेल्फ रेस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल शिप।
1: करेक्ट।
0: अब इसका बैक साइड क्या हो गया, एक पर्सन जो बहुत इगोइस्ट है, घमंडी है, और वह अपनी ईगो और घमंड के आगे सब कुछ अपना नाश कर देगा अगर उसने अपनी ईगो घमंड को कंट्रोल नहीं किया तो।
1: बिल्कुल।
0: सूर्य वही है, सूर्य उच्च का उसके भी है, सूर्य उच्च का उसके भी है, एक ने उस सूर्य को यूज किया इंटेलेक्चुअल शिप में अपनी चेतना को जगाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, दूसरा आदमी मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं ही क्यों करूं, वहां पे उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो आपको समझना है कि सबसे मेरा जो एक यूनिवर्सल उपाय जो मैं करता हूं या जो मैं अपने आप को करता हूं, मैं 5 मिनट आत्ममंथन करता हूं, अपनी हर उस परमात्मा उस परम ब्रह्म परम शक्ति को मैं धन्यवाद करता हूं, मैं ग्रेटिट्यूड करता हूं, जिन जिन से मैं कनेक्टेड हूं, जिन जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, जिन जिन्होंने मुझे इस राह पे अपने आप को अग्रसर होने के लिए मुझे एनहांसमेंट किया, मुझे बताया कि भाई तू बिजनेसमैन नहीं करेगा, तू इस पाथ पे आ, यहाँ सक्सेस मिलेगी, तो जिसने भी मुझे किया मैं उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने माता पिता का, सबसे बड़ा आपको जो हम जो भटक रहे हैं हमारी आदि प्रॉब्लम्स की वजह है, हम हमारे पितृ पूर्वज कुलदेवी और सती को भूल जाते हैं, उन लोगों को हम कभी भी याद नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और भटकते रहते हैं, हर एक ज्योतिषी बोल रहा है तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे कुल देवता का दोष है, दोष। अरे कोई किसी पितृ देवता किसी कुल देवता की तुमसे कोई पर्सनल ग्लिच नहीं थी, प्रॉब्लम एक ही है, तुमने उनको परेशान किया या तुम उनको भूल चुके हो, तुम उनको याद नहीं करते हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तुम उनको नमन करो, तुम उनके नाम का दीपक लगा दो, उनको सिर्फ ये एहसास कर दिलवा दो कि भाई मैं कल भी आपको याद करता था, आज भी करता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए, आपके 5 पकवान नहीं चाहिए उनको।
1: बिल्कुल।
0: आप भगवान को रोज भोग लगाते हो, आपके भगवान के बुक वो आपके भोग के बुके नहीं है, वो आपके सिर्फ
1: भाव के जो बुके
0: हैं। आप भाव के बुके हैं कि यार ये खाता बाद में, पहले मुझे भोग लगाता है।
1: जी
0: ये निष्ठा चाहिए होती है। तो सिंपल सा है, आत्ममंथन करें। मैं पब्लिक को देखता हूँ, एक ज्योतिषी ने बोला तुम 108 बार हनुमान चालीसा करना, दूसरे ने बोला तुम गीता पढ़ना, तीसरे ने बोला तुम दुर्गा के 108 नाम का जाप करना, चौथे ने बोला शिव जी का जाप करना, वो आदमी बेचारा घंटे दो घंटे तो पूजा पाठ में लगा
1: रहता करता है। जी जी।
0: अब उसमें क्या रहता है, वो कहता है मैं शिव जी को भी मनाऊंगा, मैं दुर्गा माता को भी मनाऊंगा, मैं हनुमान जी को भी मनाऊंगा, मैं सबको मनाऊंगा। तो यहाँ कोई मनता नहीं है, एक मन जाता है दूसरा नाराज होता है।
1: जी।
0: क्योंकि उसका दिमाग क्या आ रहा है, यार शिव जी की तो पूजा हो गई, अब इसके बाद हनुमान जी की करूंगा, हनुमान जी के बाद में दुर्गा की करूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। वो कैलकुलेशन है सारा। जी।
0: वो घड़ी देख करके ये करूंगा
1: भाव।
0: अरे ऐसा नहीं होता है
1: जी।
0: तुम 5 मिनट सिर्फ किसी भी एक भगवान को पकड़ लो, बोल दो कि मैं तो सिर्फ आप ही की शरण में आ गया हूँ, मेरे को और कुछ नहीं पता है, जो कुछ करना है आपको ही करना। एटलीस्ट आपके बॉस को ये तो पता है कि भैया ये मेरे पे डिपेंडेंट है, मुझे ही इसको प्रमोशन दिलाना है।
1: बिल्कुल,
0: मैं एक ऑफिस में हर इंसान को चापलूसी करता हूँ, चपरासी या तू सर को बोलना ना यार मेरा प्रमोशन करा दे, उसके ऑफिस ऊपर वाला या तू सर को बोलना ना मेरा प्रमोशन करा दे, तो सर एक दिन आके बोलेंगे यार ये इतनी चपलूसी की चेक लगवा रहा है, डायरेक्ट मेरे पास तो नहीं आया, क्यों करूं मैं इसका प्रमोशन।
1: बिल्कुल,
0: तो डायरेक्ट आप अपने परमात्मा से अंतर ध्यान करें, उनसे आत्मंथन करें, उनको धन्यवाद दें, उनको ग्रेटिट्यूड करें, ये सबसे बड़ा है। 5 मिनट ही निकालें, पर निकालें उस 5 मिनट में सिर्फ आप हो और आपका भगवान।
1: करेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये एपिसोड सर, और मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज आप अपना इतना समय निकाल के, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके हर मिनट की वैल्यू है, और किस तरह आप दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज आप अपना इतना समय निकाल के, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके हर मिनट की वैल्यू है, और किस तरह आपने 1 घंटा निकाला होगा हमारे लिए, तो मैं आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ इतनी सही सटीक सरल तरीके से सारी बातचीत साझा करी कि हर एक जो श्रोता आज हमें सुन रहा है, जिसको आज से पहले ज्योतिष के बारे में नहीं भी पता हो, वो आज कुछ हमें सुन के कुछ लेके जाएगा और अपने जीवन में कुछ चेंज कर पाएगा। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद राज सर आपका।
0: मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा लास्ट में, आपने इतना कुछ बोल दिया
1: जी।
0: मेरे गुरु ने मुझसे एक बात कही थी कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। मैंने अगर अपना कुछ ज्ञान अगर आपके यहाँ शेयर किया है तो यही ज्ञान मुझे रिटर्न होकर के किसी न किसी रूप में और कुछ सीखने को मेरे को एनहांस करेगा। तो मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा कि अगर मैंने यहाँ कुछ शेयर किया है और इसमें से मेरे से कोई 2-4-5 जने भी रियल एस्ट्रोलॉजी को समझ सकेंगे, जो भटक रहे थे, जिनका विश्वास उठ गया था, वो उनका इसमें भला होगा।
1: बहुत बड़ा,
0: वही मेरा वही मेरा पुरुषार्थ होगा, वही मेरा प्रारब्ध होगा।
1: जी, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है आप, और मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आपको एक्सप्रेस करने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ जिंदगी अनप्लग्ड का आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। आचार्य राजकुमार बिरला जी का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ इतनी इंसाइटफुल, इतनी प्रेरणादायक बातें साझा करी। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और आपसे अब लेती हूं इजाजत। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और जिंदगी को पूरी तरह से जीते रहिए। मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ सिर्फ SN रेडियो पर। नमस्कार।

0: रोशनी।
1: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है, कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो।

और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिबक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन है। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें। बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बालाश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं

अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है, आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है, ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे, हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थीं, अभी नहीं है। ऐसा खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। कंक्यार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं? सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है। क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं? सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: हमारे देश में भयंकर वाली टेक्नोलॉजीज चलती हैं। अमेरिका के दो साइंटिस्ट एक बात सुनकर हमारे देश की बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि घर में अगर चप्पल उल्टी रखती जाए तो लड़ाई हो जाती है।
0: दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

मदर टेरेसा की वो सात बातें जो हर पीआर प्रैक्टिशनर्स के लिए मददगार साबित होती हैं। मदर टेरेसा एक ऐसी महिला हैं जिन्हें दुनिया भर में उनकी करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थता के लिए जाना जाता है। उनके मृत्युपरांत आज भी लोगों और समाज के प्रति समर्पण के लिए उन्हें दिल की गहराइयों से याद किया जाता है। आज के ब्रांड्स ऑडियंस के बीच एक लंबे समय तक चलने वाली छवि बनाने का लक्ष्य रखते हैं। मदर टेरेसा के निम्नलिखित उदाहरणों से पीआर प्रैक्टिशनर्स कई सीख ले सकते हैं जो उन्हें अपने क्लाइंट्स के लिए एक लंबे समय तक चलने वाली छवि बनाने में मदद करेंगे। यहां सात बातें बताई गई हैं जिनका प्रत्येक पीआर प्रैक्टिशनर को पालन करना चाहिए। एक, ऑडियंस को अपनी प्राथमिकता बनाएं। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, आपके पास आने वाला हर व्यक्ति मुस्कुराकर ही वापस जाना चाहिए। ब्रांड्स का वजूद अपने कस्टमर्स की वजह से होता है। आखिरकार पब्लिक ही है जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदती है। अपने संपूर्ण जीवन के दौरान मदर टेरेसा अनेक लोगों की भलाई के लिए काम करती रहीं और खुद को दान, गरीबी और सादगी के साथ जीने के लिए समर्पित कर दिया। इसी तरह ब्रांड्स को भी जनता के प्रति केंद्रित होना चाहिए और उनके हित में मानवता का आदान प्रदान होना चाहिए। मदर टेरेसा की अपने से पहले अन्य लोगों के हित में सोचने की उदारता को हर एक ब्रांड को भी निश्चित तौर पर अपनाना चाहिए। दो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जैसा कहा वैसा करना। ब्रांड्स की अपनी एक पहचान होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति उन पर भरोसा कर सके। उस ब्रांड से बदतर कुछ भी नहीं है जो कहता कुछ है और करता कुछ है। मदर टेरेसा ने अपने पूरे जीवन में एक ही बात सिखाई कि हमें अपना जीवन दूसरों की भलाई करने में ही व्यतीत करना चाहिए। वह स्वयं गरीबी में रहती थीं, लेकिन फिर भी दूसरों की सहायता करने के लिए भोजन और आपूर्ति की व्यवस्था करती ही रहती थीं। पीआर प्रैक्टिशनर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जैसा कहें वैसा करें। तीन, कड़ी मेहनत करें भले ही कोई नहीं देख रहा हो। मदर टेरेसा को गति प्राप्त करने में बहुत समय लगा। डिजिटल युग के विकास के साथ सफलता की धारणा बदल जाती है। आजकल ऐसा माना जाता है कि सफलता रातों रात प्राप्त की जा सकती है, लेकिन यह पूर्णतः गलत धारणा है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। कई बार आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है या आप हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका ध्यान अपने लक्ष्यों से हटना नहीं चाहिए। कई बार हमें कड़ी मेहनत का फल उतना अच्छा नहीं मिलता जितनी हमने मेहनत की थी, लेकिन इसके प्रति अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखें, क्योंकि देर से ही सही फल अवश्य मिलेगा। चार, दूसरों के नक्शे कदम पर चलने के बजाय अपना रुझान बनाएं। दुनिया भर में पहचान हासिल करने के बाद भी मदर टेरेसा ने इसकी चिंता किए बिना कि लोग क्या सोचते हैं, हमेशा ही एक साधारण जीवन जीना जारी रखा। उन्होंने खुली बाहों से लोगों को स्वीकार किया, उन्हें आजीवन प्यार किया और उनकी देखभाल की। प्रति सांस्कृतिक होने की क्षमता रखने वाले ब्रांड्स भी अपनी ऑडियंस

उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। ये एक जोखिम है, लेकिन साथ ही साथ प्रभावी भी है। अपने कस्टमर्स को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न रुझान अपनाएं। ये आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएंगे और आपको भीड़ से बिल्कुल अलग पहचान दिलाएंगे। 5. अपने आप पर विश्वास करें। मदर टेरेसा ने गरीबों की मदद करने और उन्हें ईश्वर के करीब लाने के लिए आजीवन बखूबी कार्य किए। संपूर्ण जीवन काल के दौरान उनका आत्म बलिदान उन्हें अन्य सभी लोगों से अलग स्थान देता है। इसी तरह पीआर प्रैक्टिशनर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जीवंत रखने की आवश्यकता है जो वो समाज को दे रहे हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। ये न केवल उन्हें काम में उद्देश्य स्थापित करने की भावना देगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना वास्तविक है। ब्रांड्स अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं यदि उन्हें अपने लक्ष्यों पर पूरा भरोसा है और वो इन लक्ष्यों के लिए कार्य करने को तैयार हैं। 6. आप जैसे हैं वैसे ही रहें। एक बात जो मदर टेरेसा को उल्लेखनीय व्यक्ति बनाती है वो ये है कि वे कभी भी अपने काम से नहीं भटकी। प्रसिद्ध होने के बाद उन्हें एक आरामदायक जीवन जीने का अवसर मिला, लेकिन वे कभी भी अपनी राह से नहीं भटकी। गरीबों और लाचारों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहीं। ब्रांड्स को भी अपनी डिमांड

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? दोस्तों, हम जिंदगी में चलते चलाते सभी के बारे में राय बनाते रहते हैं। कभी कभी ये राय बड़ी खोखली भी हो सकती है। हम गलत सोच सकते हैं किसी के बारे में। आइए इसी से संबंधित आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, आपके बात समझ में आ जाएगी। चलिए मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे थे, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए बस यूं ही खड़े हो जाते हैं। पसीना पहुंचते हैं, रुमाल निकालते हैं, रुमाल से अपने को हवा करने की कोशिश करते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक आदमी से आंखें मिलती हैं। आपकी ऐसी स्थिति देखकर वो आदमी हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। अब आपने फौरन उस आदमी के लिए एक राय बनाई। बड़ा ही सहृदय व्यक्ति है, न जान न पहचान, फिर भी पानी के लिए पूछ रहा है। अब उस व्यक्ति के लिए आपकी ये पहली राय है। क्यों? अब वो आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर लेता है। आप पानी लेने तेज कदमों से उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस आदमी के बारे में आपकी क्या राय है भाई? आप उसे गालियां देने लग जाते हो। क्यों? बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है, ढीला है, आलसी है, पता नहीं क्या क्या बोल डालते हो उसको आप। अब ये आपकी दूसरी राय है, देखिए। लेकिन थोड़ी सी देर बाद दरवाजा खुलता है और वो आदमी बाहर आता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी, उसे थोड़ी देर हो गई, उसके लिए बहुत बहुत खेद है, लेकिन आपकी हालात देखकर उसने आपको पानी के बजाय नींबू पानी देना जरा ज्यादा अच्छा समझा, इसलिए थोड़ा सा लंबा वक्त लग गया। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब आपकी क्या राय है? कितना अच्छा आदमी है ये, कितना सोचा उसने मेरे बारे में। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि शरबत में चीनी तो है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय बनाना चाहते हैं आप? अरे यार, बड़ा बेवकूफ आदमी है, नालायक है, बेहद कंजूस भी है। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उस समय उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी ले आया, जिससे आप जितनी चाहें उतनी डाल लें। अब उस व्यक्ति के बारे में क्या विचार है आपका? है ना मजेदार? अब आप मनन कीजिए, एक सामान्य स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली हो जाती है और लगातार बदलती जा रही है, तो क्या हम किसी के बारे में भी राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से राय ना बनाएं। पता नहीं कौन किस परिस्थिति या स्थिति में ऐसा काम कर रहा है, अब ये तो वो ही बेहतर जानता होगा ना। हो सकता है अपनी अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और दूसरा भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को बस इतना सा समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। क्यों दोस्तों?

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: पंडित जी ने कुंडली मिलाई, 36 के 36 गुण मिल गए। लड़के वालों ने फिर भी मना कर दिया शादी से। लड़की वालों ने पूछा, भला ये क्या बात हुई, 36 के 36 गुण मिल गए हैं, फिर क्या परेशानी है? लड़के वालों ने कहा, हमारा लड़का बिल्कुल एक नंबर का निकम्मा है। अब आप चाहते हो बहू भी वैसे ही ले आएं?

सीख तो हम कहीं से भी सकते हैं। कहते हैं कि जिंदगी से बड़ी पाठशाला और समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं, लेकिन अगर हम अपनी कल्पनाओं को और विस्तार दें तो पाएंगे कि प्रकृति ने हमारे लिए इतने सारे शिक्षक उपलब्ध कराए हैं कि हम सारी जिंदगी सभी से कुछ ना कुछ सीखते रह सकते हैं, बशर्ते कि हम में ज्ञान की प्यास हो और हमारी चेतनाएं जागरूक हों, जो हमें सुनने, देखने, स्पर्श करने, महसूस करने और सोचने में मदद करती हैं। अगर हम सब चीजों को नए नजरिए से देखना शुरू करें तो पाएंगे कि हर रोज हमारे जीवन में कुछ तो ऐसा नया जरूर आता है जो हमें कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रह्मांड की, नितांत अवर्णनीय, हमारे समस्त ज्ञान और कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा रहस्यमय। लेकिन जब बात कुछ सीखने की आती है तो यह हमें इस बात की समझ देता है कि हम क्या हैं और वास्तव में कहां हैं। यह कोई इकाई नहीं बल्कि अरबों खरबों इकाइयों का विस्तार है। हम इसकी एक इकाई से भी बहुत ज्यादा कम हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मांड के बाद बारी आती है समय की। यह हमारे जीवन में बहुल प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। हर क्षण खास और शिक्षाओं से भरा हुआ होता है। इसका पूर्वानुमान, सही पूर्वानुमान हमेशा असंभव प्रायः ही है। यह हमें अनपेक्षित के प्रति तैयार रहने की शिक्षा देता है। यह हमें जिंदगी के सभी पक्षों में अच्छे और बुरे की समझ विकसित करने में मदद करता है। जीवन हमें मिला हुआ एक और शिक्षक है। यह अनुभवों और आश्चर्यों से भरपूर होता है। हर अनुभव एक नए पाठ के समतुल्य है। हम अपनी गलतियों और सफलताओं से सीखते हैं। जीवन हमें जिंदगी के महत्व, इसकी उपयोगिता, इसे कैसे उपयोग करें, इसे कैसे अमूल्यता दें और कैसे इसे अधिकतम पाएं जैसी बातों के बारे में सिखाता है। नदी प्रवाह का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, पारदर्शिता का प्रतीक है। अपने प्रवाह को शाश्वत बनाए रखने के लिए चिर कटिबद्ध नदी कभी किसी से नहीं पूछती कि कहां जाऊं, कैसे जाऊं। यह हमें आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ बढ़ते जाना सिखाती है। नदी की बात चले और पानी की याद ना आए, ऐसा संभव है क्या? जीवन की एक अनिवार्यता के रूप में पानी हमें सामंजस्य की कला और विज्ञान दोनों सिखलाता है। यह क्षण भर में स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता है, लेकिन कभी भी उन्हें स्वयं पर हावी नहीं होने देता। अब पेड़ों की बारी। कभी सोचा है आपने कि पेड़ हमें हमारे जीवन में कितना कुछ देता है? यह बहुत सारी मूर्त और अमूर्त चीजें हमें देता है, जिनमें लकड़ियां, फलों, फूलों, सौंदर्य, ऑक्सीजन, छांव, सुकून और न जाने कितना कुछ शामिल है। पेड़ हमें किसी से कुछ भी अपेक्षा किए बिना जीने की कला सिखाते हैं। इसी तरह किताबें हैं। किताबें महज समय काटने की चीजें नहीं होती, ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। हम किताबों से अपने अपने जीवन के, हमारे परिवेश के, समाज के, संसार के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। वे हमें सिखाती हैं कि एक अच्छा, अनूठा और सफल व्यक्ति कैसे बने। मां, यदि पेड़ इंसान होते तो यकीनन मां जैसे ही होते। मां हमें स्वरहित प्रेम, दयालुता, कोमलता, ख्याल रखना, संसार को समझाना, समझौता किए बिना सामंजस्य स्थापित करना, वह सब कुछ सिखाती है जो हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों और नियामतों को सही ढंग से स्वीकार करना सिखाती है। लोग, हम एक ऐसे समाज में रहने के लिए बने हैं जो लोगों द्वारा या लोगों से बनता है। हमारे पूरे जीवन में लोग अलग अलग रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। वो हमारे मित्र हैं, संबंधी हैं, सहकर्मी हैं, साथी हैं, पड़ोसी हैं, अजनबी हैं, लेकिन हम उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वे हमें जीवन के विभिन्न स्वरूपों का मतलब और उन्हें समझने की कला सिखाते हैं। इतिहास,
हीगल ने कहीं कहा था कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। कुछ वर्ष पश्चात स्पेनी दार्शनिक जॉर्ज सांतियाना ने इसमें जोड़ा कि जो अतीत को याद नहीं रख सकते वे ही उसे दोहराते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें इससे सीखना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को बचा सकें और एक आकार दे सकें।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये

अचानक वाईफाई बंद हो गया है। चेक किया तो पता चला पड़ोसी ने बिल नहीं भरा था 2 महीने से वाईफाई का, इंटरनेट का। कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है। मतलब उनके बारे में इतने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी तो वो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने अपने लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे, लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मीन्स एवरीथिंग टू मी।
0: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
1: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल दिल भर मेरे कब तक मुझे है।

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ बच्चन जी का, वो श्रोताओं आपके लिए पेश खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: थैंक्स। दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।
2: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

जमाना है पवाना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसमें है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी मेरा चांसेस दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है।
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है?
2: हाँ।
3: ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जितने देर तक तेरे लिए बचता रहेगा। कोई घा रहा होगा। सो जाएगी ना?
2: हाँ।
3: चल सो जा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कितना कहा जा सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे बताने से बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ, मेरी ओर देखो। हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है, हम कहां जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास। What?

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है। सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है जैकी श्रॉफ। जी हां, जैकी श्रॉफ जी का जन्म बॉम्बे में ही, जो कि आज की डेट में मुंबई है, हुआ था। इनका जन्म 1 फरवरी 1957 को हुआ था। लीजिए, पेशा खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। जैकी श्रॉफ जी ने 11वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद बस फिल्मों में आने की कोशिश में लग गए, और उसके बाद इतनी ढेर सारी फिल्में इन्होंने की कि बस मजा आ गया। इनकी शानदार पर्सनालिटी, इनके बोलने का अंदाज हम सभी को हमेशा याद रहता है। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं पर फिल्माया हुआ ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? कैसे हैं दोस्तों? आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

जैकी श्रॉफ जी ने कुछ टेलीविजन शोज भी किए, जैसे लहरें, चित्रहार एंड मिसिंग। वहां भी इन्होंने अपनी कलाकारी की छाप छोड़ी। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। भाई साहब, आपको पता है गूगल का जन्म कैसा हुआ? एक बार रजनीकांत सुबह सुबह उठे, उन्हें ख्याल आया कि अगर उनकी नॉलेज का 1% हिस्सा भी दुनिया को मिल जाए तो उनका भला हो जाएगा। बस गूगल का जन्म हो गया।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना दोस्तों। आज के कलाकार प्रोग्राम के कलाकार जैकी श्रॉफ जी का ये गीत

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। आइए सुनते हैं जैकी श्रॉफ जी के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता, क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता, दर्द मीठा है मगर रहा नहीं जाता। मोहब्बत हो गई है इस कदर आपसे, बिना याद किए रहा ही नहीं जाता। किसी ने पूछा, सफर मायने रखता है या मंजिल? मैंने कहा साथ। नमस्कार, आदाब दोस्तों। 90.8 FM की तरंगों पर SN रेडियोज और रेडियो टांडिया भील पर मैं हूं आपकी अपनी ही दोस्त आरती रॉय और आप सुन रहे हैं हमारा सबका प्यारा सा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। जी हाँ दोस्तों, आपका साथ ही तो है जो मुझे हर वक्त तहरीक देता है, यानी इंस्पायर करता है, हौसला अफजाई करता है। और इसी हौसले के साथ मैं हर बार लेकर आती हूँ आप सभी के लिए जज्बातों का एक अनोखा सफर। दोस्तों, अल्फाज तो एक जरिया हैं, असली मकसद तो उन छुपे हुए एहसासों को आपके दिलों तक पहुँचाना है। कभी थोड़ी सी खुशी, कभी हल्की सी नमी, तो कभी ढेर सारी यादें। आज इस सफर में

रस्सा कारवां सिर्फ और सिर्फ आपकी ही दोस्त आरती के साथ अल्फाज से एहसास तक में। दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज में आज आपके लिए लाई हूँ एक बेहद मशहूर गजल, जो ओरिजिनली तो मेहदी हसन साहब ने गाई है, लेकिन देखते ढूंढते ये वर्जन सामने आ गया, तो जरा देर ठिठक कर रुक कर बजा के देखा तो फिर वहीं रुक गई। एक लाइन, दो लाइन, और फिर वो चलती ही रही। और मैं यही सोच रही थी कि मेरे प्रोग्राम की शुरुआत में अब यही बजेगी। गजल का मिसरा कुछ यूं है, तुम्हारी खामोशी में मेरी सदा है, तुम्हारी खामोशी में मेरी सदा है, हर एक सांस में तेरी आहट छुपी है, तुम्हें जो लगा था कि सब खत्म हो गया, वहीं से कहानी हमारी शुरू है, जो पल तुमने ठुकरा दिए बेरुखी में, वही पल तुम्हें रात भर जाग देंगे। दोस्तों, गौर फरमाइए, कह रहे हैं जो पल तुमने ठुकरा दिए बेरुखी में, वही पल तुम्हें रात भर जाग देंगे, जगा के नहीं रखेंगे, जाग देंगे। तुम्हारी नजरों से चाहे उतर जाऊं, मगर दिल से तुम गिरा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। ये बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है, काइंड ऑफ फ्यूजन म्यूजिक, तो आप भी सुनिए और बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये फ्यूजन वर्जन।

दोस्तों, हमारे प्रोग्राम की दूसरी पायदान पर आगे बढ़ते हुए जिक्र करते हैं हिंदुस्तानी संगीत की एक ऐसी अजीम शख्सियत का जिनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून और पाकीजगी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहतरमा सुमन कल्याणपुर जी की। 1950 से 1960 की दहाई में उनके सुरों के सफर ने हर किसी को दीवाना बनाया। उनकी आवाज की सबसे बड़ी खासियत थी उनका क्लासिकल बेस और बेहद नर्म और सुनहरी गायकी। और जब ऐसी आवाज को पर्दे पर बयां करने के लिए अदाकारा निम्मी जी मिल जाएं, तो जादू तो होना लाजमी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1961 की फिल्म शमा की। इस फिल्म में निम्मी जी ने शमा नाम की एक ऐसी यतीम लड़की का किरदार निभाया था जो दिल ही दिल में अपने कजिन और फिल्म के हीरो परवेज से बेइंतहा प्यार करती है। परवेज एक शायर है, लेकिन कहानी में तब एक मोड़ आता है जब परवेज को एक अमीर घराने की लड़की रोशन आरा यानी सुरैया से मोहब्बत हो जाती है। तब अपनी मोहब्बत पर किसी और का हक देखकर शमा खुद परवेज और रोशन आरा की शादी करवा देती है। अपने अंदर के इस गहरे दर्द और जलन को छुपाते हुए पर्दे पर निम्मी जी ने जो खामोश अदाकारी की है वो दिलों को रुला देती है। खयाम साहब और गुलाम मोहम्मद जी की मौसिकी से सजी और कैफी आजमी साहब के लफ्जों में ढली ये गजल शमा के उसी इसार यानी सेक्रिफाइस को बयां करती है। तो सुनिए सुमन कल्याणपुर जी की रूहानी आवाज में उस शमा का वो सारा दर्द जो ऐसा जला कि पिघल पिघल कर रूह तक पहुंच गया। गजल का मिसरा कुछ ऐसे है। दुनिया तो क्या खुदा से भी घबरा के कह दिया, वो मेहरबान नहीं तो कोई मेहरबान ना हो। फिर कहते हैं, अब तो वही सुकून मिलेगा मुझे जहां में, ये संग दिल जमीन ना हो आसमान ना हो, जमीन आसमान ना हो। दिल गम से जल रहा है, जले पर धुआं ना हो, मुमकिन है इसके बाद कोई इम्तहान ना हो।

दोस्तों, जज्बातों के इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ साल 1953 की एक ऐसी शाहकार फिल्म की तरफ जिसने जबान और अदाकारी के मायने ही बदल दिए। मैं बात कर रही हूँ फिल्म फुटपाथ की। जब फुटपाथ का जिक्र है तो जाहिर है भला दिलीप कुमार साहब की उस खामोश, गहरी और शानदार अदाकारी को कोई भूल सकता है भला। इस फिल्म में उनके साथ मोहतरमा मीना कुमारी जी भी थी, लेकिन इस फिल्म की रूह थी वो नज़्म जो आज भी अकेलेपन में गुनगुनाई जाती है, मजरू सुल्तानपुरी और अली सरदार जाफरी के लिखे उन लफ्जों को जब मौसिकार खयाम साहब ने धुनों में पिरोया तो उन्हें बयां करने के लिए आवाज किसकी चुनी गई? तलत महमूद साहब की। तलत साहब की आवाज का वो रेशम जैसा दर्द और उनका वो खामोश ठहरापन जब पर्दे पर दिलीप साहब के चेहरे के गम से मिलता है तो लगता है वक्त कहीं रुक गया हो, गम जदा हो गया हो। जैसे गजल का मिसरा है, अब तो आ जा के अब रात भी सो गई, अब तो आ जा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई, ढूंढती है नजर तो कहाँ है मगर, देखते देखते आया आंखों में दम। तो आइए दिल को थोड़ा गमगीन होने देते हैं। और इसमें मैं एक बात और शामिल करना चाहती हूँ दोस्तों, मुझे याद आया कि ये गज़ल मेरे दिल के इसलिए भी बहुत करीब है क्योंकि इसको मेरे मरहूम बड़े भाई बहुत सुर और सोज के साथ गाते थे। उनका नाम कुंदन लाल था, सहगल नहीं, और ये उनकी ऑल टाइम फेवरेट हुआ करती थी। ये गजल मैं आज उनकी याद को डेडिकेट कर रही हूँ, मेरे बड़े भाई जिनको मैं प्यार से

दोस्तों, जज्बातों का ये सफर अब एक ऐसे मकाम पर आ गया है जहां सुरों के शहंशाह की रूहानी आवाज हमारा इंतजार कर रही है। जब भी सच्ची मोहब्बत और वफा की बात होती है तो दिल खुद ब खुद इम्तहान देने को तैयार हो जाता है। साल 1960 की शानदार तारीखी फिल्म बाबर का एक ऐसा नगमा जिसे बेमिसाल शायर साहिर लुधियानवी साहब ने अपने खूने दिल से लिखा और मौसिकार रोशन साहब ने एक बहुत संजीदा धुन में पिरोया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संगीत के मसीहा मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सजी इस पुरसोज गज़ल की। पर्दे पर अदाकार थे सोहन कपिला और अदाकारा अजरा के बीच के उस पाक इश्क को रफ़ी साहब की आवाज़ ने तारीखी कर दिया। इस गज़ल की खासियत ही यही है कि जब रफ़ी साहब अपनी मखमली मगर कशिश से भरी अल्फाज में वहशत और खलूस जैसे अल्फाज को पुकारते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए रफ़ी साहब की पाक साफ आवाज़ के साथ मोहब्बत की उस गहराई को नापते हैं। गज़ल का मिसरा कुछ यूँ है। सलाम शौक पे रंजिश भरा

दोस्तों, हमारी अगली पेशकश को मशहूर एल्बम जो कि गुलाम अली साहब और आशा ताई ने बनाई थी, जिसका नाम है मेराज़े गज़ल, उसमें से लिया गया है। जब गुलाम अली साहब इसकी धुन बना रहे थे तो उन्होंने जानबूझकर इसमें पूर्वी और अवधी लोक रंग डाला, जिसमें कागा और पवन यानी हवा जैसे खालिस देसी और मकबूल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। रिकॉर्डिंग के वक्त आशा ताई थोड़ा हिचकिचाई कि एक संजीदा गजल एल्बम में कागा और पवन जैसे अल्फाज कैसे लगेंगे। तब गुलाम अली साहब ने उन्हें समझाया कि नासिर काजमी साहब ने इन अल्फाजों के जरिए जुदाई के दर्द को बहुत सादगी से पेश किया है। जब आशा ताई ने सावन की मल्हार के साथ इस गजल की रिकॉर्डिंग शुरू की तो स्टूडियो का माहौल बहुत भावुक हो गया। गजल के खत्म होने पर सब म्यूजिशियंस की आंखों में आंसू थे। इसे मेराज़े गज़ल एल्बम की सबसे भीगी गज़ल कहा जाता है। जब आशा ताई अपनी मखमली आवाज़ में सावन के इस दर्द को पुकारती हैं तो गुजरा ज़माना आंखों के सामने जिंदा हो उठता है। सुनिए इस खूबसूरत मिसरे को। फिर कागा बोला घर के सूने आंगन में, फिर कागा बोला घर के सूने आंगन में, फिर अमृत रस की बूंद पड़ी तुम याद आए। और फिर मक्ता अर्ज किया है, दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा, दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा, जब दीवारों से धूप ढली तुम याद आए। लीजिए आशा ताई और गुलाम अली साहब की आवाज में, फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की बाजे बजी तुम याद आए। शौक फरमाएं।

दोस्तों, आज के इस बेहद खूबसूरत सफर को मुकम्मल करने के लिए अब मैं आपको मौसीकी की और अदब के उस मकाम पर लेकर आई हूँ जहाँ लफ्ज़ खुद तारीख बन जाते हैं। जब हम सुनते हैं ये मिसरा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो हमारा जहन सीधे कभी कभी फिल्म और अमिताभ बच्चन की तरफ चला जाता है या मुकेश साहब की आवाज़ की तरफ चला जाता है। लेकिन आज अल्फाज से एहसास तक की इस आखिरी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अजीम शायर साहिर लुधियानवी साहब की वो मुकम्मल और असली नज़्म जो उन्होंने अपनी मशहूर किताब तलखियाँ में लिखी थी। इसी नज़्म के को जब आप सुनेंगे तब भी आपको इसमें सुनाई देगा कि साहिर साहब जब वो 18-19 साल के थे तो उन्होंने एक पंजाबी लड़की से उनसियत हो गई थी, यानी लगाव हो गया था, जो कि उस वक्त की लाइलाज बीमारी तपेदिक की शिकार होकर गुजर गई। तो साहिर साहब को उसका आखिरी दीदार भी वो नहीं कर सके, मरघट में अंदर जा नहीं पाए, तो उस तड़प का बयान उन्होंने कुछ यूं किया था। ये एक बेहद लंबी, गहरी और फिलोसफिकल नज़्म है जिसे राजेश सिंह ने अपनी बेहद रूहानी आवाज़ में बिना किसी फिल्मी तामझाम के उसके असल और मुकम्मल रूप में गाया है। साहिर साहब ने जब ये नज़्म लिखी थी तो इसका मिजाज सिर्फ रूमानी नहीं था, बल्कि इसमें जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों और समाज के तल्ख दौर का भी जिक्र था। फिल्म में तो सिर्फ मोहब्बत वाले हिस्से को फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से लिया गया था, लेकिन असली नज़्म में साहिर साहब लिखते हैं कि इस दुनिया में भूख, गरीबी और बेबसी इतनी ज़्यादा है कि इंसान सिर्फ मोहब्बत के सहारे नहीं जी सकता। राजेश सिंह ने इसे खालिस और मुकम्मल अदबी रूप से ही इसको अपनी आवाज़ दी है। ज़रा तल्ख मिसरा गौर फरमाएं। कौसर में वो धुली हुई बाहें भी जल गई, कौसर में वो धुली हुई बाहें भी जल गई, जो देखती मुझे वो निगाहें भी जल गई, अंबर से रिश्ते गेसुए शब्दों भी जल गए, वो दीदा हाय मस्तो पुरफसूम भी जल गए, मासूम कह कहूं का तरन्नुम भी मिट गया, झेपी हुई नजर का तबस्सुम भी मिट गया, ये दोपहर की धूप ये वीरान आसमां, तू ही बता कि अब मैं पुकारूं किसे कहां। दोस्तों, आपने इस नज्म का ये वर्जन शायद पहले ना सुना हो, पर आप जब आप इसे सुनेंगे तो सुनकर हैरान भी हो जाएंगे और आंखें नम भी हो जाएंगी। तो आइए सुनते हैं

मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा हम तेरी जुस्तजू है। गुजर रही है कुछ इस तरह ये जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू है। जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुजर रहा हूँ कुछ अनजानी रह गुजारों से। मुहीब साए मेरी समत बढ़ते आते हैं, हयात मौत के पुरहौल खार जारों से। न कोई ज़्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग, न कोई ज़्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग। भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हमनफर मगर ही हुई कभी कभी।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती बाड़ी में। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं झाबुआ के मौसम का हाल। झाबुआ का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस, कल की वर्षा 1.8 मिलीमीटर, 1 जून से अब तक की कुल वर्षा 143.2 मिलीमीटर नापी गई है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: दोस्तों, रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक साझा करते आया है और आज हम फिर से हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भीली भी गीत को।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फसल बीमा योजना किस तरीके से हम करवा सकते हैं और फसल बीमा योजना से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको एक्सपर्ट से और जानते हैं किस तरीके से हम कैसे हम फसल योजना का लाभ उठा सकते हैं।
1: विभास कुमार जी, जो कि महाप्रबंधक है CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर PC सुधाकर, आप प्रबंधक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया में, और हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं सहायक आयुक्त फसल बीमा कृषि मंत्रालय से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कृष्णवीर चौधरी जी हैं अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज से, कृष्णवीर जी आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो आप किसानों का पक्ष यहां पर रखेंगे और साथ ही हमारे साथ सुधाकर जी हैं जो कि बताएंगे कि किस तरीके से पॉलिसी काम करती है, और सुनील जी बताएंगे कि कैसे सरकार इस योजना को किसानों तक पहुंचा रही है, कैसे इसे और व्यवहारिक बनाया जा रहा है, किसान कैसे इसे ज्यादा लाभ ले सके इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और हमारे साथ विभास जी हैं जो कि बताएंगे कि अगर किसान को किसी तरह की समस्या आती है, अगर वो इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहा है, तो ऐसे में कैसे वो उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं और उनके लिए राह और आसान करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित हमारी इस रिपोर्ट पर।
2: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको मोटे तौर पर बताया कि किस तरीके से ये योजना काम कर रही है, समय समय पर इसमें कुछ संशोधन भी किए गए ताकि किसानों के लिए और आसानी हो सके, और जो उनकी तरफ से सुझाव दिए गए हैं उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले मैं सुनील जी आपसे समझना चाहूंगी कि जो फसल बीमा वीक हम मना रहे हैं 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, इसका मकसद क्या है?
3: देखिए, ये फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से लागू की गई है और इसमें बहुत सारे विभाग, बहुत सारे कर्मचारी, एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग चूंकि इनरोलमेंट शुरू होता है, जनरली जो खरीफ का इनरोलमेंट है वो 1 जुलाई पर व्यवहारिक रूप से पिक पर रहता है या वहां से स्टार्ट हो जाता है, और जो कट ऑफ डेट है वो बहुत सारे राज्यों में 15 जुलाई है और बहुत सारे राज्यों में जो है 31 जुलाई है। तो इसमें ये किया गया था, इसका जो बनाने का स्वरूप था कि सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोग एक जगह जमा करें, सभी को सेंसिटाइज करें और फार्मर्स के इनरोलमेंट के प्रति उनको दायित्व फिक्स करें कि आप जो है इनको समझाएं, और जो भी उनकी जो मशीनरी है उसको पूरी की पूरी एक सप्ताह में हम एक्टिवेट कर दें कि वो फसल बीमा इजी वे में हर एक जगह, हर एक गांव में, हर एक जगह वो पहुंच जाए ताकि किसानों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। इसका एक और पर्पस है कि चूंकि हम पहले योजना के बारे में बता देना चाहते हैं, तो और जो समय मिलता है किसान भाइयों बहनों को वो उसमें निर्णय ले पाएंगे और उसमें अच्छे से पूरे कागजात वगैरह जमा करके वो बीमा अपनी करा सकते हैं। तो ये सारे चीजें हैं कि पूरी स्टेक होल्डर्स को उसमें एक्टिवेट करना होता है हम
1: लोगों को। अमित सुधाकर जी से जानना चाहूंगी, सर ये बताएं कि देखिए अभी हम फसल बीमा वीक मना रहे हैं, लेकिन जब हम इस तरह के आयोजन करते हैं तो किसानों के मन में ये होता है कि कुछ नया किया गया होगा, कुछ चीजें बेहतर की गई होंगी, कुछ चीजें उनकी सहूलियत के अनुसार इसमें शामिल की गई होंगी। तो इस बार इस वीक में किसानों को क्या नया बताने वाले हैं, क्या नया उन्हें, क्या कौन सी नई सुविधा मिलने वाली है?
4: जैसा अभी सुनील जी ने बताया कि

0: ये फसल बीमा सप्ताह हम ये तीसरी बार हम करने जा रहे हैं। पिछला खरीफ हुआ, फिर रबी हुआ, ये फिर से खरीफ आ गया है। तो इसका जैसे कई सारे उन्होंने बताया कि क्यों मनाया जा रहा है, तो उसमें एक प्रमुख कारण ये है कि अब बीमा जो है हमारा स्वैच्छिक हो गया है। तो पहले तो जो भी मनाया जा रहा है उसमें एक प्रमुख कारण ये है कि अब बीमा जो है हमारा स्वैच्छिक हो गया है। तो पहले तो जो भी लोनी फार्मर थे, जो बैंक से लोन लेते थे, उनका अपने आप बीमा हो जाता था। अब जो है उनको बताना जरूरी है कि ये बीमा हम ले क्यों। तो जब तक उनके हम घर पे नहीं जाएंगे, तो हर बार जो है कुछ ना कुछ जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनको चुनते हैं। इस बार भी करीब 75-80 डिस्ट्रिक्ट चुना गया है, और वो हर उसमें से कुछ कुछ ब्लॉक्स पे जाकर के गांव के घर तक जाकर के इतने अधिक मतलब जितने भी हमारे पास साधन है प्रचार प्रसार के, सभी का इस्तेमाल करते हुए और जितने हितधारक हैं सभी के कान तक एक बार आवाज जरूर पहुंच जाए कि बीमा है क्या और इसको हम कैसे लें और उसे क्या क्या फायदे हो सकते हैं और मतलब नुकसान होने पे फसल का उनको क्या इससे फायदा होगा और आगे फसल अपना जो है खेती बाड़ी आगे सुचारू रूप से करते रहेंगे। ये सबसे प्रमुख बिंदु है जिसपे कि हम फोकस करना जा रहे हैं इस बार।
1: जी बिल्कुल, यानी जो एक किसानों की तरफ से लगातार मांग थी कि कुछ किसान ऐसे थे जिन्हें जिनका ये कहना था कि अगर हमने ऋण नहीं लिया है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, तो उनका क्यों बीमा किया जाए। मतलब अगर ऋण लिया है और तब भी अपने आप ही पहले बीमा हो जाया करता था, और अगर उन्हें नहीं कराना है तो ये उनके पास अब सुविधा है कि वो बैंक में जाकर इसकी जानकारी दे दे कि भले ही मेरा बीमा आप ना करें अगर ऋण लिया है तब भी, लेकिन इसके बारे में आपको सही समय पर सूचना देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं विभास जी से। विभास जी देखिए, हम जब गांव जाते हैं और किसानों से बात करते हैं और हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, हमारा भी मकसद रहता है कि किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाए, लेकिन एक जो हम प्रैक्टिकल और व्यावहारिक समस्या किसानों के बीच देखते हैं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर उनकी तरफ से शिकायत एक तरह से कह सकते हैं कि रहती है कि हम जाएं कहां, कोई हमें सुनने वाला नहीं। अगर हमें नहीं भी कराना है बीमा और अगर हो गया है तो उसके बारे में हमें बैंक जाना पड़ता है, कोई सुनता नहीं है, हमें कंपनी की तरफ से जो बीमा कंपनी की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं होता है जो उन्हें समझा सके, इसको लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है।
2: देखिए, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स कहलाते हैं, CSCs, सारे किसान भाइयों को पता है। तो हम लोगों का पूरा पर्पज़ ये है कि फसल बीमा की पूरी जानकारी किसानों को दी जाए। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, मतलब हम लोग कैंप्स लगा सकते हैं, हम लोग ये सब करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, डिस्कशन करते हैं लोकल एरियाज में, उन लोगों को बताया जाता है कि फसल बीमा में क्या क्या सुविधाएं हैं, और उसके बाद पूरा एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है जिसपे किसान अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपनी जमीन का बीमा करा सकते हैं, वो पूरी की पूरी प्रोसेस हमारे CSC के थ्रू होती है। और उसके अलावा फिर मतलब उनको एक हम रसीद देते हैं जिससे ये उनको प्रूफ हो जाता है कि हाँ उन्होंने पेमेंट करा है। उसके बाद का उनका पॉलिसी का या जो उन्होंने पेमेंट करा है उसका स्टेटस क्या है, वो भी हमारे वेली उनको समझा सकता है। तो इसलिए पूरी क्लेम अगर कभी आता है और अगर उनको इंटीमेट करना होता है तो उसके लिए भी वो हमारे वेली के पास आके अक्सर उनसे हेल्प लेते हैं, और फिर उनको हम कनेक्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, क्योंकि बेसिकली हमारा काम कनेक्शन का है। तो जो भी नियरेस्ट CSC है, और हमारे काफ़ी CSCs हैं सारे, उसमें मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक करीब करीब 3.5 करोड़ फार्मर्स को हम लोग इनरोल कर चुके हैं थ्रू द CSC नेटवर्क। तो
1: ठीक है, कृष्णवीर जी मैं आपके पास आती हूँ। अब ये बताएं कि देखिए, इस योजना को आए हुए 5 साल से ऊपर हो गया है, और कहते भी हैं कि किसी योजना की कामयाबी या फिर उसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं या जो लूप होल्स हैं उनको समझने के लिए 5 साल का वक्त काफी होता है, और कहते भी हैं कि किसी भी स्कीम का जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 5 साल आप लेकर चलिए। अब आप कहाँ देखते हैं किसानों को इस योजना को लेकर, उनमें कितना आत्मविश्वास है और उन्हें कितना लाभ मिल रहा है, क्योंकि आप किसानों से जुड़े रहते हैं, उनकी तरफ से किस तरह का फीडबैक प्रतिक्रिया आपको मिल रही है?
3: देखिए अंजू, जो उद्देश्य था सरकार का इस योजना को बनाने का, वो किसानों को जो नुकसान होता रहा प्राकृतिक आपदाओं से उससे बचाना सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा, जो पहले योजना थी उसमें जो लोन किसान का था उसमें कंपलसरी कर दिया गया था, लेकिन उसमें शिकायतें ये रही, कुछ बैंकों ने पैसा काट लिया, जमा नहीं किया पॉलिसी में, बहुत सारी शिकायतें रही। इसी वजह से अब ये स्वैच्छिक कर दिया गया है, किसानों की अपनी मर्जी है कि वो उसमें अपना इंश्योरेंस पॉलिसी में किस तरीके से भागीदार लो। ये सच्चाई है कि अब जब सप्ताह मनाया जा रहा है तो उसका उद्देश्य ये है कि किसानों को पूरी तरीके से फसल बीमा योजना के बारे में उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप इसमें आइए और आप फसल बीमा कराइए, जिससे यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान आपका

0: होता है तो उसकी भरपाई हो सके, ये तो है योजना का उद्देश्य। और योजना का जो लाभ है वो किसानों के लिए है, लेकिन कुछ कमियां जो सुधार हो रहा है बराबर, अभी भी खामियां हैं। खामियां क्या है कि जब फसल बीमा योजना को लागू करते हैं खरीफ का तो बहुत तेजी से प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे रबी का करते हैं, लेकिन जब आपदा से नुकसान होता है देश के किसी भी कोने में तो ये सच्चाई है कि अब तो खुद ही प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपनी तरफ से जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी को इसलिए लागू करवाया जिससे सर्वे के लिए ड्रोन जो है सबसे एक सही रास्ता चुना गया है, और उससे नुकसान का जो है एक सर्वे होता है और उसी तरीके से किसानों का जो है बीमा योजना की धनराशि दी जाती है। लेकिन लेकिन इसमें क्या है कि पूरे गांव में जब नुकसान होगा, पहले तो ब्लॉक होता था, अब सरकार ने गांव कर दिया है, ये जरूरी नहीं है कि पूरे गांव का नुकसान होगा। ये हो सकता है कि एक तरफ से गांव के एक हिस्से में नुकसान हो और दूसरा हिस्सा ठीक रह जाए। तो मेरा सुझाव ये रहा है, और आज फिर मैं कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से फिर मेरा सुझाव है कि हर किसान के हर खेत का सिर्फ रसीद देना भर से जिम्मेदारी हक पूरा नहीं हो जाता, उसको कवर नोट दिया जाए कि ये फसल है, ये इसकी वैल्यू है, और यदि नुकसान होगा तो इतनी भरपाई जो है इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसमें भी दो चीजें हैं, एक केंद्र सरकार का धनराशि है और दूसरा प्रदेश सरकारों की उसमें धनराशि होती है। कई बार प्रदेश सरकारें समय पर धनराशि अदा नहीं कर पाती तो किसानों को ये फसल बीमा कंपनियां उसको जो लाभ समय पे नहीं दे पाते। कुछ प्रदेशों ने तो फसल बीमा योजना लागू ही नहीं की अपने यहाँ, जैसे पंजाब है तो वहां परेशानियां होती हैं, लेकिन पंजाब ने लागू नहीं किया, और भी प्रदेश हैं जिन्होंने लागू नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं। एक सिर्फ मेरा दो सुझाव है कि जब किसान को आपदा का मुकाबला करने का हालात होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव वहां ब्लॉक लेवल पर होना जरूरी है, अगर ब्लॉक लेवल पर नहीं है तो जिला लेवल पे परमानेंट वहां रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उस कंपनी का जो उस जिले में इंश्योरेंस कर रही है फसलों का, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ। अब ऑनलाइन जो है सब कुछ में काम नहीं चलता, ऑनलाइन किया जा सकता है लेकिन जब लेने का नंबर आता है तो ऑनलाइन में अधूरापन रहता है और किसान उसमें भटकता है। इस कमी में सुधार करना है।
1: जी जी सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? जो कृष्णवीर जी ने एक तो पहली बात उन्होंने कहा कि जो कवर लेटर होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो नहीं मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं हम किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवाते हैं, कार है, मकान है, यहां तक कि हेल्थ इंश्योरेंस सब में ये एक आपको बकायदा पॉलिसी मिलती है, उसमें जो जो चीजें कवर हैं, कितना सम इंश्योर्ड है, सब चीजें होती हैं। तो ऐसा क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या आगे इस पर कुछ किया जा रहा है?
2: देखिए, जो अभी पूरे चर्चा चल रही थी उसका स्वरूप है कि जो सरकार जो है मुख्यतः तीन बातों पर ज्यादा ध्यान दे रही है और इसमें हम लोग बहुत काम करने में सफल हुए। पहला चीज है कि हम फसल कटाई प्रयोग को जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से ट्रांसपेरेंट वे में करके हम किसानों को भागीदार बना के हमको जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करें, क्लेम दे दें। उसकी दूसरी चीज है कि इनरोलमेंट हम करें कि किसान को इनरोलमेंट में कहीं भटकना ना पड़े, हम उनकी पूरी चीज को है वो द्वार तक पहुंचाएं, और इसके लिए पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, सीएससी, पोस्ट ऑफिस या फिर टेक्नोलॉजी के सहायता से हम लोग देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम किसानों को हम योजना के बारे में बताएं, उसमें कोई त्रुटि रह गई उनको विश्वास हो और उसमें भागीदार बने। तो ये इसके लिए भी हम लोग प्रचार प्रसार वगैरह कर रहे हैं और उसी कड़ी में ये फसल बीमा सप्ताह इस बार लागू चलाई जाएगी। लेकिन मुख्य जो आप कह रहे थे कि हम उनको रिसीट देते हैं या नहीं देते हैं, हाँ हम लोग आज से 2-2.5 साल पहले हम लोग शुरू कर चुके हैं कि हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो बैंक में बीमा कराते हैं, बैंक के थ्रू बीमा होता है, उनको हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देते हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर या अभी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कराएंगे उनको तत्काल तुरंत हाथ में ही उनको पॉलिसी दिया जाता है।
1: अच्छा।
2: उसका पर्पस ये है जो हम किसान भाइयों को जागरूक करते रहते हैं, इसका बहुत वैल्यू है क्योंकि आपके पास एक कागजात है, कागजात में एक सारे चीजें लिखे होती है कि आपका किस फसल का बीमा हुआ, आपने कितना प्रीमियम दिया, सरकार ने उस आपको प्रीमियम सहायता के रूप में आपके लिए कितने बीमा कंपनियों को भुगतान किया, किस खेत में है, किस खेत में किस फसल के लिए बीमा किया गया है, कितनी धनराशि है, बैंक का खाता नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। इसके अलावा फिर हम किसान भाई को और जागरूक करते कि अगर इसमें किसी तरह की त्रुटि रह गई तो इसको तत्काल हम लोग से सुधारवाएं, बीमा कंपनियों को संपर्क करें ताकि इसमें सुधार किया जाए, ताकि हम भुगतान जब आपको भुगतान करना हो तो जल्द से जल्द भुगतान करें, किसी तरह की व्यवधान ना पैदा हो। खास करके ऐसा देखा गया है, पीछे हम लोग ने अनुभव किए थे कि अगर बैंक के माध्यम से जब इंश्योरेंस होता था तो किसान भाई को पता भी नहीं होता था कि मैं मेरी किस खेत की किस फसल के लिए बीमा हो गई है। तो ये एक चैलेंज था। जब हम इसमें व्यक्तिगत खेतवार आकलन करने की व्यवस्था की गई है कि कुछ ऐसे पेरिल्स हैं जोखिम जिसको खेतवार आकलन किया जाता है, जब बीमा कंपनी राज्य सरकार के जो संयुक्त समिति होती है जब सर्वेक्षण के लिए जाती है तो वहां जिस फसल के लिए बीमा होता किया गया है वो फसल नहीं मिल पाती थी। तो ये सारे चीज जो चुनौतियां जो फील्ड में थी
1: देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि किसान ये कहता है कि हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारी कौन सी फसल का बीमा हो गया, और वो तो जो उसको जो फसल लेनी वो लेता है, और बाद में पता चलता है कि जो कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो नोटिफाइड फसल है जिसकी अधिसूचना है उसी का ही बीमा मिलेगा। तो ये ऐसा क्यों होता, मतलब ऐसी स्थिति ही क्यों आती है?
2: देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं जो समझना पड़ेगा कि राज्य सरकार इसमें अधिसूचित करती है फसलों को, इसमें योजना में उनके लिए जो एक क्षतिपूर्ति के लिए थ्रेशोल्ड यील्ड होता है, ग्रांटेड यील्ड दिया जाता है, तो उसके लिए 10 साल का उपज आंकड़ा की आवश्यकता होता है, प्लस जो अभी हम लोग तत्काल में अगर कोई क्षति होती है, क्षति का जो मापदंड होता है वो भी फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से किया जाता है। तो राज्य सरकार ये देखती है कि किस फसल में जोखिम है, हमारे पास डेटा उपलब्ध है ताकि हम उसको अधिसूचित कर पाए। लेकिन ऐसा जनरली देखा गया है कि हम लोग ने भी सर्वे किया है, अदर किया है, कि जो मुख्य फसल होते हैं वो सारे कवर हैं, कुछ कुछ फसलें ऐसे हैं जिनके इल डेटा नहीं उपलब्ध होते हैं उस टाइम, उनको हम लोग राज्य सरकार को प्रेरित करते हैं, बात करते हैं
1: कि
2: मौसम आधारित बीमा योजना में, जैसे खास करके आप बागवानी फसलें हैं, खास करके आपके जो सब्जी की फसलें हैं जो आजकल शहर के नजदीक या गांव में भी बहुत तेजी से फैल रहे हैं, तो वहां भी हम लोग उनके डाटा नहीं उपलब्ध हो पाता है अलग अलग वैरायटी के कारण, अलग अलग टाइम के कारण, तो हम लोग कहते हैं उनको कि मौसम आधारित बीमा योजना है उसमें आप इसको अधिसूचित करें।
1: जी बिल्कुल।
0: गन्ना भी है, वो भी बाहर है अभी उत्तर प्रदेश, क्या पूरा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, 8 प्रदेश है, लेकिन गन्ना भी अभी योजना में शामिल नहीं हो पा रहा है।
1: जी बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और पूरे इस सप्ताह को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वीक के तौर पर मनाया जा रहा है। मकसद यही है कि किसानों को इसको लेकर जागरूक किया जाए, डोर टू डोर पहुंचा जाए, किसानों के घर तक पहुंचा जाए और इसके लाभ के बारे में उन्हें बताया जा सके ताकि वो इससे जुड़े, इसका लाभ ले और जो उनकी आशंकाएं हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
3: किसान भाइयों, अभी हमने फसल बीमा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना, चर्चा को आगे जारी रखेंगे, उससे पहले यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: एनेक।
1: किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए और जानते हैं कुछ और इस फसल बीमा सप्ताह के अंदर क्या जानकारी हमें मिल सकती है, आइए सुनते हैं।
3: 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के दौरान फसल बीमा वीक मनाया जा रहा है ताकि आप किसानों को इसके लाभ के बारे में बताया जा सके और आपकी समस्याओं को भी सुना जा सके ताकि उनको सुनकर बीमा को लेकर जो सुझाव हैं बदलाव भी किए जा सके, संशोधन भी किए जा सके। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ब्रेक से पहले सर मैंने कहा था कि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहां तक पहुंचे हैं हम इन लगभग 5-6 सालों में, पहले क्या आंकड़ा था और अब कहां कितने किसानों को इसमें कवर किया गया है और कितनी नई फसलों को शामिल किया गया है। सुनील जी,
4: देखिए पहले जब हम पुराने योजनाओं में अगर देखें तो उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम था। उसमें बहुत सारे चीजों को हम लोग ने देखा कि क्यों कम है, क्या किसान जानते हैं बीमा योजना के बारे में या नहीं जानते हैं, या राज्य सरकार अभी सूचित नहीं कर पाती फसलों को। तो ये सारे चर्चा करके हुआ कि नहीं, इसमें हम पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के हम इनको अच्छे से ढंग से योजना को नए स्वरूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में लागू किया गया, जिसमें पहले वर्ष में जो थे वो आप अगर संख्या देखेंगे किसानों का तो करीब वो 4 करोड़ एप्लीकेशन आए थे। और खरीफ अगर 16 की बात करें, अगर अभी हम पिछले खरीफ की बात करें तो स्वैच्छिक होने के बावजूद, योजना स्वैच्छिक हुई है, आधार इसमें

0: पसरी किया गया है, लैंड रिकॉर्ड को हम लोग जोड़ दिए हैं ताकि इसमें किसी तरह से डीडुप्लीकेशन हम प्रॉपर कर पाए, वो इसकी गलत फायदा लोगों को ना उठा पाए। तो ये सारे चीजों को करने के बाद भी अभी हमारे पास खरीफ में केवल 5 करोड़ किसान अभी बीमित हुए हैं, और हम लोग आशा कर रहे हैं ये कोविड काल का पीरियड है जब तक हम लोग के पास बहुत संसाधन कॉन्स्टेंट था, लेकिन इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है 5 करोड़ से ज्यादा फार्मर एप्लीकेशन को हम बीमित करेंगे इस बार, तो इसी तरह से देखेंगे। क्लेम के बारे में अगर हम कहें तो क्लेम का भी अच्छा रहा है, जहां जहां प्राकृतिक आपदाएं 5 साल में आए हैं वहां क्लेम किसानों को मिला है। हाँ, किसान भाइयों को मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहूंगा कि ये बीमा योजना है, बीमा योजना में लाभ उसी जगह मिलता है जहां आपकी फसल नुकसान हुई है,
1: ठीक है,
0: तो जहां जहां नुकसान हुई है वहां वहां फसल का बीमा मिला है। सरकार इसको पूरी निरंतर मॉनिटरिंग कर रही है, देखते रहती है, और इसके लिए बहुत सुचारू तंत्र भी लगाया गया है कि ताकि आपको किसी तरह की कठिनाइयां ना हो इसमें। अगर खास करके मैं आज बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे पास जो है शिकायत किसानों का होता था उसके लिए क्या करना चाहिए, तो किसान के लिए शिकायत पहले सीधे मंत्रालय को आता था, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, राष्ट्रपति और मंत्रालय को, ये सारे चीजों को हम लोग ने बहुत ग्राम स्तर तक ले जा रहे हैं। अभी ब्लॉक लेवल पर शिकायत निवारण तंत्र किया गया है। इसके अलावा बीमा कंपनियों को कहा गया कि टोल फ्री नंबर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उनकी शिकायत को करें और उनको निवारण करें। इसमें भी अब जो है केंद्र सरकार ने ये निश्चित किया है और इसके लिए बहुत आगे बढ़ चुकी है और डेवलपमेंट हो चुका है कि पूरी कॉल सेंटर शिकायत के लिए पूरी स्ट्रेटजी, हर एक स्टेट्स में उनके रिप्रेजेंटेटिव टोटल होंगे ताकि आपको शिकायत पूरे डॉकेट नंबर के साथ हो और हर एक चीज पर केंद्र सरकार उस पर निगरानी रख सके कि आपकी शिकायत कैसे हुआ और कब निपटारा।
1: ठीक है सुधाकर जी, जैसे कि कृष्णवीर जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि एक समस्या ये भी आती है कि इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी का कहना होता है कि वो हमें बजट के हिसाब से चीजें करनी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जो पूरा मैन पावर होता है वो उसको उसके अनुसार ही आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, तो ये समस्या कैसे दूर होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं होंगे, प्रतिनिधि नहीं होंगे, तो किससे बात करेंगे किसान।
2: देखिए ये सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सवाल रेलेवेंट होता अगर ये शायद 2 साल पहले तक तो ये रेलेवेंट था, आज के समय में आप देखेंगे तो जो भी कंपनी काम कर रही है तो उसका एक प्रतिनिधि जिला स्तर पे भी है और उसका एक एक प्रतिनिधि हर ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर पे उपलब्ध है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें जहां हमारी कंपनी भी कार्यरत है 37 जिलों में, तो वहां 200 के आसपास हमारे प्रतिनिधि पूरे फील्ड में मौजूद हैं। तो उसमें वो ऐसे जिले भी हैं जहां पर की प्रीमियम जहां जो जिससे कंपनी का आमदनी होता है वहां नहीं के बराबर है, वहां भी जो है हमारे हर ब्लॉक में आपको आप हमारे प्रतिनिधि मिल जाएंगे। तो ये समस्या आती है ज्यादातर उन छोटे राज्यों में जहां पर की प्रीमियम ही बहुत कम है। अगर सारे जगह पे प्रतिनिधि लगा दिया जाए तो जितनी प्रीमियम नहीं आती है उससे अधिक हमारा
1: कॉस्ट
2: बढ़ जाएगा। तो वहां पे एक समस्या है जिसको कि भारत सरकार के सहयोग से उसको ये सुलझाने की कोशिश की जा रही है, शायद उसमें भी कुछ जल्दी से
1: उसको लेकर क्या किया जा रहा है सुनील, जैसा कि
0: देखिए इसमें चीजें हैं जैसे अभी बता रहे थे, जिसमें पहले सेगमेंट में ही सुधाकर जी बताया कि कुछ ऐसे जिलों को हम लोग चिन्हित करते हैं जहां पोटेंशियल हो और इंश्योरेंस सभी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे हम लोग 75 डिस्ट्रिक्ट इस बार भी चुने हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इनके लिए बिजनेस है, सरकार के लिए है कि किसानों को सुविधा है, तो उसके बीच में क्या बैलेंस हो और कैसे करे, तो इनके इंश्योरेंस कंपनी के जो तंत्र हैं उनको तो हम लोग एक्टिवेट करते हैं, प्लस जो है ये फसल बीमा सप्ताह, फसल बीमा पाठशाला, ये सारे जो हमारी योजनाएं हैं जो लगातार चल रही है उसके द्वारा भी करते हैं, और ये सारे जो हमारी योजनाएं हैं जो लगातार चल रही है उसके द्वारा भी करते हैं, और जो चीजें वहां अगर पोटेंशियल है और किसानों को नहीं है तो टारगेट भी दिया गया है कि हम आप वहां जाएं और टारगेट करें। तो बिजनेस के साथ साथ जो उनकी सरकार की दायित्व है उसमें पूरी समायोजित करके योजना बनाई जाती है और वहां हम लोग करते हैं, राज्य सरकार का भी पूरा सहयोग मिलता है और हम लोग हर एक किसानों को समझाते हैं कि हाँ आपके पास जो है यहाँ क्षति हो सकती है, यहाँ रिस्क है, इस रिस्क में आपको बीमा करानी चाहिए, बाकी स्वैच्छिक है बीमा, किसान चाहते हैं तो बीमा होती है।
2: और इसमें मैं एक थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा, अभी हमारे सीएससी के प्रतिनिधि भी यहाँ पे हैं, पहले भी उन्होंने बताया कि ये हर गांव में एक सेंटर तो है ही, कई के गांव में तो दो दो सेंटर भी है और

0: बहुत अधिक घनत्व वाला है तो हम सोचते हैं उसे भी ज्यादा संख्या मिल जाए, तो वो जो सेंटर्स पे हैं उनको बीमा कंपनी, राज्य सरकार के और स्वयं सीएससी के द्वारा भी जो वहां काम कर रहे हैं, इसको हम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उनको काफी उनको मैन पावर इन्हांसमेंट होती है, उनकी जो तकनीकी जानकारी बढ़ाई जाती है, समय समय पर उनको जानकारी दी जाती है, तो वो भी एक तरह से समझ लीजिए योजना का एक्सटेंडेड आर्म है, वो भी हर तरह से हर सुविधा देने के लिए किसानों के लिए सामने खड़े हैं वो, तो चाहे बीमा का लाभ लेना हो या बीमा कराना हो।
1: अच्छा जी जी, एक चीज और बताइए सुधाकर जी कि आप ये फसल बीमा मित्र कुछ हम सुन रहे हैं, ये क्या है?
0: हाँ, ये एक नई कॉन्सेप्ट भारत सरकार ने लाई है कि हर ग्राम पंचायत में या हर गांव में कह लीजिए कि एक वॉलंटियर का सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन क्या मतलब, जो भी वॉलंटियर करेंगे तो एक बंदे को नॉमिनेट किया जाएगा कि फसल बीमा मित्र के रूप में आप कार्य कीजिए,
1: किसानों के बीच में
0: से ही।
2: असली बात यह है कि इसलिए मित्र खड़ा करना पड़ रहा भारत सरकार को कि कंपनियों के और किसान के बीच में जो एक समस्या चल रही थी उसके समाधान के लिए भारत सरकार जो है वो मित्र जो है हर गांव में करना जरूरी हो गया, इसीलिए किया जा रहा है, जिससे इसका किसानों को जो समस्याएं हैं वो है समय पर उसको इंश्योरेंस का जो प्राइस प्रीमियम जो देता है उसका नुकसान होने पर उसकी भरपाई हो जाए, भरपाई करवाने के लिए ही ये ग्राम लेवल पर भारत सरकार मित्र जो है योजना खड़ा कर रही है।
1: जी मैं आपसे समझना चाहूंगी विभास जी, सीएससी का रोल किस तरह का है और कैसे इसे आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को किसानों को समझाएंगे?
3: देखिए, जैसे अभी सुधाकर जी ने यूपी की बात करी थी तो मैं यूपी का एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। यूपी में हमारे करीब 80,000 केंद्र हैं, एवरेज हो गया करीब करीब 1100-1200 केंद्र हर जिले में
1: जी।
3: तो ये ऑलमोस्ट जैसे इन्होंने कहा हर गांव में एक केंद्र है ही, हर ग्राम पंचायत में डेफिनेटली एक केंद्र है और वहां पे सारी उन लोगों को जानकारी होती है फसल बीमा के बारे में। तो हमारे किसान भाई वहां जाके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां से जाके एनरोलमेंट भी कर सकते हैं,
1: दोनों चीजें
3: हो सकती है, जिसमें कोई अतिरिक्त पैसे नहीं लिए जाते हैं उनसे। तो वो एक सप्लीमेंट्री मैनपावर की तरह से भी यूज होता है, कई लोग करते हैं कि जो भी आपको जानकारी चाहिए फसल बीमा कार्यक्रम के बारे में, उसके बाद अगर आपने एक बार पॉलिसी ले ली है तो उसके स्टेटस के बारे में, अगर कोई रिफंड या रिजेक्टेड पॉलिसी है उसके स्टेटस के बारे में, ये सारी चीजें हमारे केंद्र से पता की जा सकती है
1: जी। और कृष्णवीर जी, अब मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, किसानों की एक समस्या हम ये भी देखते हैं कि कई बार जो कोई अगर क्षति होती है या कोई आपदा आती है तो राज्य की तरफ से भी वो आपदा राहत राशि होती है और

0: से हम लोग जो है सीधे सीधे भारत सरकार ही पैसा ट्रांसफर करेगी, ऐसी व्यवस्था कर रही है इंश्योरेंस कंपनी हमारे पोर्टल के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। उससे दो तीन फायदे हैं कि हम लोग को पूरे राज्य सरकार और पूरे उनके प्रतिनिधि साहब को पता होगा कि कब पैसा ट्रांसफर हुआ और किसान को ट्रैक कर पाएंगे पूरे एक्टिविटीज को। तो ये अगले सीजन से हम लोग ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग चालू करने वाले हैं, तो ताकि अब हम लोग एकदम रूट कॉज में पता कर पाए।
1: किसान साथियों, अभी हमने सुना किस तरीके से पहले जितनी समस्या आती थी हमें हमारे बीमा काम करने में, किस तरह कौन सा पैसा आया कौन सा नहीं आया, इन सारी समस्याओं को जितना हो सके जो लंबी प्रोसेस थी उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है, उसमें पारदर्शिता लाई जा रही है। चर्चा को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते और सुनते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
0: कि किसान भाई को सराहता है कि मेरा कैलकुलेशन सही नहीं हुआ,
2: जी।
0: मेरा जो आकलन हुआ ठीक नहीं हुआ, वहाँ प्रतिनिधि पूरे अगर डेटा इलेक्ट्रॉनिक वे में आके और सारे चीज रिकॉर्डेड रहेगा और हम लोग उस चीज को बाद में भी ऑडिट कर सकते हैं, उसमें ग्रीवांसेज बनेगी तो हम लोग तुरंत इमीडिएट उस पर एक्शन ले सकते हैं, ये सारे चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट होगी। योजना का पर्पस ही है कि हम ट्रांसपेरेंट वे में पूरे हम फार्मर्स को कॉन्फिडेंस में लाएं कि हम आपको पूर्ण सुरक्षा दे रहे हैं।
3: मैडम एक और मैं इस कड़ी में और एक बात बोलना चाहूंगा कि किसानों को कैसे जल्दी से जल्दी इस बीमा योजना का लाभ मिले, जिससे समय अभी सब लोग बात कर रहे हैं कि देर हो रहा है, उससे देर होने का मुख्य कारण एक तो सब्सिडी है, दूसरा है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का जो डेटा आता है हमारे पास, तो इसको दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट शुरू किया है। इस बार प्रपोजल है जिसमें कि सारा रिमोट सेंसिंग से लॉस एस्टिमेशन होगा ताकि वो तुरंत डेटा आ जाए और उस तरह से
2: तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, जिसका जिक्र सुनील जी पहले भी कर चुके हैं। लेकिन जैसे कि अभी सुनील जी ने बताया कि किसानों की तरफ से एक ये भी सवाल रहते हैं या फिर आशंका रहती है कि जो कैलकुलेशन हुआ है वो कितना सही हुआ है, किस आधार पर हुआ है, तो उसे और पारदर्शी करने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स भी पढ़ रही थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हुए, तो उनमें से एक पॉइंट था कि उपज के पूरे मूल्य का बीमा होगा और जो बीमित राशि है जो मूल्य है उसे कम नहीं किया जाएगा। तो ये किस तरह से ये इसका गणित क्या है, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है?
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
5: अंकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है, नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था, लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र।

0: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और जैसा कि ब्रेक से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि जो मूल्य की बात कर रहे हैं कि जो उपज है उसकी जो बीमित राशि है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके मानक क्या है, क्या है इसके पीछे का पूरा गणित, तो मुझे लगता है सुनील जी आप इसे बेहतर समझा पाएंगे।
1: देखिए इसमें सरकार की हम मंशा रही है कि हम पूरे जितने क्षति हो उसको हम पूर्ण भरपाई करें, समानुपातिक जितने क्षति हुई उसको करें। अगर 100% लॉस हुआ तो 100% देंगे, 50% लॉस हुआ तो 50% देंगे। इसकी कैलकुलेशन जो है दो तरह के हम लोग राज्य सरकार को दिए हैं कि या तो आप जो है स्केल ऑफ फाइनेंस जो जिसके आधार पर आपको बैंक ऋण मुहैया कराते हैं उसी के आधार पर वो भी स्केल ऑफ फाइनेंस होगा। वो स्केल ऑफ फाइनेंस भी बहुत साइंटिफिक तरीके से निर्धारित किया जाता है कि C2 जो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसके आधार पर हरेक जिले में जो आप वैरायटी लगाते हैं, जो आप इनपुट यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं उसके आधार पर जो है स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित होता है इस, और उसी को हम लोग सम इंश्योर्ड के रूप में अडॉप्ट करते हैं। दूसरा एक राज्य सरकार को और दिया गया है कि आप उसको कुछ क्रॉप्स का कि बहुत दिनों से नहीं अपग्रेड हुआ होगा स्केल ऑफ फाइनेंस या उसमें लगता होगा कि किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग एक चॉइस दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि पिछले जो आपका 7 साल का उपज है उसको एवरेज यील्ड लीजिए और आज का जो पिछले साल MSP घोषणा की गई है या इस साल जब आप नोटिफिकेशन कर रहे हैं उसके पहले हमें MSP की घोषणा हो गई है तो उस MSP से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका वैल्यू बनेगा पर हेक्टेयर वो सम इंश्योर्ड होगा, यील्ड आपको आ गया पर हेक्टेयर और MSP के प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम लोग उनको सम इंश्योर्ड।
0: ठीक है सुधाकर जी, तो ये सब कैलकुलेशन किस स्तर पर होते हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं, जो गाइडलाइंस मिली है सरकार की तरफ से उसके आधार पर?
2: नहीं, ये सारा अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार तय करती है, जब जैसा आपको पता होगा कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत टेंडर प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कंपनियां सबसे कम प्रीमियम रेट देती हैं उसी को वो डिस्ट्रिक्ट में बीमा करने का अधिकार मिलता है। तो जब टेंडर का डॉक्यूमेंट जारी होता है उसी समय राज्य सरकार कहती है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या सम इंश्योर्ड होगा। जैसा भी सुनील जी ने बताया कि सम इंश्योर्ड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, राज्य सरकार के अधीन है कि वो किस तरीके को अपना करके सम इंश्योर्ड तय करती है, तो पहले ही डॉक्यूमेंट हो जाता है कि ये सम इंश्योर्ड इस बार इस क्रॉप में रहेगा। और इंडेमनिटी लेवल दूसरा होता है कि जो क्षतिपूर्ति का स्तर क्या होगा वो भी पहले ही तय हो जाता है राज्य सरकार के द्वारा, चाहे वो 70% हो, 80% हो या 90% हो। जो क्रॉप अधिक रिस्क की है उसको 70% राज्य सरकार रखती है और जो हमेशा अच्छा उपज देने वाली है उसको 90% तक रखती है। तो ये सारा राज्य सरकार करती है, बीमा कंपनियों का इसमें रोल नहीं है।
0: जी कृष्णवीर जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो C2 की बात की जा रही है, स्केल ऑफ फाइनेंस की बात की जा रही है, इसे कितना समझते हैं किसान?
3: देखिए जो क्रॉप कटिंग का जो प्रोडक्टिविटी का पिछला 7 साल का रिकॉर्ड देखते हैं और उसमें उतार चढ़ाव बराबर आता रहता है और जो पिछला MSP है उससे कैलकुलेट करके जो सरकार योजना बना रही है ये इस पर काम चल रहा है, अभी इस पर काम चल रहा है। ये किसानों के हित में होगा कि जो जिला स्तर की यील्ड होगी, जो लेवल होगा प्रोडक्टिविटी का, और उसको MSP से कैलकुलेट करके जो टोटल फसल का दाम होगा उससे किसान को जो है कंपनसेट जो है नुकसान होने पर जो है वो दिया जाएगा। ये किसान के हित में जरूरी है। और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है कि नुकसान कितने प्रतिशत हुआ है और वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने से जो पहले जिला और गांव लेवल पर दिक्कतें थी उसका समाधान करने का प्रयास सरकार ने किया है, खासतौर से जो असेसमेंट का सुधार किया है टेक्नोलॉजी का, वो समय की आवश्यकता थी और उसको सरकार ने लागू किया है। अब सिर्फ स्थिति यहां आके रुकी हुई है कि केंद्र सरकार जिस दिन जो है सीधे किसानों को नुकसान का पैसा उनके खाते में देना शुरू करवा देंगे, जैसा कि सरकार का बिल्कुल मंशा है कि हम किसानों के नुकसान का पैसा केंद्र सरकार सीधे उनके खाते में दे, ना कि बैंक को बीच में रखे या पोस्ट ऑफिस को रखे या कंपनियों को अभी तक जो रखा गया, क्योंकि उसी से किसान जो है अभी तक जो समस्याएं हैं उसी लेवल पर हैं। वो समस्या का समाधान जिस दिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से, जो देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, सिंगल क्लिक पर जो है 13 करोड़ किसानों को जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, इसी तरीके सारी योजना है। तो ये भी योजना जिस दिन केंद्र सरकार अपने तरफ से सीधे सीधे किसानों खाते में देना शुरू कर देगी, उस दिन उस समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि फिर प्रदेश सरकारें जो अपना पैसा भागीदारी का है वो समय पर दिया या नहीं दिया, नहीं दिया तो उस पर 12% ब्याज देना पड़ेगा।
0: ये तो जवाबदेही भी यहाँ पर तय हो जाएगी,
3: इसे किसान के हित में किया।
0: जी जी बिल्कुल। विभास जी आप क्या कहना चाहेंगे कि किसानों का किस तरह का रुख आप देख रहे हैं, जो इतने सारे बदलाव किए जा रहे हैं इसे और सशक्त बनाया जा रहा है?
4: देखिए मैं तो सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता हूँ, हमारे एनरोलमेंट बढ़े हैं, हर सीजन में लगातार एनरोलमेंट बढ़ रहे हैं और ज्यादा ज्यादा लोग आके जुड़ रहे हैं इस स्कीम के साथ थ्रू द सीएससी नेटवर्क। तो हमको तो लग रहा है कि ये स्कीम
0: काफी
4: लोकप्रिय हो रही है।
5: किसान साथियों आप सुन रहे हैं रेडियो टंटाबील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटाबील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
5: जानकारियों को बढ़ाते हुए ये सुनते हैं कैसे आसानी से हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
1: देखिए मैं किसान भाई बंधु को मैं बताना चाहता हूँ कि फसल बीमा योजना बहुत आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर एक आप खेती करते हैं, खेती में जोखिम बहुत है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, टेक्नोलॉजी लगाते हैं और आप एक भविष्य के लिए एक निश्चित आय आप सोचते हैं कि हमको ये आएगी और उसके लिए वर्तमान में आय से आप फ्यूचर की क्रियाकलाप निर्धारित करते हैं। अगर किसी न किसी कारण से वैसा कभी ना हो हम लोग सोचते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण आपके जो फसल नुकसान हो जाए और जो आप आय के लिए जो आशा किए थे वो आय में बाधा हो, इस चीजों को दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। आप इसका लाभ लें, बहुत सिंपल है, आपको केवल 2% प्रीमियम देना पड़ता है खरीफ फसलों के लिए, रबी में 1.5% प्रीमियम है अधिकतम, बाकी बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है जो कम ही है, और वो जो है वो बाकी शेष राज्य सरकार केंद्र सरकार वहन करती है। आप योजना में देखें, अपने योजना के बारे में जानकारी हम लोग पहुंचा रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे चैनल हैं, आप कृषि विभाग से ले सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, आला प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस या बीमा कंपनी के जितने कार्यालय वहां तक हम लोग लगाए। इसके अलावा होर्डिंग हम लोग वैन वगैरह चलवा रहे हैं कि हर एक गाँव में पहुंचे, आपको जानकारी दे, पंपलेट बांटे ताकि आपके पास रहे, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके पास जब आए तो सारे चीजें मिले, ये सारे चीजें हमको जानकारी
0: एक्सटेंशन वर्क जो है वो भी
1: आप जो है बहुत सिंपल है, हर एक जगह इसकी उपलब्धता है, आप बैंक के माध्यम से करा सकते हैं, सीएससी के माध्यम से करा सकते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं तो स्मार्टफोन के माध्यम से कर सकते हैं, पोर्टल पर जाके कर सकते हैं, ये कहीं भी डोर स्टेप पर हम लोग कोशिश किए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि आप इनरोल्ड कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए बहुत सरल तरीका है, केवल आपको 3 कागजात देने हैं, कागजात भी नहीं कहिए, कागजात के रूप में केवल आपको केवल अगर आप भूमि स्वामी हैं तो रसीद देने पड़ेंगे उनके, अगर आप पट्टे पर लिए हैं तो उनके आपके लिए घोषणा देना पड़ेगा, एक राज्य सरकार ने निर्धारित किया गया है, आपको क्रॉप के बारे में स्व घोषणा करना है कि हम ये क्रॉप के लिए बीमा करा रहे हैं। हाँ ध्यान दें कि जिसका बीमा कराए वही फसल लगाए, अगर फसल बदलते हैं तो आप बीमा कंपनी में जाके बदलवा दें ताकि आपको भविष्य में कठिनाई ना हो। बैंक का हम लोग दस्तावेज लेते हैं, दस्तावेज इसलिए लेते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी हमको भुगतान करना होता है बीमा कंपनियों के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, ताकि हम आपके डिटेल हो पहले कैप्चर करके रखें और दें। हाँ ये योजना जो है इसमें हम लोग नई 2 चीज और जोड़े हैं, आधार कंपलसरी है ताकि जो है किसी तरह का योजना का सही लोगों को सही जगह पहुंच पाए, और लैंड रिकॉर्ड की इंटीग्रेशन किए हैं ताकि जो है जिस लैंड में है उसी लैंड का आपका बीमा हो और पूरा डिटेल हमारे पास हो और किसी तरह के जल्दी से जल्दी
0: किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए इस तरह के
1: ट्रांसपेरेंट वे बन करें।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटाबील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
5: किसान साथियों आपने फसल बीमा योजना से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना। दोस्तों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटाबील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम।
1: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 एफएम आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम खेती बाड़ी में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांट्या भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांट्या भील 90.8 एफएम की ऐप के माध्यम से काफी विद्यार्थियों ने और किसानों ने इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड किया है और खेती संबंधी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर झाबुआ के मौसम के ऊपर। झाबुआ का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस, कल की वर्षा 9.4 मिलीमीटर, 1 जून से अब तक की कुल वर्षा 152.6 मिलीमीटर नापी गई है।
2: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम।
1: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 एफएम आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, आज के खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं उड़द की खेती के ऊपर, साथ ही जानेंगे तिल्ली की खेती और मशरूम की खेती। किसान साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक

0: 152,000 टन अधिक है। वहीं कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला।
1: कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को मंडियों में उड़द के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़े जबकि कुछ में नरमी देखने को मिली। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में उड़द के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जसदन मंडी में 14 जुलाई को उड़द का भाव रहा 5,500 रुपए, 15 जुलाई को इसके भाव में 1,250 रुपए का उछाल आया और भाव 6,750 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 14 जुलाई को यहां उड़द का भाव था 7,165 रुपए, 15 जुलाई को इसके सौदे 295 रुपए चढ़कर 7,460 रुपए पर हुए, जबकि मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में उड़द के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 14 जुलाई को उड़द का भाव रहा 4,501 रुपए, 15 जुलाई को इसके सौदों में 1,101 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 3,400 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते दो दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 15 जुलाई को उड़द 7,800 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो शुक्रवार को हरदोई मंडी में उड़द का भाव रहा 7,550 रुपए, महोबा मंडी में भाव रहा 5,480 रुपए, गोंडा मंडी में उड़द 7,400 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बदायूं मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 6,520 रुपए पर हुए। देश में इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज इस साल 5,30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 27,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बंपर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते दो महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है।
2: किसान भाइयों, अभी हमने अलग अलग जगह की मंडी भावों का रुख किया। किसान भाइयों, जैसा कि हम सुन रहे हैं उड़द की खेती, उड़द का भाव जिस तरीके जैसे कि अभी बना हुआ है, साथ ही आगे भी इसमें उछाल देखा जा सकता है। किसान भाइयों, अधिकतर हमारे किसान भाइयों ने अधिकतर अपने खेतों में बुआई कर ली है, और भी कहीं कहीं पर कुछ जगहें हैं जो जिन किसान भाइयों को अभी बुआई करना बाकी है। तो अगर कोई किसान उड़द की खेती करना चाहे तो वो अपना रुख उड़द की खेती की तरफ मोड़ सकता है। आइए जानते हैं उड़द से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातों को।
3: बिल्कुल, अगर हम उड़द की बात करते हैं तो उड़द के जो फंडामेंटल हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। अगर हम निर्यात की स्थिति भी देखते हैं तो निर्यात जो है वर्ष दर वर्ष हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो डिमांड है वो लगातार बनी हुई है, और गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी भी इसके लिए सपोर्टिव बनी हुई है, इसलिए आने वाले समय में जो है इसमें तेजी जारी रहेगी।
2: किसान साथियों, आइए जानते हैं क्या हमें अभी इन उड़द को बेच देना चाहिए या अभी हमें इसको भंडारण करके रखना चाहिए, और इसमें क्या इसे रखने से हमें आगे फायदा होगा या फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
3: जी बिल्कुल, अगर किसानों की अगर हम बात करते हैं तो किसानों के पास अगर भंडारण की क्षमता है तो आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर के पास में हमें यहाँ करंट भाव से जो है 5-7% तक की तेजी और देखने को मिल सकती है।
2: जिन जिन किसान भाइयों के पास अगर भंडारण की व्यवस्था है तो आने वाले समय के लिए ये हमारे लिए फायदे का सौदा बन सकता है। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिल्ली गीत को।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम पर। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। किसान साथियों, उड़द से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को अभी आपने जाना। अभी हम जानेंगे तिल्ली से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। उससे पहले आइए डालते हैं एक नज़र तिल्ली के मंडी भावों पर।
2: कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में तिल बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 14 जुलाई को काले तिल का भाव रहा 13,400 रुपए, 15 जुलाई को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव 13,475 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 14 जुलाई को तिल का भाव था 13,250 रुपए, 15 जुलाई को इसके सौदे 1,000 रुपए लुढ़क कर 12,250 रुपए पर हुए। वहीं जसदन मंडी में 14 जुलाई को सफेद तिल का भाव रहा 11,625 रुपए, 15 जुलाई को इसके सौदों में 125 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 11,750 रुपए। धोराजी मंडी में गुरुवार को सफेद तिल का भाव रहा 12,005 रुपए, शुक्रवार को इसके भाव में 125 रुपए की गिरावट आई और भाव 11,880 रुपए पर आ गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में बीते दो दिनों के दौरान तिल के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 15 जुलाई को तिल 8,860 रुपए पर बिकी। इस साल देश में तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ तिल की उपज बीते साल के मुकाबले 40,000 टन ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 8,57,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान तिल की पैदावार 8,17,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की

0: 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी।
1: किसान साथियों, अभी हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से मंडियों में तिल्ली भाव को जाना, अलग अलग मंडियों में क्या भाव हो रहा है, क्या भाव है अभी, इन सारी जानकारियों को अभी हमने सुना। आइए लेते हैं एक्सपर्ट की राय, आने वाले समय में क्या हमें तिल्ली को लेकर हो सकता है फायदा, या यह हमारे लिए घाटे का सौदा बन सकता है, आइए सुनते हैं।
2: बिल्कुल, अगर हम तिल की बात करते हैं तो मंडियों के अंदर जो आवक है वो सामान्य से हमें ज्यादा आती हुई दिखाई दे रही है। इसका उत्पादन भी जो है वर्ष दर वर्ष अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें ज्यादा ही दिखाई दिया है। लेकिन अगर हम निर्यात को देखते हैं और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम इसकी डिमांड देखते हैं तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें कम ही दिखाई दी है, इसलिए इसके भावों में हमें नरमी दिखाई दी है।
3: यानी जो उपज है पैदावार के मुकाबले जो बाजार मांग है वो इतनी अधिक नहीं है, और जैसा कि आपने बताया कि निर्यात भी इतना ज्यादा इसका दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम उपज के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या करना चाहिए किसानों को ऐसे में?
2: बिल्कुल, अगर हम इस स्थिति की हम बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में किसानों को इसमें बिकवाली ही करनी चाहिए। इसमें आंशिक बिकवाली जो है 2-5% तक की रह सकती है।
3: बिल्कुल, तो बिकवाली ही बेहतर रहेगा, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं। तो जिन किसानों ने तिल की फसल ली, जिनके पास तिल का स्टॉक है, उनके लिए बेहतर यही है कि इसे मंडियों में ले जाएं और आप बेच दें जो भाव मिल रहे हैं उसी पर। बढ़ते आगे और बात करते हैं हरी मिर्च के, नजर डालते हैं देश के विभिन्न मंडियों में कैसे रहे हरी मिर्च के भाव। शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ मंडी से, जहां पर हरी मिर्च का भाव रहा 1,500 रुपये। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भाव रहा 4,750 रुपये। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये और राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जानेंगे सोयाबीन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।

0: रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबवा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आ रहा है। किसान साथियों, आइए जानते हैं सोयाबीन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: वेजिटेबल सोयाबीन एक तरह की फलीदार सब्जी है। इसकी फली में दो या तीन बीज पाए जाते हैं। बीजों का आकार अनाज वाली सोयाबीन से थोड़ा बड़ा और कुछ अलग रंग का होता है। गोले वाली हरी बीन्स का उपयोग स्वादिष्ट पकी हुई सब्जियों के रूप में किया जाता है, जबकि सूखे बीजों का इस्तेमाल मूल्य वर्धित उत्पादों को बनाने में। वेजिटेबल सोयाबीन में शर्करा की मात्रा 75% से भी ज्यादा पाई जाती है। इसमें आसानी से पच जाने वाली प्रोटीन होती है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जरूरी फैटी एसिड, फॉस्फोरस, लोहा, कैल्शियम, जस्ता और थियामिन भी होता है। इसके अलावा ये राइबोफ्लेविन, विटामिन ई, आहार फाइबर और चीनी का बेहतरीन स्रोत है। पोषण से भरपूर होने की वजह से ही इसकी अपनी पहचान है। किसानों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए झारखंड और दूसरे राज्यों में इसकी खेती शुरू की गई। चंद्रकांत देशमुख कृषि व्यवसायी हैं। इनका गांव वारपुर महाराष्ट्र के परभणी तालुका में पड़ता है। यहीं पर उन्होंने 10 एकड़ जमीन पर स्वर्ण वसुंधरा बोई। अच्छी देखभाल और सही समय पर फसल काटने के बाद उन्हें प्रति एकड़ 15 क्विंटल हरी फली प्राप्त हुई। अनुभव बताते हैं कि एक एकड़ स्वर्ण वसुंधरा बोने पर कुल लागत 30,000 रुपए आती है। इसमें भूमि का पट्टा मूल्य, खेत की तैयारी, खाद और उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक और कटाई वगैरह पर आने वाले तमाम खर्च शामिल हैं। जब बीज बड़े होकर फली की चौड़ाई के 80-90% हिस्से को घेर लें, तो समझ लीजिए सब्जी के लिए सोयाबीन तैयार है और इसकी कटाई की जा सकती है। पहली कटाई बोने के 70-75 दिनों के बाद होती है। 15 क्विंटल प्रति एकड़ की फसल होने पर देशमुख की कुल आमदनी 3 लाख रुपए हुई। ऐसा तब है जब बाजार में फली का दाम 200 रुपए किलो हो। इस तरह एक एकड़ में शुद्ध लाभ 2,70,000 रुपए बैठता है। अगर आपको और ज्यादा कीमत चाहिए तो फिर हरी फली को प्रस्फुटित यानी ब्लेंच करना होगा। देशमुख ने -18 डिग्री सेल्सियस पर हरी फली का भंडारण किया। इस तापमान पर फली को 18 महीने तक संग्रहित किया जा सकता है। देशमुख 2 और 3 बीजों वाली प्रस्फुटित और फ्रोजन हरी फलियों को बाजार में 300 रुपए किलो के भाव बेचने में कामयाब रहे। सोयाबीन के बीजों को सुखाकर भी बेचा जा सकता है। इसका बाजार भाव 100-150 रुपए किलो होता है। अगर आप चाहें तो सूखे परिपक्व बीज से टोफू यानी सोया पनीर भी बना सकते हैं। स्वर्ण वसुंधरा के 1 क्विंटल अनाज से 225 किलो सोया पनीर बनता है, जिसमें 13,000 रुपए की लागत और 54,000 से भी ज्यादा का शुद्ध लाभ कमाया जा सकता है। इसके अलावा भुने हुए अनाज से अच्छी क्वालिटी का सत्तू बनता है। 8 घंटे तक पानी में भिगोने के बाद अनाज का सेवन पौष्टिक भोजन के रूप में भी किया जाता है। स्वर्ण वसुंधरा के अनाज से सोया दही, छेना, आइसक्रीम और गुलाब जामुन तैयार किए जा रहे हैं।
0: किसान साथियों, अभी आपने सोयाबीन के उत्तम बीज की किस्मों को जाना, अपने स्वर्ण वसुंधरा सोयाबीन को जाना, कैसे हम उससे दही बनाया जा सकता है, उससे खाद्यान्न की चीज़ें बनाई जा सकती है, उसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है जो हमारे लिए हम आसानी से जिसे पचा सकते हैं, उसे सोया पनीर बनाया जा सकता है और भी अन्य चीज़ें बनाई जा सकती है। किसान साथियों, जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आइए डालते हैं एक नज़र जुलाई के इस कृषि कैलेंडर के ऊपर।
2: ये मौसम टमाटर की हल्की सिंचाई के लिए अनुकूल है। खेत में नमी बनाए रखने के लिए 5 से 6 हल्की सिंचाई जरूरी है। फसल को घास पात से साफ करने के लिए 2 से 3 निराई गुड़ाई का कार्य करें। टमाटर के रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जमीन में दबा दें। फल छेदक और झुलसा रोग की निगरानी करें और बचाव हेतु उचित कीटनाशक का छिड़काव करें।
3: सोयाबीन का बोने के लिए उचित समय 25 जून से लेकर 7 जुलाई तक है और अभी भी किसान यदि लगाना चाहें तो, हालांकि उपज में कमी आएगी, देरी से बोने पर उपज में कमी आती है, ये 15 जुलाई तक लगा सकते हैं। यदि समय और प्रबंधन उचित हो तो उपज दे सकती है।
4: जी बिल्कुल, तो 7 जुलाई आपने कहा कि हमारे किसानों को कर लेनी चाहिए, लेकिन अभी किसी कारणवश अगर नहीं की गई है तो वो 15 जुलाई तक इसकी बुआई का काम कर सकते हैं। हालांकि उपज में जरूर कमी आ सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उचित प्रबंधन किया जाए। जी बिल्कुल, तो वो कौन कौन से उचित प्रबंधन है इनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डाल लेते हैं।

0: सोयाबीन यानी स्वादिष्ट, पौष्टिक और गुणों से भरपूर हर किसी को अच्छी लगती है। सोयाबीन भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है। इसमें लगभग 40% प्रोटीन, 20% तेल के साथ अनेक औषधीय गुण हैं। सोयाबीन का इस्तेमाल आज कई रूपों में होता है। यही कारण है कि आज हमारे किसान बड़ी तादाद में सोयाबीन की खेती कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: हल्दी में बहुत सारी किस्में जो हैं वो प्रचलित हैं, जैसे कि रोमा, सुरोमा, मेघा, राजेंद्र सोनिया। इसके अतिरिक्त स्थानीय किस्में भी हैं, क्योंकि हल्दी और अदरक जैसी फसलों में बीज की मात्रा काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो जो स्थानीय किस्में भी अगर अच्छी गुणवत्ता की हैं तो किसान भाई उनका भी प्रयोग कर सकते हैं।
3: जी बिल्कुल, तो ये तमाम हल्दी की किस्में हैं जिनका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं अगर वो अपनी फसल का अच्छा उत्पादन हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अगर हमारे किसान बुआई कर रहे हैं तो उससे पहले बीजोपचार किस प्रकार किया जाए?
2: हल्दी और अदरक दोनों में गठी सड़न का जो रोग है वो काफी प्रमुख है। हालांकि हल्दी में इसकी समस्या नहीं भी आती है, लेकिन अदरक में यह एक गंभीर समस्या है। तो बीज भंडारण के समय में भी इसी तरह का बीज उपचार किया जाता है, और बीज की खेत में रुपाई से पहले भी बीज गठियों को अच्छी तरह उपचारित करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इस उपचार के लिए डायथिन M45 0.25% तथा बेबिस्टीन 0.10% का घोल बनाकर और उसको जो है वो गठियों को उसमें 1 घंटे तक अच्छी तरह डुबो कर रखें तथा बाद में छाया में सुखाएं और उसके बाद ही इसका जो बिजाई है खेत में वो करें।
4: किसान भाइयों, ये जानते हैं अदरक की खेती हमें कब करनी चाहिए, कब हमें इसे लगाना चाहिए ताकि हमें उपयुक्त समय पर हम इसकी देखरेख कर सकते हैं और सही समय पर हम इस उपज को बाजार में बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा ले सके। तो आइए जानते हैं कब हमें इन्हें लगाना चाहिए, जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: वैसे तो पूरे भारतवर्ष में अदरक की बिजाई का जो समय है वो अप्रैल और मई महीने का रहता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा है उनमें जो है वो फरवरी माह में भी अदरक की जो बुआई है वो की जा सकती है, लेकिन ये सुनिश्चित होना चाहिए कि आने वाला जो गर्मी का मौसम होगा अप्रैल मई जून का महीना, इसमें सिंचाई की व्यवस्था हो,
3: सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। जैसे जनवरी के महीने में काफी ठंड पड़ती है,
2: जनवरी तो
3: उसमें कर सकते हैं क्या?
2: जनवरी में तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब टेम्परेचर या तापमान जो है वो काफी नीचे रहेगा तो उसकी जो अंकुरण है गठियों का वो नहीं होगा। इसलिए फरवरी माह के बाद, मध्य फरवरी के बाद जो है कुछ क्षेत्रों में दक्षिण भारत में खास करके इसकी बिजाई की जाती है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था का सुनिश्चित होना।
3: बिल्कुल, जैसे ये ओडिशा से बात कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं फरवरी,
2: जनवरी तो नहीं लेकिन फरवरी के
3: मध्य फरवरी से अगर आप करना चाहते हैं बुआई तो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा रवि जी कि सिंचाई की उचित व्यवस्था हो आपके इलाके में, तभी आप इसका चुनाव करें बुआई के लिए फरवरी मध्य के दौरान।
5: सोयाबीन की देरी की अवस्था में जो जल्दी पकने वाली जातियां हैं उनका चुनाव करना चाहिए, जैसे JS 95, JS 2034, JS 9305, जो जल्दी पकती है, मतलब 85 से 90 दिन में पकती है, उन जातियों का चुनाव करें। साथ ही बीज दर 25% बढ़ा लें, जो बीज दर उचित समय में बोते हैं उससे 25% अधिक बीज बोएं और बीज उपचार करके बोएं। बीज उपचार के लिए थायरम और कार्बेंडाजिम, 2 ग्राम थायरम लें और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम लें, इस तरह 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसका उपचार करें, या फिर थायरम प्लस कार्बोक्सिन नाम की दवाई है उसका भी 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। उसके बाद में आप यदि यहाँ पर पीला मोजेक आने की संभावना है वहाँ पर इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक दवाई से भी उपचारित करें।

0: जैसे थायोमेथॉक्सम है, या इसको 10 मिलीलीटर प्रति किलो बीज, या फिर इमिडाक्लोप्रिड दवाई है उसको 1.25 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, तत्पश्चात उसमें राइजोबियम एवं पीएसबी से उपचारित कर उसकी बोनी करना चाहिए
1: जी बिल्कुल,
0: जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन किसान
1: जी को बिल्कुल। तो ये कुछ जल्द पकने वाली किस्में हैं जिनका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं अगर वो सोयाबीन की बुआई करना चाहते हैं। साथ ही साथ जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि बीजोपचार करना बहुत जरूरी है, वरना आगे चलकर आपकी फसल जो है उसे काफी नुकसान पहुंच सकता है, गुणवत्ता पर काफी असर पड़ सकता है, जिससे उसकी क्वालिटी जो अगर कम हो जाएगी तो उसका मूल्य भी आपको कम ही मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप पहले ही तैयारियां करके रखें ताकि आपको बाद में कोई नुकसान ना झेलना पड़े।
0: सोयाबीन की बढ़वार के लिए सबसे प्रथम बात आती है पानी की। यदि बराबर वर्षा होती रहती है तो सोयाबीन की बढ़वार अधिक होती है, और बढ़वार नहीं होने का दूसरा कारण होता है कि पोषक तत्वों की कमी। यदि हम जो अनुशंसित मात्रा है सोयाबीन के लिए 25 किलो नत्रजन, 60 किलो स्फुर, 40 किलो पोटास एवं 20 किलो सल्फर गंधक की आवश्यकता होती है अच्छे उत्पादन के लिए, ये अनुशंसित मात्रा है और ये पोषक तत्व सोयाबीन के बोने के समय ही दिया जाना चाहिए। खड़ी फसल में कोई भी खाद का उपयोग न करें तो सोयाबीन की बढ़वार अधिक होती है।
1: जी बिल्कुल, सिंचाई का उचित ध्यान रखें, साथ ही साथ पोषक तत्व प्रबंधन जो है वो फसल की बढ़वार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसका ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, गठी सड़न रोग कैसे नियंत्रित किया जाए?
2: गठी सड़न, जैसा कि मैंने कहा कि अदरक की फसल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है
1: जी,
2: और इसका उपचार करने के लिए सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि बुआई से पहले जो है वो गठियों का उपचार करना, और इसी तरह से जैसे फसल को निकाला जाता है और बीज के लिए जो फसल रखनी है भंडारण से पहले भी उसी तरह का गठियों का उपचार किया जाना है
1: जी।
2: और अगर इस तरह की समस्या खड़ी फसल में खेत में आती है तो इसका या तो इसी घोल का ड्रेंचिंग करके, यानी कि पौधों की जड़ों में इसकी इस घोल की सिंचाई करें, या इसका छिड़काव जो है वो पौधों के ऊपर करें
1: जी।
2: विशेषकर पानी की निकासी का ध्यान रखें, क्योंकि वर्षा ऋतु में अगर पानी खेतों में रुकता है तो किसी भी तरह का कोई उपचार जो है वो काम नहीं आएगा, लेकिन पानी की निकासी पहले करना बहुत जरूरी है
1: जी। पानी की निकासी करना भी बेहद जरूरी है, साथ ही साथ जो आपने अभी उपचार बताए हैं वो करने भी बहुत जरूरी है, तभी जाकर ये जो रोग है, जो समस्या है, इसका समाधान आपको मिल पाएगा, इससे निजात आपको मिल पाएगा और आपकी जो फसल है वो एक स्वस्थ रूप में आपको मिल पाएगी, जिससे आपको सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा।
3: किसान साथियों, अगर हमारी खेती में खरपतवार अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, हमें कौन सी दवाई इसमें डालनी चाहिए, आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी को।
0: सोयाबीन की फसल जो खड़ी फसल है और 15 से 20 दिन की हो गई है, उसमें खरपतवार नाशक दवाइयों से हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम आप इमेजेतापीर नाम की दवाई है जिसको 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव करेंगे तो सभी प्रकार के खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा, जहाँ पर जिन खेतों में केवल सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं वहाँ पर किजोलोफापिथाइल नाम की दवाई है, फिनॉक्सीप्रोपिथाइल है, किजोलोफापीटेफुरिल है, ये दवाइयाँ 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे तो वहाँ पर सभी सक्रिय पत्ती वाली खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। यदि जिन खेतों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की अधिकता है वहाँ पर क्लोरीमुरान इथाइल नाम की दवाई है, इसकी मात्रा केवल 36 ग्राम प्रति हेक्टेयर है, इसका उपयोग यदि करेंगे आप तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाएंगे और सोयाबीन की फसल को खरपतवार से हानि नहीं होगी
1: जी। बिल्कुल, खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार किया जाए ये तो आपने बता दिया डॉक्टर बिल, और अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हम देख रहे हैं कि काफी जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश भी हमें देखने को मिल रही है, तो जो ज्यादा भारी बारिश वाले क्षेत्र हैं वहां पर अगर हमारे किसानों ने सोयाबीन की फसल लगाई है तो क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है उन्हें?
0: सोयाबीन की फसल में अधिक बारिश से ज्यादा नुकसान होता है बजाय सूखे के तुलना में
1: जी,
0: तो जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है सोयाबीन की फसल में। जहाँ पर भी जल जमाव होता है, जिन खेतों में जल जमाव होता है वहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था अवश्य करें। और यदि भविष्य में इस बार यदि आपने फ्लैट बेड पे समतल जमीन पर सोयाबीन बोई है तो अगले वर्ष से सोयाबीन को बोने की पद्धति ब्रॉड बेड फरो या रिच फरो पद्धति से यदि सोयाबीन को लगाएंगे तो जब अधिक बारिश होती है तो फरो से पूरा अधिक मात्रा वाला पानी बाहर निकल जाता है, खेत से बाहर हो जाता है, जिससे सोयाबीन को हानि नहीं होती है। और कम पानी की स्थिति में, कम बारिश होती है तो उस स्थिति में ये कूड़ में पानी जमा हो जाता है और सोयाबीन की फसल को बराबर मात्रा में पानी मिलता रहता है। इसलिए सोयाबीन की फसल को दोनों ही स्थितियों में ये पद्धतियां लाभप्रद है।
1: जी बिल्कुल, चाहे ज्यादा बारिश हो या फिर कम बारिश हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया।
3: किसान साथियों, आइए जानते हैं अगर हमारा सोयाबीन क्यों नहीं बढ़ रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इसका क्या कारण हो सकता है।
0: सोयाबीन की फसल को, वैसे सोयाबीन की फसल को पानी कम लगता है, ये फसल 450 से लेकर 750 मिलीमीटर बारिश में अच्छी होती है, परंतु इसको लगातार, मतलब बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं वो अच्छा होना चाहिए। यदि समय समय पर बारिश होती रहती है तो सोयाबीन की बढ़वार अधिक होती है, सूखे की स्थिति में इसकी बढ़वार रुक जाती है। इसलिए यदि जिन किसान भाइयों के पास में सिंचाई की व्यवस्था है तो सूखे की स्थिति में सिंचाई कर सकते हैं, जिससे कि सोयाबीन की बढ़वार अधिक से अधिक मिल सके उनको।
1: जी, सिंचाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है अगर हम सोयाबीन की खेती की बात करते हैं तो। जैसे अभी बरसात का मौसम है, ऐसे में तो पानी उचित मात्रा में मौजूद होता है जिसके चलते नमी जो है वो मिट्टी में बरकरार रहती है। लेकिन जैसे अभी हम बात करें कि जहां पर बारिश बहुत ही कम है, तो ऐसे स्थिति में क्या करें किसान?
0: ऐसी स्थिति में किसानों को यदि सिंचाई नहीं कर सकते हैं तो उस स्थिति में उसमें इंटरकल्टर कल्टीवेशन ऑपरेशंस या भूमि की गुड़ाई करना चाहिए, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी तो जो जमीन में नमी है उसकी हानि नहीं होगी और नमी संरक्षित रहेगी, जो नमी पौधे को मिलेगी और सोयाबीन की बढ़वार रुकेगी नहीं।
1: जी।
0: या फिर बहुत लंबा अंतराल हो गया सूखे का, तो ऐसी स्थिति में सोयाबीन में एंटी ट्रांसपेरेंट्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, इसका 1% घोल बना के छिड़काव कर देंगे तो सोयाबीन में को कम पानी में सहनशीलता आ जाएगी और पौधे में हानि, मतलब सोयाबीन की फसल में हानि नहीं होगी। तो इस तरह से हम कम पानी
1: वाले क्षेत्रों में भी ये उपाय कर सकते हैं हमारे किसान, जिससे उनकी सोयाबीन की जो फसल है उसकी बढ़वार अच्छी बनी रहे। बिल्कुल
3: किसान साथियों, आइए जानते हैं अगर हमारे सोयाबीन की पत्ती है वो कटी फट्टी से आ रही है या फिर पूरी पत्ती नहीं आ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है, आइए जानते हैं।
0: इस समय सोयाबीन की फसल करीब करीब 15 से लेकर 25 दिन की फसल हो चुकी है खेतों में, तो सर्वप्रथम जो सोयाबीन में कीट लगता है वो ब्लू बीटल नाम का कीट लगता है, जो पहली, जब पौधा छोटा होता है उस समय लगता है और पहली पत्ती को खा जाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए हम यदि खेत में ब्लू बीटल नाम का कीड़ा है, नीला भ्रंग जिसको बोलते हैं, तो वो यदि उपस्थित हो खेत में तो उसमें क्विनोलफास नाम की दवाई 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें तो वो कीट नियंत्रण हो जाएगा। जहाँ पर सोयाबीन फसल बड़ी हो गई है, 20 दिन से ऊपर की होने लगी है, तो वहाँ पर जो हरी इल्ली आने की संभावना बढ़ गई है, जो पत्तियाँ खाती है, मतलब इस समय पर्णभक्षी कीट ज़्यादा आते हैं, तो उनका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। और जितनी जल्दी हम इनका नियंत्रण कर लेंगे तो अच्छी, मतलब कम पावरफुल दवाई से भी इनका कंट्रोल हो जाता है, जो पुरानी दवाइयाँ उनसे भी कंट्रोल हो जाता है, तो उनका छिड़काव कर लें। या जिन किसानों के यहाँ 20 दिन की फसल हो रही है तो वहाँ पर खरपतवार नाशक और कीटनाशक दवाइयों को मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे काश्त में कमी आती है और दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, खरपतवार नियंत्रण भी हो जाता है और कीट नियंत्रण भी हो जाता है।
1: तो वही बात हो गई, एक पंथ और दो काज
0: हो,
1: खरपतवार नियंत्रण भी हो जाएगा, साथ ही साथ कीटों से निजात जो है तो वो भी मिल पाएगा।
0: इसके लिए आप इमाजेता पीर जो रसायन है वो खरपतवार नाशक है और क्लोरा इंट्रीनिलीपोर नाम की दवाई है, वो दवाई का एक साथ मिलकर प्रयोग करेंगे तो दोनों ही काम एक साथ हो जाएंगे। या दूसरी दवाई आपके इमिडा क्लोरप्रीड है, उसको भी उपयोग कर सकते हैं इस खरपतवार नाशक दवाई से, या केजोलोफॉफिथाइल नामक की दवाई है जो खरपतवार नाशक, इन दोनों कीटनाशक दवाइयों को मिलाकर इनका प्रयोग कर सकते हैं तो दोनों काम एक साथ हो सकते हैं।
3: किसान साथियों, अभी आपने खरपतवार नाशक दवाइयों को लेकर सुना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को आपने सुना। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं ये छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा भीली गीत।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: एनिक।
1: ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका। आइए जानते हैं बरसात के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हमारी फसल की हमें देखरेख करनी चाहिए। आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: लगभग सभी फसलों में अगर हम धान को छोड़ें तो वर्षा ऋतु में जो बहुत ज़्यादा बारिश या किसी अन्य कारण से जो भी बारिश का पानी खेत में रुकता है उसकी सही निकासी बहुत ज़रूरी है। अदरक और हल्दी की फसल में तो विशेषकर जो क्यारियां हैं वो जमीन से ऊंची उठी हुई बनाई जाती हैं तथा क्यारियों के दोनों तरफ नालियों का जो है वो प्रबंध किया जाता है ताकि अत्यधिक जो पानी है या जल भराव है वो उसकी सही निकासी हो सके। और ये बहुत ही जरूरी है पूरी फसल की अगर हम प्रबंधन को देखें कि जल की जो निकासी है उसका उचित प्रबंध हो।
3: जी, जल निकासी का प्रबंधन पूर्ण रूप से होना जरूरी है ताकि हमारी जो फसलें हैं, चाहे हम बात कर लें हल्दी की, अदरक की या फिर अन्य फसलों की हम बात कर लें, उनकी गुणवत्ता भी काफी अच्छी बनी रहती है और बढ़वार जो है, पैदावार जो है वो भी काफी अच्छी बनी रहती है, क्योंकि अधिकता पानी की नुकसान भी पहुंचा सकती है हमारी फसलों को,
2: पहुंचाती है।
3: जी बिल्कुल। अब अगर हम उर्वरकों की बात कर लें डॉक्टर शर्मा, तो उर्वरकों को कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए अगर हम बात करें हल्दी और अदरक दोनों फसलों की?
2: हल्दी और अदरक दोनों ही फसलों के लिए गोबर की गली सड़ी जो देसी खाद है वो लगभग 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से लेकर 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की मात्रा में डालनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मिट्टी की जांच के आधार पर नत्रजन, फास्फोरस और पोटासियम, इन खादों की जो मात्रा है वो भी डालनी चाहिए। और हल्दी के लिए नाइट्रोजन 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस भी 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास जो है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा अदरक की फसल के लिए नाइट्रोजन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा पोटास जो है वो भी 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सामान्यता इनकी सिफारिश की जाती है।
3: जी, तो ये इन्हें कब कब देना चाहिए, कितने समय के अंतराल में?
2: ये सारी जो खादें हैं इनको खेत तैयार करते समय ही डाला जाता है। सिर्फ नाइट्रोजन एक ऐसी खाद है जिसको 3 बराबर भागों में बांटकर पहली खेत की तैयारी के समय में और बाकी के 2 भाग जो हैं वो बराबर भाग एक एक माह के अंतराल पर निराई गुड़ाई के समय पर दिए जाते हैं।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम। आज हमने सोयाबीन को लेकर बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, इसकी उन्नत बीजों के बारे में, उन्नत किस्मों के बारे में, साथ ही समय समय पर हमें इसकी कैसे देखरेख करनी चाहिए, हमें कौन से उर्वरक डालने चाहिए, कौन सी दवाई इसमें डालनी चाहिए आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की। किसान साथियों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांट्याबिल 90.8 FM छाबवा की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्याबिल, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: Vision is to provide a platform for gifted singers who have yet to receive the recognition they deserve. We aim to promote emerging singers from every corner of India and beyond, giving them the opportunity to shine on a global stage. Sing, shine, and become a star.
1: संगीत के सदाबहार नगमों के प्रोग्राम में मैं आपकी दोस्त साक्षी आप सभी श्रोताओं का आज के कलाकार रीजनल प्रोग्राम में स्वागत करते हूँ। आज एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ मराठी गीतों का खजाना और आज मेरे साथ है डॉक्टर मीना जी जो एक बहुत ही सुरीली आवाज की प्रतिभा है। इनके बारे में जानने के लिए आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे और इनके गाए हुए मराठी गीतों का आनंद लेंगे। तो डॉक्टर मीना जी आपका इस रीजनल मराठी प्रोग्राम में मैं स्वागत करती हूँ।
2: थैंक यू साक्षी जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज इस रेडियो प्रोग्राम में आपके साथ हूँ और सब झाबुआ वासियों को भी मेरा प्रणाम
1: जी। तो मीना जी आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि सभी आपको अच्छे से जान सके पहचान सके।
2: ओके, मैं पुणे में रहती हूँ, आंखों की डॉक्टर हूँ और गाने का शौक है, तो बस इसीलिए आज आपके सामने हूँ।
1: बहुत खूब बहुत खूब। तो आपने सुना के डॉक्टर मीना जी जो है जो आंखों के डॉक्टर है और साथ ही में सिंगिंग इनकी हॉबी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस सुरमई शाम का डॉक्टर मीना जी के गाए हुए एक खूबसूरत मराठी गीत के साथ।

0: खूप छान, खूप मस्त गायलत तुम्ही.
1: थँक्यू. धन्यवाद.
0: चलिए चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपके विचारों को सभी के सामने लाते हैं. तो मुझे बताइए, क्या अधिक महत्वपूर्ण है, सच बोलना, चुप रहना या झूठ बोलना? यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो आप क्या करेंगे?
1: अब इस सवाल का जवाब मैं सच दूं या झूठ बोलूं या चुप रह जाऊं, समझ नहीं आ रहा है. एक्चुअली मेरा मानना है कि परिस्थितियों को देखकर समझदारी से काम लेना चाहिए. मतलब हम जबकि मेरा मानना ऐसे ही है कि ईमानदारी एक मौलिक मूल्य है, तो सत्य कथन की विधि और समय ये बहुत मायने रखते हैं. क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी हो सकती है और कभी कभी करुणा के साथ दिया हुआ स्पष्टवादिता सही विकल्प हो सकता है. पर अन्य समय जब बोलने से कोई लाभ नहीं होता और सामने वाले का या अपना अनावश्यक नुकसान हो सकता है, तो मौन रहना अधिक नैतिक विकल्प हो सकता है. तो आप बाद में आप देख सकते हैं कि भाई कौन सा बेहतर क्षण है या कोई तरीका है कि जिसमें आप सच बोल के बाद में समझा सकते हो. तो उस परिस्थिति को जानकर ही ये निर्णय लेना चाहिए, मेरा मानना है.
0: जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा आपने इस सवाल का जवाब दिया. तो जैसे कि आप सभी ने सुना, परिस्थिति देखकर समझदारी को अपनाना, यही सबसे बड़ी समझदारी है. ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर मीना जी ने हमें बताई. तो आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा सॉन्ग डॉक्टर मीना जी की आवाज में.

0: वाह, अतिशय सुंदर गायलत तुम्ही।
1: थैंक्स।
0: चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप हमें बताइए, यदि आपको किसी सेलिब्रिटी की तरह जीने का मौका मिले तो क्या होगा और आप किसकी तरह जीना चाहेंगे?
1: अभी वैसे तो बहुत सारे हैं जिनको मैं फॉलो करना चाहूंगी, लेकिन फिर भी एक नाम मेरे सामने है, सुधा मूर्ति जी,
0: सुधा
1: जो
0: मूर्ति जी,
1: इंडियन
0: अरे वाह
1: एजुकेटर है, सेलिब्रिटी ऑथर है,
0: जी जी
1: फिलैंथ्रोपिस्ट है, जिसको मतलब परोपकारी है, और वो फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ इंफोसिस फाउंडेशन उनका है। तो बहुत
0: जी
1: सारा
0: जी
1: पैसा होकर भी वो बहुत सिंपल रहती है, कॉटन
0: यस
1: साड़ी, सिंपल रहना, ट्रैवल्स इकोनॉमिक क्लास में जाएगी, मॉडर्स्ट लिविंग स्टाइल है जो मुझे बहुत ना अट्रैक्ट करता है। समाज सेवा काफी करती है, जैसे गांव में टॉयलेट्स बांधना, एजुकेशन इनिशिएटिव लेती है, लाइब्रेरी, किताबें बहुत सारी लिखी हुई है इंग्लिश में, फिर अंग्रेजी में और मराठी में और कन्नड़ा में भी। मराठी में उनका एक ही है मेरे ख्याल से अस्तित्व करके, और उनकी एक किताब थी रून रून रून जैसे, मतलब कन्नड़ा में है वो, जिसपे मराठी मूवी उन्होंने डायरेक्ट किया था नीतीश भारद्वाज ने, पितृ ऋण करके, जो मैंने देखी हुई है वो फिल्म, तो
0: जी जी
1: बहुत ही सुंदर फिल्म थी वो 2013 में, और उनको पद्मश्री भी मिला था 2006 में, पद्म भूषण भी मिला है 2023 में। तो उनका बहुत ही ऐसे मतलब शी इज अ सेलिब्रिटी फॉर मी, बट सिंपल लाइफ स्टाइल जो मैं फॉलो करना चाहूंगी।
0: बहुत बहुत ही अच्छा जवाब और बहुत ही अच्छा आपने ये एग्जाम्पल दिया। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग की जो प्रतिभा रही है, सुधा मूर्ति जी की तरह डॉक्टर मीना जी जीना चाहेंगे। बहुत खूब। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना डॉक्टर मीना जी की आवाज में।

0: बहुत खूब खूब छान गायलत तुम्ही। मीना जी, क्या आप हमें अपनी किसी अच्छी या बुरी आदत के बारे में बताना चाहेंगे?
1: अब अच्छी आदत अगर सोचो तो मुझे कहीं भी कचरा डालना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब अगर मैं चिप्स भी खा
0: अच्छा।
1: लूं तो उसका पैकेट मैं कहीं रास्ते पे नहीं फेंकूंगी। अगर वहां पे मुझे कचरे का डिब्बा नहीं दिखा तो मैं उसको पर्स में डाल के घर लेके आती हूँ और
0: जी
1: घर के कचरे के पेटी में डालूंगी। ऐसा ही मतलब वो

0: तो क्यों हम ऐसे बाहर में कचरा डालते हैं, उसको
1: बिल्कुल
0: गंदा
1: बिल्कुल.
0: करते हैं? तो ये नहीं, तो ये एक अच्छी आदत मेरे, मैं जिस पे मैं प्राउड करती हूँ, कि फ्री फील
1: बहुत
0: करती हूँ
1: बहुत
0: प्राउड.
1: अच्छे.
0: और अगर मेरी बुरी आदत, आई डोंट नो, मैं उसको मैं बुरी कहूँ या ये, क्योंकि आई रिस्पेक्ट टाइम. अगर मुझे टाइम, मतलब टाइम से वो होनी चाहिए वो चीज, लेकिन उसमें ऐसा है ना कि मैं वही एक्सपेक्ट करती हूँ दूसरे से, तो अगर वो सामने वाला वैसे नहीं करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, या मैं नाराज हो जाती हूँ, या बेचैन हो जाती हूँ, मेरा मूड ऑफ हो जाता है. किसी को मैंने लंच पे 12:30 बजे बुलाया, लेकिन वो अगर 1 बजे पहुंचे तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है. तो ये मेरे ख्याल से दूसरे से वो अपेक्षा करना शायद बुरी आदत होगी मेरी, लेकिन अभी हूं तो हूं, ऐसी हूँ, बस इतना कहना
1: आपकी
0: चाहूंगी.
1: अच्छी और बुरी आदतें दोनों भी बहुत अच्छी है. तो चलिए हम एक और खूबसूरत गीत सुनते हैं डॉक्टर मीना जी की आवाज में.

0: एकदम मस्त, बहुत प्यारा गाया आपने।
1: थैंक
0: हाँ तो मीना जी, वैसे आप तो एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, लेकिन आपकी रुचि किस में है? कोई व्यक्तित्व, कोई आदत या कोई शौक?
1: यू। ये तो आपने अच्छा से कहा कि मेरी गाने में बहुत रुचि है। मुझे कभी भी बोलो तो मैं गाना शुरू कर दूं। और दूसरी एक आदत है खाने की
0: अरे
1: तो
0: वाह,
1: गाने के साथ खाने, और उसमें भी वो मच्छी मटन जहां दिखेगी वहां मीना जरूर पहुंचेगी। तो वो
0: अरे
1: एक
0: बाप रे,
1: बहुत अच्छा शौक मुझे है। और पढ़ने का भी बचपन में बहुत काफी शौक था, लेकिन बीच में वो मेडिकल कॉलेज में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के वो दूसरा वाला पढ़ना थोड़ा कम हो गया था। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने फिर से शुरू किया है। अभी मराठी किताब पढ़ रही
0: अच्छा
1: हूँ, जस्ट आज ही खत्म की। तो वैसे पढ़ने का भी मुझे बहुत शौक है, कहना चाहूंगी।
0: क्या बात है। तो जैसे कि आप सभी ने सुना, डॉक्टर मीना जी जो है वो खाना और गाना इसमें अपनी सबसे बड़ी रुचि समझती है। तो चलिए एक और खूबसूरत गाना हम सुनते हैं मीना जी की आवाज में।

0: मस्त, खूब भारी गाय लत तुम्हें।
1: धन्यवाद।
0: मीना जी मुझे बताइए, आपको ट्रैवलिंग करना तो पसंद है ना,
1: ऑफ कोर्स यस।
0: तो हमें बताइए आपकी यात्रा सूची में वो कौन सी जगह है जहां आप जाना पसंद करेंगे?
1: जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे खाने का तो बहुत शौक है, तो मैंने
0: जी
1: इंदौर इंदौर के बारे में बहुत सुना है, उसके चटपटे खाने के मैंने बहुत सुना है, तो वहां
0: अरे
1: मैं
0: वाह,
1: जरूर जाना चाहूंगी। मैं अभी तक नहीं गई हूँ, वहां के पोहे जिलेबी चटपटा खाना वो टेस्ट करना चाहती हूँ। और
0: वाह
1: उसको
0: वाह,
1: लगातार 7 साल तक क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है, तो वहां के
0: जी
1: लोगों ने
0: जी
1: ऐसे
0: यस,
1: क्या कैसे उनको मतलब उसको क्लीन रखा है, कैसे उनका लाइफस्टाइल है, वो मुझे देखना है जाके। वहाँ के लोग कैसे इस आदत अपने आदत को बदल के शहर को साफ रखते हैं वो देखना है। फिर वहाँ का राजवाड़ा का वैभव, 56 दुकान का फूड, रात में वो सराफे में चाट पैटे शिकंजी का मजा लेना है। फिर खजराना का गणेश मंदिर है वहाँ वो देखना है, और इंदौर के पास जो उज्जैन है वहाँ पे श्री महाकाल का मंदिर है, वहाँ भी जाना है। तो
0: जी
1: ये तो मेरा डेफिनेटली मेरा विश है कि मैं जाऊँ एक बार जरूर।
0: जी जी जी बिल्कुल, और ये आपकी विश जल्दी से जल्दी पूरी हो। तो
1: थैंक
0: जैसे कि आप सबने सुना, मीना जी जो है वो इंदौर शहर से काफी ज्यादा रुचि रखती है, वहां के शहर, वहां का खाना, इन सभी का वो मजा लेना चाहती है। तो आइए हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा मराठी गाना डॉक्टर मीना जी की आवाज में।

0: ब्रिलियंट सिंगिंग, बहुत बहुत प्यारा गाया आपने।
1: शुक्रिया।
0: आपके विचारों के बारे में थोड़ा और जानने के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमें बताइए क्या अधिक सुंदर है, प्यार करना या प्यार पाना?
1: मेरे ख्याल से दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर है। देखो, स्वस्थ संबंध में दोनों की जरूरत होती है। प्यार
0: जी
1: करोगे तभी तो पाओगे। अगर मैं कहूँ कि सब मुझसे प्यार करे लेकिन मैं किसी को नहीं पूछूंगी तो फिर क्या मजा उसमें, तो मिलेगा नहीं। क्योंकि प्यार ऐसा नहीं है जो बाजार में मिलता है, जाके खरीद लो।
0: जी सच में बहुत
1: प्यार करने से, प्रेम करने से हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, उससे संबंध मजबूत होते हैं और खुद को एक बहुत आनंद, खुशी जो मिलती है प्यार करने से, वो एक बहुत अलग ही है। और प्यार पाने में वो भी एक भाग्य की बात है किसी से प्यार पाना, और उसमें हम सुरक्षित महसूस करते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता है किसी का प्यार हमें मिलता है। तो मेरे ख्याल से दोनों में कंपैरिजन तो नहीं, दोनों मेरे लिए तो इक्वली इम्पोर्टेंट है और अधिक सुंदर है।
0: बहुत बहुत ही सटीक जवाब। तो जैसे कि आप सभी ने सुना, डॉक्टर मीना जी का कहना है कि प्यार दोगे तो ही प्यार पाओगे। सच में यह बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया है। तो आइए हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और मराठी गाना डॉक्टर मीना जी की आवाज में।

0: बहुत बहुत बहुत ही प्यारी सिंगिंग। तुमिरा जी, अपने भाई बहनों के बारे में हमें बताइए, आप किसके साथ सहज महसूस करते हैं और किसके साथ बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं करते हैं?
1: मेरा एक भाई है जो 7 साल छोटा है मुझसे, अमेरिका में
0: अच्छा।
1: है वो, और वो बहुत बातूनी है, मेहनती भी उतना ही है। और मुझे मतलब जबकि वो मेरे से 7 साल छोटा है, लेकिन वो मुझे छोटी बहन की तरह प्यार देता है। सब कुछ मेरे लिए मतलब बहुत प्यार से देखता है। और उसके इतने सारे दोस्त भी है ना, वर्ल्ड में किसी भी कोने में आप जाओ, उसको कोई ना कोई पहचान वाला उसका रहता ही है। उसका स्वभाव ऐसे है, तो जितना प्यार वो सबसे करता है उतना मेरे से भी बहुत प्यार करता है वो। और हमारा ज्यादा अच्छा जमता था, लाइक सहज हम बहुत क्लोज भी थे, है अभी भी। और मेरे दिवाली का गिफ्ट उसने मुझे कार गिफ्ट किया था, तो बहुत मेरे भी करता है वो। बहन थी, अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो वो तो वो दिखने में भी बहुत सुंदर, मेरे से बहुत ज्यादा सुंदर, गाने में मेरे से ज्यादा मधुर, और पापा की भी बहुत मेरे से ज्यादा लाडली। तो वो मैं प्राउड भी फील करती थी कि मेरी इतनी सुंदर बहन जो इतनी सुंदर गाती भी है, सबकी प्यारी भी है। और थोड़ी ईर्ष्या भी थी मुझे कि यू नो सब कुछ उसे को अच्छा मिला मुझे तो थोड़ा
0: जी,
1: सा
0: वो थोड़ा सा होता है।
1: झगड़े ज्यादा, हाँ वो थोड़ा झगड़े हम में ज्यादा थे। जैसे मेरे और मेरे भाई में कभी नहीं झगड़े, लेकिन मेरे और मेरे सिस्टर में होते थे। तो ऐसे है, बट या प्यार भी बहुत ही था दोनों में, लेकिन अब वो नहीं है तो बस उसकी यादें हैं। और मैंने अपनी बेटी को रूप में, मतलब मेरे सिस्टर को मैं जान मतलब मानती हूँ कि वो मेरे बेटी के रूप में मेरे साथ है। तो मैंने बेटी को संगीत विशारद किया, उसका भी मुझे सुख मिल रहा है, अब आई एम वेरी हैप्पी।
0: क्या बात है, बहुत बहुत ही अच्छा। आइए हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत डॉक्टर मीना जी की आवाज में।

0: मस्त, खूप छान गायलत तुम्ही. मीना जी, हमें बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना आप बिल्कुल भी नहीं रह सकती?
1: ये बहुत टफ क्वेश्चन पूछा आपने.
0: जी
1: मतलब अगर हम भौतिक आवश्यकता को बाजू में रख दे, जैसे हवा, पानी, भोजन, आश्रय, कोई भी नहीं उनके बिना जी सकता, उनको
0: जी
1: छोड़े तो मैं समझिए कि कनेक्शन, जो धागे एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं, उसके बिना जीना मुश्किल होगा. जैसे अपने धागे अपने परिवार के साथ है, अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ है, कम्युनिटी के साथ है, समाज के साथ जो अपने धागे बंधे हुए, क्योंकि हम लोग समाज जीवी प्राणी है, मनुष्य ये है समाज जीवी प्राणी है, तो हम अकेले नहीं रह सकते. अकेलापन महसूस होगा अगर हम ये धागे टूट जाए. तो कनेक्शन इज अ थिंग विच आई कांट लिव विदाउट.
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छा जवाब इस सवाल का.
1: थैंक यू.
0: तो आइए एक और खूबसूरत गाना हम सुनते हैं.

0: खूब मस्त, खूब छान गायलो तुम्ही। एक और प्यारा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ऐसे तीन नैतिक नियम क्या हैं जिन्हें आप कभी नहीं तोड़ेंगे?
1: मैं कहूंगी कि अहिंसा, मतलब किसी को भी शारीरिक या मानसिक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहूंगी मैं, मतलब वो नहीं कर सकती। एंड दूसरा हुआ आस्था, जैसे ट्रीट अदर्स विथ काइंडनेस, एम्पथी, जैसे सम्मान, दूसरों का रिस्पेक्ट किया जाए, उनका कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी बिलीफ हो, लेकिन दूसरे को विश्वास और सम्मान का मैं पालन जरूर करना चाहूंगी, वो मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। और तीसरा मैं कहूंगी जैसे मतलब पक्षपात से मुक्त होकर निर्णय लेना, जैसे सभी के साथ न्याय के साथ, ऐसे नहीं कि भाई इसके एक के ज्यादा करीब तो दूसरे के लिए मैं अच्छा निर्णय नहीं लूंगी, ऐसा कुछ नहीं। निरपेक्षता जो बोलते हैं ना, निपक्षता, तो वो मैं कभी नहीं बोलना चाहूंगी,
0: बहुत
1: मेरा
0: बहुत
1: मानना।
0: बहुत। तो जैसे कि आपने सुना कि वो तीन नियम जो है जो डॉक्टर मीरा जी बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहेंगे, तो उसमें है अहिंसा, आस्था और सबके साथ न्याय से रहना। बहुत ही सटीक जवाब इस क्वेश्चन का। तो आइए हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गाना हम सुनते हैं डॉक्टर मीरा जी की आवाज में।

0: खूब मस्त, खूब छान गायले तुम्ही। हाँ, तो मीना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं नितिन सर, समीर सर और साक्षी आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी, और मुझे सारे मेरे सारे सुनने वालों का भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद मीना जी, आप सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अभी विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और खूबसूरत आवाज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: So friends, how did you enjoy our program? Share your feedback with us and stay tuned. We'll be back soon with another rising talent.

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। आज के कलाकार में आज जो मेहमान हमारे साथ है, जब आप उनको जानेंगे, उनके गायकी सुनेंगे, उनके म्यूजिक को सुनेंगे, उनके पैशन को जानेंगे, तो दोस्तों अपने ऊपर भी आपको घमंड हो आएगा कि किन से मुलाकात हुई आज। जिंदगी ने एक और एहसान कर दिया हम पर, राजेश्वरी जी से मिलाकर। तो आज हमारी मेहमान है राजेश्वरी जी। मैं राजेश्वरी जी का वेलकम करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि राजेश्वरी जी हमारे सब सुनने वालों को जो आज आपको सुन रहे हैं, उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ना, आप कौन हैं और कहाँ हैं आप?
1: नमस्कार समीर जी, मेरा नाम राजेश्वरी दोडमनी है, मैं कर्नाटका बैंगलोर से हूँ। मेरी मातृभाषा कन्नड़ा है। पहले तो मैं सबसे पहले रेडियो SN के समीर जी और नितिन जी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे नॉन सिंगिंग सिंगर्स को भी आप लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने गानों को सुनाने के लिए और हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात, मैं सारे श्रोताओं को भी धन्यवाद बोलना चाहूंगी, क्योंकि हमारे कॉन्वर्सेशन को सुनने के लिए, और मैं जैसे भी गाती हूँ हमारे गानों को सुनने के लिए आप लोग टाइम निकाल के बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, मीन्स अ लॉट। मैं अपने बारे में, मैं एक मूलतः एक शिक्षिका हूँ। पिछले 22 साल से मैं शिक्षण क्षेत्र में ही हूँ।
0: एक मिनट रुकना राजेश्वरी जी, अभी तो आपने कहा था कि आपको हिंदी में प्रॉब्लम है, कितनी बढ़िया तो हिंदी बोल रहे हो यार आप, अमेजिंगली ब्यूटीफुल शिक्षिका और मूलता, क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। प्लीज गो ऑन।
1: थैंक यू सो मच फॉर बूस्टिंग माय कॉन्फिडेंस। या तो इसी क्षेत्र में हूँ मैं पिछले 22 साल से, और भगवान की कृपा और मेरी माता पिता के आशीर्वाद से मैंने खुद के एक पाठशाला भी खोली है बैंगलोर में ही। अभी इस साल वो 18वां साल शुरू करेगा, एकेडमिक ईयर शुरू करने वाला है। और तो बच्चों को पढ़ाना और बच्चों की व्यक्तित्व विकसन के लिए एक शिक्षक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैं मरते दम तक एक इस फील्ड से ही जुड़ी रहना चाहूंगी। तो ये है मेरे बारे में। और दूसरी बात, मैं दूरदर्शन में न्यूज रीडर हुआ करती थी, और अब भी जब भी वक्त मिलता है तो मैं चाहती हूँ, और पहले इंग्लिश और कन्नड़ा दोनों न्यूज पढ़ती थी यहाँ बैंगलोर में, और अब जब टाइम मिलता है, जब वक्त निकाल सकती हूँ, तब मैं न्यूज या लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल का रिव्यू जो होता है वो पढ़ने के लिए जाती हूँ। सो ये है मेरे बारे में।
0: ओके, सो जैसा राजेश्वरी जी अभी अभी आपने बताया कि आप एक शिक्षिका हैं, टीचर हैं, अब इस बात को सुनकर, इस आपके इंट्रोडक्शन को सुनकर मेरे दिमाग में तो बीसियों सवाल आ रहे हैं, विच आई वुड लाइक टू आस्क यू, आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑल दीज विद यू, बिकॉज हमारे सुनने वालों में से भी बहुत लोग टीचर होंगे। बट चलिए अभी आपके संगीत को सुनने के लिए

पहले आपके इन गीतों का लुत्फ उठाते हैं, आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं, एंड देन आई विल कम बैक ऑन दोस क्वेश्चंस. आपने जो सवाल उठाए, आपने जो मतलब बात कही कि आप शिक्षिका हैं, वहां पर हम लोग वापस आएंगे.

0: बहुत खूब।
1: तो दोस्तों, आपने राजेश्वरी जी के गीतों को सुन लिया, अब चलो उनके बारे में जानते हुए उनके विचारों को समझते हैं। 18 साल, 18 years she had been having this school out there in Bangalore, so that is very very serious। 18 सालों से बच्चों को पढ़ाना कोई एक passionate इंसान ही कर सकता है। so she is a teacher, I am sure, teacher नहीं, आप तो शायद principal या director होंगे ना वहाँ।
2: हाँ, बट मैं खुद को टीचर ही बुलाना चाहूंगी, क्योंकि मैं टीचर ही आइडेंटिफाई करती हूँ खुद को।
1: That's damn
2: प्रिंसिपल वो सब बाद में आ गया, लेकिन मैं फ्रॉम द हार्ट आई एम अ टीचर।
1: That's quite damn your। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ मैम कि बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है, बच्चों को पढ़ाना एक शिक्षक का काम होता है, यानी कि उसको रास्ता दिखाना। डू यू एग्री ऑन दिस?
2: Absolutely।
1: अब आजकल कुछ अजीबोगरीब सा होते मुझे चारों तरफ दिखाई दे रहा है, जिसका बेसिकली विक्टिम मैं भी हूं। यस, माइसेल्फ, आई एम टीचिंग इन अ कम्युनिटी कॉलेज, जहां पर मैं बच्चों को एम्प्लॉयबल होने की कोशिश करने के लिए पढ़ा रहा हूं। नाउ द कॉलेज इज एक्चुअली प्रेशराइजिंग मी कि उन बच्चों की
2: सिलेबस
1: नहीं, सिलेबस इज ओके, उनकी नौकरी लगवाऊं। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये टीचर्स कब से प्लेसमेंट ऑफिसर्स कब से हो गए हैं। तो चारों तरफ देख रहा हूं जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ये झूठा दिलासा दे रहे हैं कि आप हमारे यहां आओ, हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगी राजेश्वरी जी?
2: सी, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज जो फैक्ट्स हैं, हम बच्चों को पहले से फैक्ट्स को सिखाएं और फैक्ट्स को दिखाएं, वही बेहतर होगा। जब झूठ का सहारा लेते हैं तो सच्चाई नहीं होगी, और बच्चों को चीटिंग करना होता है वो। सो वेयर इज द होल प्रिंसिपल एंड एथिक्स ऑफ द फील्ड इटसेल्फ, ऑफ द एजुकेशन फील्ड इटसेल्फ? बीइंग अ टीचर इज व्हेन यू टीच द रियलिटी, यू टीच द फैक्ट्स एंड ऑल्सो यू टीच द एथिक्स। एक होलसम रहना चाहिए जब हम पढ़ाते हैं तो वही ना, वो बिजनेस बन चुका है एजुकेशन फील्ड। एजुकेशन पैशन कम और बिजनेस ज्यादा है। सो जब बिजनेस, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस और नंबर्स आते हैं, तब झूठ का सहारा लेना पड़ता है और पड़ रहा है, तो विच इज अनफॉर्चुनेट।
1: ऑलराइट, ऑफ कोर्स ये टॉपिक जो है राजेश्वरी जी बहुत लंबा है, बहुत डिबेटेबल है, लोगों की अलग अलग विचार होंगे इसमें। अ नंबर ऑफ पेरेंट्स माइट बी सपोर्टिंग दिस थॉट प्रोसेस कि जी ठीक है, हमने बच्चे को स्कूल में डाल दिया, कॉलेज में डाल दिया, नाउ इट्स द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द करियर ऑल्सो, एंड हमारा तो सिर्फ कर्तव्य था उसको पैदा करना, बड़ा कर देना, बाकी अब टीचर जाने, उसका काम जाने। सो आई एम वेरी सैड अबाउट दैट, प्रीटी सैड, बिकॉज चारों तरफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सारे यही कर रहे हैं। साल में 3 बार तो वो किसी सेलिब्रिटी को बुला के डांस परफॉर्मेंस रखते हैं, रात भर वो डांस कराते हैं बच्चों को, है ना, और उसके बाद वो कहते हैं कि हम आपका करियर बना देंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। वो पुरानी जो प्रथा थी कि जंगल में जाके स्टूडेंट्स मेहनत करते थे, वो सब तो खत्म हो गया है। एनीवेज,
2: अभी कॉम्पिटिशन है इतना ज्यादा और हमारा पॉपुलेशन भी इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन इन सबको इन सबसे कम्पीट करने के लिए झूठ क्यों बोले ना? आई डू नॉट अग्री विद इट, एंड पेरेंट्स ऑल्सो इट्स हाई टाइम दे अंडरस्टैंड एंड रियलाइज द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द चाइल्ड एंड टेक द चाइल्ड इन द राइट डायरेक्शन।
1: ऑलराइट, चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए पहले इस सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, बात करते हैं राजेश्वरी जी से कुछ और विषयों के बारे में, उनके बारे में जानते हुए, लेकिन पहले उनके इन गीतों का तो लुत्फ उठाइए जो उन्होंने हमारे लिए प्रिपेयर किए हैं। आफ्टर ऑल उन्होंने इतनी मेहनत करी, सीखा, आई अंडरस्टैंड। चलिए, लेट्स एंजॉय दीज सॉन्ग्स फर्स्ट।

0: बहुत खूब राजेश्वरी जी। अब थोड़ा सा आपको जानने की कोशिश करते हैं, आपकी म्यूजिक को जानने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, किस तरीके का म्यूजिक पसंद करते हैं आप?
1: मैं इंडियन म्यूजिक पसंद करती हूँ, लाइक रेट्रो हिंदी म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनना, और सॉन्ग्स के साथ साथ गाना जब सॉरी टू इंटरप्ट
0: गो अहेड प्लीज प्लीज प्लीज
1: जब हम बचपन में तो म्यूजिक हमारा बैकग्राउंड में हमेशा रहता था। जब स्कूल के लिए तैयार होते थे तो घड़ी नहीं देखते थे, लेकिन विविध भारती के भूले बिसरे गीत या कुछ और प्रोग्राम के जरिए हमको टाइम पता चलता था। तो ऐसे म्यूजिक तब से लेके अब तक साथी है, तो हिंदी म्यूजिक ही ज्यादा पसंद है, हिंदी और ऑफ कोर्स माय मदर टंग कन्नड़ा म्यूजिक भी पसंद है।
0: श्योर, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अब मुझे ये बताओ मैम, जैसे आपने आप बुरा ना मानना, मैं बार बार आपको उधर ही लेके जा रहा हूँ, दैट यू आर अ शिक्षिका, यू आर अ टीचर, एकेडमिशियन आई मस्ट से, तो आपको आज की डेट में बच्चों के लिए म्यूजिक का रेलेवेंस लगता है? डज इट हैव इट?
1: सी म्यूजिक तो हमेशा ही रेलेवेंट रहा है और रहेगा, इट इज अ ह्यूज स्ट्रेस बस्टर ऑल्सो। अभी जो जब बच्चे प्रेशराइज फील करते हैं तो म्यूजिक इज अ वे टू रिलैक्स देमसेल्व्स, रिलैक्स देयर माइंड। म्यूजिक ऑफ कोर्स काम रखता है हमारे मन को और स्टेट ऑफ माइंड को, तो म्यूजिक विल ऑलवेज बी रिलेवेंट। म्यूजिक इज ऑलवेज गोइंग टू हैव अ कामिंग फैक्टर ऑन एवरीबॉडी, बच्चे हो या बूढ़े हो या अपने डेथ बेड पे हो। जैसे प्लांट्स भी म्यूजिक एंजॉय करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने सुना है कि दो प्लांट्स जब म्यूजिक सुना हुआ प्लांट जैसे बढ़ता है और कैसे बढ़ता है, और द प्लांट विच इज डिप्राइव्ड ऑफ म्यूजिक कैसे बढ़ता है। तो म्यूजिक इज ऑलवेज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर एवरीवन।
0: ऑलराइट, सो जस्ट इन केस आई एम नॉट टीजिंग यू मैम, डू यू यूज म्यूजिक इन योर स्कूल?
1: Oh yes, absolutely, absolutely.
0: And how do you do that?
1: We do it day in, day out, in every class, especially in the pre-primary sections. Music ka ek magic hota hai class mein.
0: Mm-hmm.
1: Jaise hum ek group ki attention ko grab karna hai chote bachon mein, hum instructions de straight face mein, to wo nahi sunte, unko lagta hai ki yaar kuch bhi bol rahi hai ma'am. लेकिन वही बात अगर आप थोड़ा म्यूजिक डालते हो उसमें, फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लासेस में ऐसा होता है कि हम सर्कल टाइम बनाते हैं, सारे बच्चे सर्कल में आके सर्कल में प्रेयर करते हैं, सर्कल में बैठते हैं, पढ़ते हैं सब, तो उनको स्ट्रेट अवे इंस्टेड ऑफ सेइंग कम लेट्स मेक अ सर्कल, इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या बोलते हैं हमारे सारे टीचर्स, लेट्स मेक अ बिग सर्कल। जब वो म्यूजिकली आता है इंस्ट्रक्शन, तब उनका रेस्पॉन्स इमीडिएट होता है, उनका अटेंशन इमीडिएटली ग्रैब होता है, तो ज्यादा एनर्जी लगाना नहीं पड़ता। तो हमारे स्कूल में म्यूजिक इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एज वेल एज लर्निंग। प्राइमरी के बच्चों में कुछ ग्रामर का कुछ सिखाना है, तो जैसे एक वॉवल्स सिखाने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन में जब वॉवल्स सिखाते हैं या कुछ ग्रामर रिलेटेड वर्ब्स के बारे में कुछ सिखाते हैं, तब एक सॉन्ग्स बनाया है, तो उन सॉन्ग्स को सिखाते हुए इवन आफ्टर दे गो टू द हायर क्लासेस, व्हेन वी रिकॉल, व्हेन वी आस्क देम आप डू यू रिमेम्बर दैट सॉन्ग, एंड देन इमीडिएटली दे नो द सॉन्ग, एंड when they know the song they know the lyrics, when they know the lyrics they know the content
0: correct
1: of the
0: correct beautiful
1: so yeah so music is an integral part
0: sure beautiful to doston jo bhi shikshavids academicians teachers shikshikaen hamare is program ko sun rahe ho aap logon ko bhi apne andar jhank ke dekhne ki zarurat hai whether you people are using music to teach your children or not if at all not why not Think about it. तब तक आइए ना राजेश्वरी जी की ही आवाज में इन गीतों का आनंद उठाएं, and then we'll come back with something different.

0: बहुत खूब राजेश्वरी मैम, कुछ साइकोलॉजी समझने की कोशिश करूंगा. प्लीज प्लीज प्लीज आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज इन एडवांस. इफ एट ऑल मैं थोड़ा ज्यादा बोल जाऊं तो मुझे माफ कर दीजिएगा. मैम एक बात बताओ, डू यू आर यू स्केयर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स?
1: ओह ऑफ कोर्स, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन.
0: ओके, तो अगर मैम अगर हम कहा जाता है कि हम गलतियां करें तो हम सीखते हैं, तो फिर हम गलती करने से डरते क्यों हैं?
1: क्योंकि बच्चों के सामने एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. क्योंकि पहली बात तो ये है कि बच्चे टीचर्स को अपनी करेक्ट एंड सी एक बात है ऑनेस्टी, ऑनेस्ट रहना बच्चों के सामने एक अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, क्वालिटी है. क्योंकि बच्चों के सामने अगर आप फेक रहोगे या आप कुछ भी, जैसे आपको कुछ पता नहीं है, जब बच्चे जब आपको कुछ पूछते हैं आपको कुछ पता नहीं है, आंसर कुछ पता नहीं है, अगर आप ऑनेस्टली बोलते हैं कि राइट नाउ आई डू नॉट नो, लेट मी जस्ट फाइंड आउट एंड देन गेट बैक टू यू, आपको अप्रिशिएट करेंगे बच्चे. लेकिन उनके सामने नहीं पता है ये बात नहीं दिखाना है, तब आप कुछ भी ऐसे ही बोल देंगे, कुछ झूठ हो या सच नहीं हो या 100% अप्रोप्रिएट नहीं हो, फिर आप अपने आप में गिल्ट, अगर आप ऑनेस्टली टीच एक टीचर हो तो अपने आप में गिल्ट रहेगा कि आप कुछ 100% ट्रूथ नहीं सिखाया है बच्चों को. तो बच्चों के सामने स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल वन इट्स बी ऑनेस्ट एट ऑल टाइम्स, सेकेंडली स्पेशली इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन यू नीड टू बी all the more careful, and if you do a mistake apologize, be honest about it, and then always say I'll come back to you with the facts. That builds another different special bond with the children, because see as a teacher it is not just about you teach and they learn, it is a relationship, it is a bond and forever. Jaise main agar aapse puchungi Samir ji ki आप अपने फेवरेट एक टीचर के बारे में बताइए, तो टक करके आपको एक ना एक नाम तो याद आएगा.
0: यस
1: यस, सो यही है बॉन्ड,
0: राइट,
1: यही है रिलेशनशिप, इट इज नॉट अबाउट द लर्निंग. यस,
0: मोरोवर अभी मेरे दिमाग में तुरंत आ रहा था और मैं कह भी देता हूं इससे पहले कि हम लोग आपके गीतों का आनंद लें, दोस्तों के लिए भी कह देता हूं, दोस्तों आप भी एक बार सुन लीजिएगा. टीचर्स होने के नाते मैं भी टीचर हूं, इसलिए मैं आई एम द सेम यू नो कोट सेम शूज. सॉरी कहने में मेरे को डर नहीं लगता, आई एम वेरी हैप्पी टू से सॉरी बिकॉज आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ देयर, सरेंडरिंग कि नहीं आता मुझे. सो इवन इन माई क्लास आई वेरी ओपनली एंड बिना डरे हुए मैं कह देता आई एम सॉरी गाइज, आई कम बैक टू यू ऑन दिस, आई चेक एंड आई कम बैक टू यू. तो Correct. उन लोगों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आती है. दोस्तों ईगो में मत घूमते रहना कि आप टीचर हो, बस यू आर द गिफ्ट टू मैनकाइंड ऑन अर्थ, डोंट डू दैट, बी अम्बल. चलिए इसी विचार को करते हुए तब तक हम राजेश्वरी जी की आवाज में इन दो गीतों का आनंद उठाएं एंड देन विल कम बैक एंड लर्न समथिंग मोर फ्रॉम हर.

0: बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटिफुल। और राजेश्वरी जी, आपने तो भरपूर सक्सेसफुल जिंदगी को देखा, जिया, बहुत सारे बच्चों को भी सिखाया। आपकी अपनी जिंदगी में बचपन से लेकर आज तक आपको क्या चीज मोटिवेट करती है? What exactly motivates you? I know it's a very generic question. बहुत ज़्यादा wide भी है, broad spectrum भी है, but try, कोशिश करिए ना, हमें बताइए ना, so that we can learn what motivates you.
1: I think as a person, I'm a very happy person.
0: Nice.
1: And I take pleasure in simple things. So यही एक motivation है जीने के लिए, भरपूर ज़िंदगी जीने के लिए। जैसे आपके जो को भी ड्रीम हो, मेरा एक सपना था कि मैं एक पाठशाला खोलूं, और भगवान ने somehow by the grace of God and things just happened so that the dream became a reality. तो यही एक मोटिवेशन है, क्योंकि भगवान की कृपा जब होती है तब हम अपना 100% दे पाते हैं हर रोज, और हर चीज में जो हम करते हैं उन उसमें 100% दे पाते हैं। तो ये जिंदगी है, वी आर अलाइव, एंड दैट इटसेल्फ इज अ मोटिवेशन। बहुत सारे लोगों को लाइक देयर इज समथिंग और द अदर, यू नो, खामियां होंगी ही होंगी। आफ्टर ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल ऑफ अस हैव समथिंग और द अदर लेस इन ईच वन ऑफ अस, बट गॉड हैज गिवन अस द वे वी आर, गॉड हैज मेड अस द वे वी आर। अगर हम इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, देन वी आर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल?
0: राइट।
1: सो वी आर अलाइव, वी आर ब्रीदिंग, एंड वी आर व्हाट वी आर, हु वी आर, एंड दिस सेल्फ इज शुड बी अ मोटिवेशन।
0: ब्यूटिफुल, अमेजिंग। तो ऑफकोर्स दोस्तों, मैंने बड़ा ही जेनेरिक क्वेश्चन पूछा था। ये जो कुछ भी मैं पूछ रहा हूं ना, राजेश्वरी मैम से बात कर रहा हूं ना, आप अपने ऊपर अप्लाई करते चलो, सुनते सुनते ट्राई टू फाइंड आउट सम आंसर्स। ऐसा नहीं है कि मैं और राजेश्वरी जी ही इस वक्त बस दो लोग हैं जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है दुनिया में। नो, आप भी हो। सोचो ना, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछता तो आप क्या जवाब देते? थिंक। तब तक आने बहुत प्यारे प्यारे, हम राजेश्वरी जी के सुनते हैं, एंड देन आई विल कम बैक विद वन मोर मे बी स्टूपिड क्वेश्चन।

0: बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटीफुल राजेश्वरी मैम. दिल तो अच्छा कर रहा है आपसे बहुत सारी चीजें डिस्कस करता रहूं करता रहूं करता रहूं, लेकिन ये टाइम कुछ ऐसी चीज है ना मैम, ये टिक टिक टिक टिक चलती रहती है, एंड वी नीड टू यू नो अरेंज अवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम. टाइम कैन नॉट बी ब्रॉट और टाइम कैन नॉट बी बॉट, टाइम कैन नॉट बी लॉस्ट, हमें सिर्फ अपने आप को एडजस्ट करना है. तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि अगर आपको बहुत सारे लोगों तक कोई मैसेज पहुंचाने का चांस मिल जाए, जैसे आज हो रहा है, आज आप बात कर रहे हैं, देर आर एन नंबर ऑफ पीपल, मे बी मोर देन 10,000 पीपल आर लिसनिंग टू यू, तो आपका मैसेज क्या होगा?
1: कुछ मैसेजेस होंगे, सिर्फ एक नहीं.
0: Alright.
1: पहली बात तो ये है कि खुद को दूसरों के नजर से मत देखिए, अपने आप के नजर से देखिए, खुद को हमेशा ऊंचा ही रखिए, खुद को अपने अपने आंखों में से गिराने के लिए मत अलाउ कीजिए. ऑलवेज कीप योरसेल्फ हाई,
0: ओके,
1: बिकॉज अगर हम खुद को अपने आप को हम ऊंचा नहीं दिखाएंगे तो दूसरा हमको कैसे देखेगा. सो वन नीड्स टू कीप वनसेल्फ हाई इन देयर ओन आईज. एंड सेकेंडली, आप जो कोई भी हो, आप एम्प्लॉयड हो, होम मेकर हो, रिटायर्ड हो, जो कोई भी हो, आपका जो भी इंटरेस्ट है, और आप स्टूडेंट हो, आपका जो कोई भी इंटरेस्ट है, लाइक कुड बी पेंटिंग, कुड बी म्यूजिक, कुड बी प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और राइटिंग, उस इंटरेस्ट में आप कंसिस्टेंटली बने रहिए और उस पैशन को मत छोड़िए बीच में. हमेशा ये होता है कि बच्चों जब बचपन में बहुत सारे चीज करते रहते हैं बच्चे, और जब बड़े होते जाते हैं, कॉलेज जाते वक्त एक दो क्लास छूट जाता है, जैसे डांस एक लेवल तक सीखा, फिर ओ नो एग्जाम्स आर कमिंग अप, ओ नो आई एम गोइंग टू कॉलेज, नो आई एम स्टार्टिंग माई इंजीनियरिंग, तो वो सब छूट जाता है. तो वो मत होने दीजिए, क्योंकि जब हम बूढ़े होते हैं, नॉट जस्ट फॉर दैट बट थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ, एक जो हमारे साथ जुड़ा रहेगा वो है हमारा इंटरेस्ट, हमारे हॉबीज और हमारे पैशंस. तो अगर वो पर्पस हम यू नो ड्यूरिंग आवर ग्रोइंग अप ईयर्स छोड़ जाते हैं, तो वी विल बी द लूजर्स. सो अपने आप के जो इंटरेस्ट है उनको बनाए रखिए, जैसे भी हो, जितने भी टाइम दे सकते हो, उस इंटरेस्ट को पकड़े रहिए, कंटिन्यू करते रहिए अपने एफर्ट्स. और तीसरी बात यह है, परफेक्शन के पीछे मत भागना है किसी को, कंसिस्टेंसी के पीछे रहना है और इम्प्रूवमेंट के पीछे रहना है. बिकॉज परफेक्शन, आई डो नॉट थिंक परफेक्शन एग्जिस्ट. मे बी वेन वी थिंक अबाउट लता मंगेशकर जी, परफेक्शन एग्जिस्ट, बट अगेन देर कैन बी ओनली वन लता मंगेशकर जी, देर कैन नॉट बी बिलियंस ऑफ लता मंगेशकर जी. इसीलिए परफेक्शन के पीछे भागना कम करना है, और इम्प्रूवमेंट और कंसिस्टेंसी के पीछे ही रहना है. एंड स्टे हैप्पी, इट्स जस्ट वन लाइफ, एंड वी डो नॉट नो अबाउट यू नो coming back alive in the next janma, if there is one. So, jab hum saans le rahe hain, to khush rahiye, patton ko soongiye, enjoy a flower, enjoy the beauty of a color, enjoy life, be happy.
0: Right.
1: Yeah.
0: Please go on.
1: That's about it. मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया शायद.
0: दिल के उद्गार बोले हैं आपने यार, क्यों डर रहे हो? अभी तो बोला आपने कि keep yourself up in your own eyes.
1: Yes, absolutely, absolutely.
0: Of course.
1: Just stay happy. Yes, that's what I would say.
0: Slogging करने की जरूरत नहीं है, sulking करने की जरूरत नहीं है, that I'm not good. इस मामले में तो राजेश्वरी जी, मैं कई बार बोलता भी हूँ मेरे बच्चों को, और हमेशा से मानता रहा हूँ कि I am the best creation of the God. जिस वक्त आई मतलब आप हो जाते हो, तो यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड. सिमिलरली एवरी सिंगल इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड, नो बेटर नो लेस.
1: एब्सोल्युटली 100%.
0: तो लेट्स बी हैप्पी अबाउट इट ना मैम. चलो It was great, great.
1: No, ek,
0: please.
1: Sorry to
0: bolina,
1: interrupt.
0: Bolina.
1: There is a poem written by, I think, if I'm not wrong, Robert Louis Stevenson.
0: Okay.
1: The Mountain and the Squirrel. When I was a child, I had. Yes, you would have heard it. Wherein Mountain talks about being the biggest, and the mountain actually makes fun of the
0: squirrel.
1: Mm. And so each one of them talk about their strengths.
0: Mm.
1: And the squirrel doesn't give up. Squirrel always says that if you're so big, that's fine. I am as small as I am.
0: Mm-hmm.
1: You may be big, I am small.
0: Mm.
1: You may be just stagnant, but I am moving.
0: Mm.
1: See, the mobility that I have, you do not have.
0: Correct.
1: So I am where I am. All is well and wisely put.
0: Wow.
1: By God. Yeah, by the Creator. All is well.
0: Beautiful.
1: So, do not feel proud about yourself. You may feel proud about yourself, but do not put somebody else down.
0: Correct.
1: So, that's the essence of life.
0: इस मामले में तो मुझे याद आ रहा है मैम, अब यार गड़बड़ हो गई, मतलब हम लोग वी आर क्रॉसिंग अवर लिमिट्स टाइम हम लोग लेकिन आपकी बात सुन के आई गॉट एंथुसियास्टिक, आई गॉट मोटिवेटेड. देयर इज अ ब्यूटीफुल फिल्म, एनिमेटेड फिल्म कॉल्ड ये जो सिम्बा और मुफासा, किंग लायन, द लायन किंग, ऐसे ना,
1: yes,
0: उसमें yes. जो ये फादर था, दैट वाज मुफासा, वो सिम्बा को, छोटे बच्चे को सिखाता है, जब वो फंस जाता है वो हियानास के बीच में, हायनास के बीच में, तो उसको सिखाता है कि सिम्बा, बीइंग ब्रेव डज नॉट मीन यू गो आउट एंड लुक फॉर ट्रबल.
1: Exactly. That's a very effective line. Correct.
0: Beautiful line. I mean, I always remember yes. this to core yes. my heart. Yes. आप बहुत अच्छे हो, बहुत बहादुर हो, बहुत ताकतवर हो, जिम yes. जाते हो, और बड़ी बड़ी मसल्स yes. है. That doesn't mean कि आप सड़क पर चलते किसी को भी थप्पड़ मार दो. No.
1: Correct. Yeah. I am brave only when I need to be. That's what he says.
0: आप ब्रेव रहो yes. यार आप. इफ यू आर, उसका कहने का मतलब था यू आर द किंग ऑफ द जंगल. दैट डजेंट मीन अला तुम किसी को भी परेशान करोगे. नो, यू आर द किंग, स्टे किंग. Wow.
1: Yes.
0: बहुत खूब मैम, थैंक यू सो मच, मजा आ गया आपसे बात करके, बड़ा अच्छा लगा.
1: समीर जी, थैंक यू सो मच, आई रियली एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन. मेरे दिमाग में बहुत सारे चीजें चल रही थी जब सुबह मुझे बोला गया कि आज शायद होगा, तो पता नहीं था कि क्या पूछने वाले हैं, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आई रियली एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन विद यू. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच लवली, वंडरफुल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस.
0: थैंक यू. थैंक यू सो मच. प्लीज टेक केयर मैम.
1: थैंक यू सर. यू टू. यू टू. थैंक यू सो मच.
2: कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है के इसको जुनून है.
0: दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक. मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी. दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं, और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं. तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ. तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए. नमस्कार.

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः। नमस्कार दोस्तों, दिव्य दर्शन का एक और बहुत ही पवित्र और बहुत ही नया एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ केवीएस रमन साहब हैं। केवीएस साहब पहले भी हमारे दिव्य दर्शन में शरीक हो चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं। उन्होंने हमें बताया था आध्यात्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में। आज हम फिर रमन साहब का स्वागत करते हैं और कुछ और दिव्य दर्शन के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। रमन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो हमारे सुनने वालों के समक्ष आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में?
1: नमस्कार समीर भाई साहब, मैं आपको और आपके पूरे टीम मेंबर्स को और आपका जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उन सबको मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे दोबारा आपने एक शिरकत करने का मौका दे दिया है, और सुनने वालों को मेरी ओर से प्रणाम।
0: बहुत बहुत प्रणाम है सर, बहुत साधुवाद। जाहिर सी बात है, जो प्रोग्राम पहले आपके साथ हुआ था, हमारे सुनने वालों में से बहुत सारे लोगों ने इस बारे में रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, गुजारिश की, डिमांड की कि हम लोग कुछ और बातचीत रमन साहब से करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनको आपसे बातचीत करके कुछ समझ आया होगा, कुछ रिलेट कर पाए होंगे उसी वजह से। तो चलिए रमन साहब, आज हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं सनातन धर्म की। मैं पर्सनली खुद भी सनातन धर्म को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूं कि प्रिसाइसली एग्जैक्टली सच में ये है क्या चीज। तो रमन साहब मुझे ये बताइए, सनातन धर्म वास्तव में क्या है? क्या ये सिर्फ एक धर्म है या शायद एक जीवन शैली? मतलब क्या है धर्म, इसके बारे में हम क्या समझें?
1: वैसे तो ये इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ये सारी चीज, जैसे पहले भी हम लोगों ने अध्यात्म के बारे में बात की और आज हम सनातन धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये सब वास्ट चीजें हैं और हम लोग अपने जो सीमित एक नॉलेज के हिसाब से हम उसको एक दूसरे से बांटने की कोशिश कर रहे हैं जी। इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। सनातन धर्म को पहले समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है
0: जी।
1: जनरली सर, धर्म को हम लोग प्राय उसको हम रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं। धर्म एक्चुअली मेरे विचार से धर्म एक गाइड है या एक मार्गदर्शक कह सकते हैं। इट्स अ गाइड। और सनातन की अगर बात करें तो सनातन का मतलब है जो शाश्वत है, जो मिटने वाली चीज नहीं है और वो सत्य है, और क्योंकि सत्य कभी मिटता नहीं है
0: जी।
1: डीपली कहें तो धर्म का अर्थ राइटियसनेस है। इस लिहाज से हम धर्म को एक मार्ग से, सही मार्ग से जीने का एक तरीका या शैली कह सकते हैं, और इन्हीं के वजह से हम ये निश्चय रूप से कह सकते हैं कि सनातन धर्म को जीवन का एक ट्रू एटर्नल लॉ ऐसा मान सकते हैं।
0: करेक्ट।
1: और ये एक हमें एक सही दिशा देता है और सही ढंग से जीवन व्यतीत करने का एक हमको मार्ग दिखाता है।
0: ओके ओके।

0: सो इस चीज को समझना जाहिर सी बात है रमन जी की जरूरी हो जाता है कि धर्म और धर्म क्या चीज हुई और फिर सनातन धर्म क्या चीज हुई। तो जैसा आपने बताया कि बिल्कुल सत्य है, धर्म तो राइचियसनेस हो गया और सनातन हो गया जो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है और जो सच है। तो जाहिर सी बात है उसमें त्रुटि की या कोई डिफेक्ट की या फिर कोई गलती की गुंजाइश है ही नहीं। तो क्या ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये एक ही चीज है या इनमें कुछ डिफरेंस है?
1: मेरे विचार से कि हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। धर्म धर्म जो है वो एक मनुष्य का अपना बनाया हुआ एक चीज है जो अपने रोजमर्रा इसमें हम काम चलाने के लिए हम उसको धर्म एक सही रास्ते पे चलने का एक हम अपने अपने आप से एक बनाई हुई चीज है। और हर आदमी अपने अपने परिस्थिति और अपने अपने बर्थ और जहां वो रहता है उसके हिसाब से और कुछ चीजें वो फॉलो करता वो धर्म है। मगर सनातन धर्म अगर बोले तो ये मात्र एक मनुष्य के लिए नहीं है, ये सारे सजीव और निर्जीव पर भी ये लागू होता है। सनातन धर्म सनातन धर्म जीने का एक ऐसा आयाम है, हमारे अस्तित्व या अस्तित्व का ही आधार है ऐसा हम मान सकते हैं।
0: ओके।
1: चाहे वह कीड़ा हो, चाहे वो कोई छोटा से छोटा इंसेक्ट हो, पक्षी हो, जानवर हो, पौधा पेड़ पौधे हो, ये सभी अपने अस्तित्व का जो संचालन करने का जो नियम है, मूलभूत जो नियम है, उसको हम सनातन धर्म कह सकते हैं। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ सनातन धर्म।
0: परफेक्ट। मतलब सीधी सी बात हमें यह समझ में आ रही कि जो एक ऐसा नियम कानून कह लीजिए, प्रोटोकॉल कह लीजिए, फॉर्मेट कह लीजिए या एक व्यवस्था कह लीजिए, अगर बड़ी सी प्यारी सी लैंग्वेज में कहें तो इस प्रकृति की जो व्यवस्था है, इस प्रकृति की जो व्यवस्था है वो है सनातन। ऐसा मुझे लगता है रमन सर आप कह रहे हैं, करेक्ट? ओके, अमेजिंग। फिर अगर सनातन शब्द को, जैसे एक वर्ड हुआ सनातन, उसको अगर हम थोड़ा सा और बेहतर समझने की कोशिश करें, यहां तो पहले हमने ये समझा कि सनातन एक व्यवस्था है जो पूरी प्रकृति को चलाती है या पूरी प्रकृति पर लागू है। अब हम सनातन को और समझें, इस वर्ड का, इस शब्द का मीनिंग क्या होगा?
1: सनातन धर्म एक्चुअली ये, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, एक संस्कृत शब्द है
0: जी।
1: इस शब्द के कई मायने, कई अर्थ हैं, जैसे फंडामेंटल ज्ञान, आई मीन तात्विक ज्ञान, स्थायी विश्वास और एक सम्माननीय व्यवस्था, इन सबको हम सनातन के एक भिन्न भिन्न, आई मीन डिफरेंट डिफरेंट मतलब निकलते हैं। लेकिन जनरली सामान्यतः धर्म को हम दो प्रकार के में बांटते हैं, जो एक है सनातन धर्म, एक वर्णाश्रम धर्म
0: जी।
1: इन दोनों में सनातन धर्म सभी के लिए सामान्य रूप से एक आध्यात्मिक पहचान, एक स्पिरिचुअल पहचान देता है, स्पिरिचुअल पहचान देता है। एक अगर वर्णाश्रम की बात करें तो वो जीवन के परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित कर्तव्य है, सभी जीवों के अलग अलग एक उसमें डेफिनेशन उसमें आ जाता है। मगर सनातन में जैसे मेन अगर की अगर बात करें तो सभी जीवों के साथ अगर हम प्रेम दिखाना, सेवा भाव, पियटी और अच्छे कर्मों का पालन करना, कि इन इन एक आप विस्तार रूप से अगर बोले तो इसको सनातन शब्द का ये मतलब अर्थ, हो सकता अर्थ है। निकलता है। जी जी
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया और बहुत ही साधारण सा भाषा में। तो जाहिर से बात है इस शब्द को अगर हम लोग धर्म के साथ जोड़ते हैं तो फिर ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर या व्यवस्था बन के खड़ी होती है। बहुत सुंदर रमन जी। सनातन धर्म, अब हम लोग ने सनातन को समझा, धर्म को समझा और उनको मिलाया, अब इसमें कर्म और धर्म को इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस व्यवस्था में? चलिए धर्म को तो हमने फिर भी समझा था, अभी कर्म के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए ना कि इस व्यवस्था में कर्म की क्या महत्वपूर्ण है, कर्म की क्या इंपॉर्टेंस है?
1: वैसे कर्म धर्म दोनों ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं सनातन धर्म में। एक दोनों को ही एक फंडामेंटल लॉ कहा जा सकता है जो मनुष्य के आध्यात्मिक प्रगति स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए और जीवन के परिणामों को गवन करता है। ये दोनों कर्म और धर्म, धर्म और कर्म दोनों करता है। कर्म का जो सिद्धांत है वो कर्म चाहे वो विचार से हो या शब्दों से हो या कार्य से हो वो कोई ना कोई परिणाम देता है। व्हाट एवर यू डू उसका वो एक रिएक्शन देता है या उसका एक रेसिप्रोकेशन उसका होता है। कर्म का जो भी काम करें हम, चाहे हम कभी कभी हम विचार से भी अगर कुछ करते हैं, जैसे किसी के साथ क्रोध होना भी एक किसी विचार ही एक टाइप का विचार है, दैट ऑल्सो उसका एक परिणाम यह है कि वी गेट इनटू, उसके बाद हम खुद बाद में सोचते हैं कि हमने नहीं करना चाहिए था या हमारे टेंशन बढ़ जाता है। ये सारी चीजें, हर चीज का एक, हर कर्म का एक परिणाम होता है ये। और इसीलिए सनातन धर्म में इसीलिए क्योंकि ये कर्म हम वी कीप ऑन डूइंग कर्मा, ये अतीत और फ्यूचर को, हाँ भूत और भविष्य, इनफैक्ट ये अतीत और प्रेजेंट को का जो एक इसका जो रिजल्ट जो रहता है वो हम हमें वर्तमान में इसका दिखाई देता है। वर्तमान हमारा ये निर्धारित करता है। तो व्हाट वी कॉल इन हिंदी में जैसा एक सेइंग है, जो जैसे बोएगा वो वैसे काटेगा या पाएगा। तो इसीलिए ये क्योंकि कर्म किसी न किसी का परिणाम देता है, तो हर व्यक्ति को ये हमें सिखाता है कि सनातन धर्म सिखाता है कि वी हैव टू बी नो, अपने जो भी कर्म करें वो अच्छा कर्म करें, क्योंकि जो जितना अपने उस हिसाब से हमको कहने, हम तो ये कहा जाता है कि भाई आपके पुनर्जन्म में ऐसा होता ऐसा होगा, लेकिन कभी कभी आपको तुरंत भी उसका एक परिणाम आपको मिल जाता है। तो इन सब की वजह से, क्योंकि कर्म से परिणाम मिलता है, तो हमारे कर्म जो है हमेशा एक अच्छा एक कर्म होना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही बात है। और जैसा आपने बहुत प्यार से बताया उसी चीज को मैं एक बार बहुत छोटे से मैं सिंपल रिपीट करना चाहता हूं मेरे अपने फायदे के लिए कि मैं उसको याद रख सकूं, कि हम जैसे काम करते हैं तो कई बार तो उनके फल जो होते हैं वो हमें थोड़ा सा भविष्य में मिलते हैं या कई बार तो बिल्कुल वर्तमान में ही मिल जाते हैं। तो सामने के सामने है साहब, जो काटा जो आपने बोया वही काटा, तो जब ये सामने दिखता है तो उसको मानने में फिर परेशानी ही क्या, आइए ना इसको मान लेते हैं। बहुत सुंदर रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं यहाँ पर, एक प्यारा सा भजन सुनते हैं और फिर मैं वापस आपके सामने हाजिर होता हूँ।